मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। प्रारंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ है आपकी रेडियो मित्र स्मिता। आप सभी को हमारा नमस्कार, सुप्रभात।

0: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना का शुभारंभ करते हैं समूह स्वर में इस देशगान से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। वंदना में आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुना ये भजन। वंदना में आइए अब सुनते हैं श्रीकांत बाकरे की आवाज में एक और भक्ति रचना।

श्रीकांत बाकरे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भजन। वंदना में आइए अब सुनते हैं हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना। वंदना का समापन अब कर रहे हैं लालित्य, मंशा और साथियों के स्वर में गाए इस भक्ति रचना के साथ।

0: इस भक्ति रचना के साथ ही आज की वंदना यहीं संपन्न होती है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। चिंतन के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं संकीर्णता का त्याग विषय पर डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकर जी का विचार।
1: आजकल सारे संसार में जिस प्रकार लोकतंत्र की ललक है, वैसी किसी अन्य शासन प्रणाली की नहीं है। यह आधुनिक युग की प्रगतिशील भावना का ही परिचायक माना जाता है, क्योंकि संसार अपने सुदीर्घ इतिहास में अनेक प्रकार की शासन प्रणालियों की परीक्षा करते करते अंत में इस परिणाम पर पहुंचा है कि यही प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है। लोकतंत्र के आदर्श किसी देश में पूरी तरह लागू हैं कि नहीं, इस पर मतभेद हो सकता है, परंतु इस प्रणाली की श्रेष्ठता एक प्रकार से अब विवाद का विषय नहीं रह गई है। इसका कारण यह है कि लोकतंत्र के माध्यम से मानवीय अस्मिता की जैसी पुष्टि होती है, वैसी किसी अन्य तंत्र के माध्यम से संभव नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है। भारत के संविधान में बोलने और लिखने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और भारत में सर्वत्र अबाध संचरण और किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इन समस्त स्वतंत्रताओं के मूल में वैचारिक स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से विद्यमान है। तभी तो प्रत्येक नागरिक अपनी इच्छा और आस्था के अनुसार धर्म, संप्रदाय, मजहब, पंथ के साथ साथ क्षेत्र, भाषा, खानपान, पहरावा आदि का चयन करने में भी स्वतंत्र है। यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि दुर्भाग्य से हम स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वच्छंदता और कभी कभी उच्छृंखलता ले लेते हैं, तभी मर्यादाएं भंग हो जाती हैं और लोकतंत्र की मानवीय अस्मिता की भावना खंडित होती प्रतीत होती है। लोकतंत्र में वैचारिक और व्यावहारिक स्वतंत्रता की चर्चा करना इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि इस उदारता के ठीक विपरीत आज भी हमारे देश में अत्यधिक अंधविश्वास जन्य जड़ता और त्याज्य हो चुकी पुरानी परंपराओं से चिपके रहने की प्रवृत्ति बनी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप अनपढ़, अशिक्षित और अज्ञानी व्यक्ति तो संकीर्ण, संकुचित और रूढ़ियों के शिकार हैं ही, बहुत बड़ा शिक्षित समुदाय भी अव्यावहारिक संकुचित विचारों और परंपराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। सभा मंचों से रूढ़िगत पुरानी परंपराओं को छोड़ने की बातें बेशक करते हों, किंतु जब स्वयं के व्यवहार का समय आता है तब पुरानी सदियों से चली आती गतानुगतिक परंपराओं को तथा संकीर्ण विचारों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। विचारों की संकीर्णता सभ्य सुसंस्कृत मानव समाज के लिए अभिशाप है और विचार तथा व्यवहार की उदारता वरदान है। संकीर्णता एक प्रकार से कूपमंडूक वृत्ति है। कुएं में पैदा होकर पलने, बढ़ने और मर जाने वाला मेंढक कुएं के पानी से अधिक समुद्र के पानी की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी प्रकार सीमित विचारों के दायरे में रहने वाले व्यक्ति की सोच भी बहुत सीमित और संकुचित होती है, जो उसे दूसरों के उदार और व्यापक विचारों को सुनने, समझने तथा व्यवहार में उतारने की अनुमति नहीं देती। यहीं से विचारों का संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। बहुत प्राचीन काल से विचारों की इसी संकीर्णता के परिणाम स्वरूप मानव सभ्यता और संस्कृतियों का संघर्ष होता रहा, जो संघर्ष आज तक जारी है। 21वीं शताब्दी में भी मानव एक ओर वैज्ञानिक प्रगति के शिखर पर स्वयं को आरूढ़ मान रहा है तो दूसरी ओर वैचारिक संकीर्णता के दलदल से निकल नहीं पा रहा है। इसका सीधा दुष्परिणाम धार्मिक, सांप्रदायिक, मजहबी, क्षेत्रीय, भाषाई और अन्य अनेक प्रकार की संकीर्णताओं से घिरा तथाकथित सभ्य मानव परस्पर के युद्धों में स्वयं को अन्यों से श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा रहता है। वैदिक उक्ति है सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा और विद्या ही है जो मनुष्य को संकीर्ण विचारों से बाहर निकालकर उदार बनाती है। एक अन्य सुभाषित में भारत की उदार भावना को इतना उच्च माना गया कि सारी पृथ्वी को अपने परिवार के सदृश स्वीकार करें। सूक्ति है अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्, यही संकीर्णता से मुक्ति का उपाय है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार जी के विचार। विषय था संकीर्णता का त्याग। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

शूद्र वंश में जन्मे काकभुशुंडी को, जो अकाल से त्रस्त होकर अयोध्या से उज्जैन नगरी में आ बसे थे, वहां के शिव मंदिर में ब्राह्मण देवता का अपार स्नेह और कृपा प्राप्त हुई। लेकिन गुरु से कपट तो उन्होंने किया ही था। स्वयं भगवान शंकर की आराधना करते, किंतु वैष्णव तथा अन्य मतावलंबियों से ईर्ष्या और द्वेष की भावना बनी रही। गुरु इनके आचरण से दुखी थे, फिर भी उन्हें सदुपदेश देते, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते। किंतु जिनके स्वभाव में ही अनीति होती है, वे कब किसकी सुनते हैं।

उपदेश देते हुए ब्राह्मण देवता ने जब स्वयं भगवान शिव को हरि का सेवक बताया तो शूद्रवंशी काकभुशुंडी के आक्रोश की सीमा न रही। इन्होंने तब गुरुद्रोह करना आरंभ कर दिया, किंतु फिर भी उदार मना द्विज का स्नेह कम न हुआ। सच तो ये है कि नीच व्यक्ति जब बड़ाई पाता है तो सबसे पहले उसी के नाश पर उतारू हो जाता है जिसने उसे बड़ाई दी है। एक दिन जब ये मंदिर में शिव मंत्र का जाप कर रहे थे, गुरुजी वहां आ पहुंचे। मदांध शिव भक्त ने उनकी अनदेखी ही नहीं की, अपितु अनादर भावना से अजगर की भांति बैठे रहे। द्विज तो उदार और महामना थे, किंतु स्वयं भगवान शिव को गुरु का ये अनादर और अपमान सहन न हुआ। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उन्हें शाप दे डाला। हे गुरुद्रोही, तू गुरु और मेरा मंत्र देने वाले को देखकर भी इस प्रकार अजगर की भांति बैठा है, जा तू अजगर हो जा।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय है गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। जानकारी दे रहे हैं श्री सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की ठीक प्रकार देखभाल करें, जिससे उन्हें स्वस्थ बनाए रखें और उनकी बढ़वार अच्छी हो। गर्मियों का मौसम मुर्गी पालकों के लिए परीक्षा का समय होता है, और जो मुर्गी पालक गर्मियों के मौसम में पक्षियों की सही देखभाल कर उन्हें स्वस्थ बनाए रखते हैं, वही सफल मुर्गी पालक होते हैं। गर्मी के मौसम में गर्म हवाओं और लू के कारण पक्षी तनाव में रहते हैं, जिससे मुर्गियों के शरीर की कोशिकाएँ पानी छोड़ती हैं, और इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएँ शुष्क और शिथिल होने के कारण मुर्गियों का शरीर सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थता हो जाता है। मुर्गी पालकों को इस अवस्था में सावधान रहना चाहिए। गर्मी से पीड़ित होने पर मुर्गियों का चेहरा लाल हो जाता है और ऐसा लगता है कि मुर्गी की कलगी से रक्त पसीने के रूप में बाहर आने वाला है। मुर्गियां चारों तरफ देखती हैं, चक्कर लगाती हैं, सिर इधर उधर घुमाती हैं, गर्दन या सिर में पक्षाघात जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मुर्गियाँ तेजी से हाँफती हैं और उनके शरीर में भारी

0: करते रहें। किन्हीं कारणों से गीला न कर सकने की स्थिति में मुर्गियों की कलगी को ही गीला करते रहें। यह कार्य दिन में दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित रूप से करना चाहिए। गर्मी के कारण पोल्ट्री फार्म की छत और दीवारें गर्म हो जाती हैं। गर्म हवाओं से बचाव के लिए शेड के चारों तरफ जो पर्दे लगाए जाएं, वह इतनी ऊंचाई पर लगाए जाएं कि मुर्गियों को गर्म हवा और लू सीधे न लगने पाए। अगर किसान भाइयों के पास साधन है तो छत पर स्प्रिंकलर लगाकर छत को ठंडा करना चाहिए। जिनके पास कूलर और पंखे की व्यवस्था है वो शेड के अंदर कूलर और पंखे अवश्य लगाएं। गर्मियों के दिनों में मुर्गियों के सामने हमेशा ठंडा पानी रखें और पानी में इलेक्ट्रॉल या शक्कर और नमक का घोल बनाकर पिलाएं। बिना पानी के मुर्गियों को 5 मिनट भी न रखें। इस समय मुर्गियों को साधारण और संतुलित आहार देना। गर्मियों के मौसम में दाना देने का सही समय देर रात और जल्दी सुबह अच्छा रहता है, क्योंकि दाना खाकर पचाने की प्रक्रिया में गर्मी पैदा होती है और देर रात और जल्दी सुबह खाना खिलाते समय तापमान कुछ कम रहता है। इस समय मुर्गियों को विटामिन सी, जो श्वास की प्रक्रिया को शक्ति प्रदान करता है, अवश्य खिलाएं और बीच बीच में टेरामासन एग फार्मूला देते रहें। गर्मी के मौसम में मुर्गियां तनाव में रहती हैं। तनाव भी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। शेड में कहीं भी कमजोर मुर्गी दिखाई दें, उन्हें तुरंत निकालकर अलग कर दें, क्योंकि मुर्गियों में अधिकतर छूतदार बीमारियां फैलती हैं, जिससे दूसरी मुर्गियां भी प्रभावित होती। मुर्गियों का धूल और तनाव से बचाव करना चाहिए, क्योंकि मुर्गियों में तनाव भी बहुत सी बीमारियों को फैलाने में सहायक होता। गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की अगर सही तरह देखभाल की जाए तो उन्हें जीवित रख सकते हैं, बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। आज की सामयिक चर्चा का विषय था गर्मियों के मौसम में मुर्गियों की देखभाल। जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
3: प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें मुख्य हैं थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई के बक्से। इसके अलावा निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट की फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे की छड़ें और आइसक्रीम पर लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, साथ ही 100 माइक्रोन से कम के बैनर शामिल हैं। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, हमारी धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाएं।
4: ए भाई,
5: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
4: ए भाई दर्द।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम आकाशवाणी

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की होगी। 7:30 से सुबह 8 तक आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे लकी अली के गाए कुछ गीत। सुबह 9 आप सुनते हैं सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक भेंटवार्ता भी सुनवाई जाएगी। विषय होगा आपदा में सहारा रेड क्रॉस। आज इस भेंटवार्ता में आप सुन सकेंगे नवल शुक्ला, जिला सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी से विभूति सिंह की बातचीत। सुबह 9:30 पर आप आनंद लेंगे शास्त्रीय संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर हरिचरण वर्मा का गायन, राग होगा नट भैरव। सुबह 10 आप सुन सकेंगे जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 10:05 पर आप आनंद ले सकेंगे अपनी ही पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुबह 11 से दोपहर 3 तक सभी कार्यक्रम हमारे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

श्रोताओं, हमारी शाम की सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। हमारे युवा साथी सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी 5:02 पर। ये कार्यक्रम हमारे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी। 5:33 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आनंद पुनः आप ले सकेंगे शाम 6:30 पर। और रात 10 बजे आप सुन सकेंगे अपने पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। शाम 6 बजे आप सुनेंगे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। शाम 7:20 पर हमारे ग्रामीण श्रोता सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत चर्चा के विषय होंगे विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व सड़क सुरक्षा सप्ताह, हेलमेट अवश्य पहने और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। कार्यक्रम के अंतर्गत एक वार्ता भी सुनवाई जाएगी। विषय होगा बैंक से कृषकों का ऋण सुविधाएं। जानकारी देंगे आशीष शुक्ला। कार्यक्रम चौपाल हमारे ग्वालियर केंद्र की प्रस्तुति होगी। रात 9:45 पर आप सुन सकेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम। रात 10:30 पर आप आनंद लेंगे राग रजनी का। श्रोताओं, ये थे हमारे आज की दोनों ही सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ।

0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 10 मिनट हुए, थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हुआ। राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ, कहा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का पहला जत्था कल रवाना। आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। और आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हराया। आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। भारी खरीद, अच्छी फसल और किसानों के पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित और सुरक्षित भविष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। ये जत्था आज सोमनाथ पहुंचेगा। जत्थे को रवाना करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। सोमनाथ साक्षी है कि सृजन शक्ति हमेशा विनाशकारी शक्ति से प्रभावी होती है।
1: गुजरात भगवान श्री कृष्ण के काल से जब द्वारकाधीश ने अपने जीवन काल में अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो पूरा देश अलग दौर में पहुंचा। और हम सब जानते हैं 1000 साल पहले भारत को काली छाया ने ग्रहण के रूप में डसा तो बाबा सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ ये स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ है। सोमनाथ हमारे देश के विकास का पर्याय भी है।
0: संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित ये गौरवशाली यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतर्गत निकाली जा रही है। वियतनाम के राष्ट्रपति तुलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा विभाग के ई प्रवेश पोर्टल के माध्यम से पंजीयन कराने की अंतिम तारीख 15 मई है। पंजीयन 1 और 2 मई से शुरू हुआ था और कल तक विभिन्न स्नातक, स्नातकोत्तर और एनसीटी पाठ्यक्रमों में कुल 60,000 से ज्यादा पंजीयन हो चुके हैं। प्रथम चरण की आवंटन सूची 20 मई को ई प्रवेश पोर्टल पर जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स, मास्क और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्मीबाई और काजल सटोरिया को आवंटन आदेश पत्र और मकान की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दिनेश मौर्य को 50,000 रुपए की ऋण राशि का चेक प्रदान किया। डॉ. यादव ने पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत पूजा गिरी गोस्वामी को सहायता समूह के लिए 2 लाख रुपए से अधिक की ऋण राशि का भी चेक प्रदान किया। राज्य सरकार ने डॉ. निवेदिता शर्मा को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कल अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार डॉ. निवेदिता शर्मा का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पूरे होने तक रहेगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देशभर के 60 से ज्यादा जाने माने पत्रकार, संपादक और विचारक शिरकत करेंगे। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज सुबह 8:30 पर भोपाल में एक खास वॉकेथॉन का आयोजन किया जा रहा है। श्यामला हिल्स स्थित आकाशवाणी भोपाल केंद्र के दफ्तर से इस वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह आयोजन रेडियो की इस ऐतिहासिक यात्रा को सलाम करने का एक अनोखा तरीका है। प्रदेश में कुछ हिस्सों में कल आंधी और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार कल रीवा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया, जबकि ग्वालियर, नौगांव, सीधी और सतना में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। यहाँ अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इसके आसपास बना रह सकता है। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बारिश होने से बाधित इस मुकाबले में 213 रनों के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी में कल विश्व एथलेटिक्स दिवस के अवसर पर माधवराव सिंधिया जिला खेल स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुरक्षा सुधार कार्य किए जाएं। सतना में जिला पशु कल्याण समिति की बैठक में कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार ने गौशालाओं की विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आगर मालवा में जनगणना प्रक्रिया के अंतर्गत मकानों की गणना और स्वगणना कार्य को 100% पूरा कर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को एसडीएम द्वारा सम्मानित किया गया। झाबुआ में आज सांसद अनीता चौहान की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। मंडला जिले के आकांक्षी विकासखंड नारायणगंज में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की कल संभागायुक्त धनंजय सिंह द्वारा समीक्षा की गई। शाजापुर जिले और शुजालपुर तहसील में कल नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। धार में वन विभाग द्वारा कर्मचारियों की कार्य क्षमता वृद्धि के लिए प्रदेश की पहली एआई ट्रेनिंग का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा, तुलिका, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की है।

गांधी चर्चा में आज सुनते हैं 27 फरवरी 1930 को हिंदी नवजीवन में प्रकाशित वर्ण धर्म और श्रम धर्म से संबंधित बापू के लेख के अंश। एक प्रश्नकर्ता ने बापू से पूछा, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है, पैसा और गुलामी एक ही वस्तु है, इसके उद्देश्य एक हैं और इसके परिणाम भी एक से हैं। रुपया गुलामी का नया और भयंकर स्वरूप है और पुरानी व्यक्तिगत दासता की भांति ये गुलाम और मालिक दोनों को पतित और भ्रष्ट बना देता है। इतना ही क्यों, ये इससे भी अधिक बुरा है क्योंकि गुलामी में दास और स्वामी के बीच मानव संबंध की जो स्निग्धता रहती है ये उसे भी नष्ट कर देता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या रुपया निर्दोष विनिमय का साधन कभी नहीं बन सकता? यदि बन सकता है तो कैसे और नहीं तो क्यों? उत्तर में बापू कहते हैं, प्रश्नकर्ता ने जैसा कि लिखा है यदि वही बात टॉल्स्टॉय ने कही हो तो वो मुझे मालूम नहीं है। गुलामी और पैसा सजातीय शब्द नहीं है, इसलिए इन दोनों में मुकाबला नहीं हो सकता। गुलामी मनुष्य की एक स्थिति है और हमेशा त्याज्य है। पैसा जगत के साथ अपना आर्थिक व्यवहार चलाने का एक साधन मात्र है, फिर भले वो कितना ही बलवान साधन क्यों न हो, उससे जितनी बुराई की संभावना है उतनी ही भलाई की भी हो सकती है। यही बात दूसरे बहुतेरे जड़ साधनों के लिए भी कही जा सकती है। किसी न किसी हालत में और किसी न किसी रूप में पैसे की आवश्यकता तो रहेगी ही। गुलामी की आवश्यकता न कभी थी और न रह सकती है। यहाँ पैसे का अर्थ समझ लेना चाहिए। जब मैं अनाज देकर जूते खरीदता हूँ तो अनाज जूते खरीदने का साधन होने के कारण पैसा बन जाता है, मगर चूंकि बहुतेरे लोगों के लिए अनाज के जरिए लेन देन करना मुश्किल होता है, संज्ञा रूप से धातु या कागज़ का उपयोग हो सकता है। ये धातु अथवा कागज़ ही पैसा है, इसमें कोई बाधा नहीं पड़ सकती। किंतु जब कोई मनुष्य ऐसे कागज़ धातु के सिक्के या अनाज का आवश्यकता से ज़्यादा संग्रह करता है तब बुराई पैदा होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि स्वयं पैसे में कोई दोष नहीं है, परंतु उसके लोभ में दोष है। ठीक इसके विपरीत गुलामी लोभ की निशानी है। एक आदमी को गुलाम बनाकर रखने में लोभ है, दोष है, मगर पैसे या धन का अधिक मात्रा में रखना दोष है। परंतु जो मनुष्य वर्ण धर्म को समझता है वो संतुष्ट रहता है, इसलिए वो धन का लोभ नहीं करेगा। और जो मनुष्य श्रम धर्म समझेगा वो किसी को गुलाम बनाकर नहीं रखेगा। गांधी चर्चा में अभी आप सुन रहे थे 27 फरवरी 1930 को हिंदी नवजीवन में प्रकाशित वर्ण धर्म और श्रम धर्म संबंधी एक प्रश्न के सिलसिले में बापू का उत्तर। गांधी चर्चा का समापन करते हैं इस भक्ति गीत से।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा, प्रस्तुति तुलिका शर्मा की थी। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दुश्मन से। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने। आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की। आइए सुनते हैं फिल्म दुश्मन का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म यस बॉस से। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आवाज़ें हैं अलका याग्निक और अभिजीत की। आइए सुनते हैं फिल्म यस बॉस का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म यस बॉस का गीत। आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। आकाशवाणी ग्वालियर आपकी सेवा में है।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है कयामत से कयामत तक। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत रचना आनंद मिलिंद की है। आइए सुनते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म कयामत से कयामत तक का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म संगीत में सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है राजू बन गया जेंटलमैन। देव कोहली के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने। आवाज़ें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। आइए सुनते हैं राजू बन गया जेंटलमैन का ये प्यारा सा गीत।

फिल्म संगीत का समापन हम कर रहे हैं फिल्म चलते चलते के इस गीत के साथ ही। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत रचना जतिन ललित की है। आवाज़ें हैं अभिजीत और अलका याग्निक की। आइए सुनते हैं फिल्म चलते चलते का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
0: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
8: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the Pochishe Boishak, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Centre in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
7: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
9: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the general secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
7: President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
4: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
7: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Foreign Secretary Vikram Misri met UAE Minister of State for International Cooperation Rim Al Hashimi in Abu Dhabi yesterday. In a social media post, External Affairs Ministry said that both sides reviewed the full spectrum of the India-UAE Comprehensive Strategic Partnership and identified areas for further cooperation. They also discussed the ongoing regional situation and global issues of mutual interest. The government has debunked a digitally altered video of External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal, wherein he is seen stating that India lost four Rafale fighter jets during the conflict with Pakistan. In a social media post, the Fact Check Unit of the Press Information Bureau clarified that the video is an AI-generated deepfake video and has been circulated by Pakistani propaganda accounts to spread misinformation. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Akashwani organized a marathon in the national capital today to mark its 90th anniversary. The nearly 3.5-kilometer marathon began from Akashwani Bhavan and passed through Krishi Bhavan, Rail Bhavan and the RBI building before concluding at Akashwani Bhavan. Employees of Akashwani, Doordarshan and Prasar Bharati, along with the family members, participated in the marathon. Prasar Bharati CEO Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani Rajiv Kumar Jain were present on the occasion. Akashwani was established in 1936 and continues to be one of the country's most trusted broadcasting platforms. Police have arrested absconding accused Nida Khan from Chhatrapati Shambhaji Nagar in connection with an alleged forced religious conversion case linked to a TCS company employee in Nashik. A joint operation was carried out last evening by a Nashik police team with the help of the crime branch in Chhatrapati Shambhaji Nagar. A case had earlier been registered against Nida Khan at Deolali Camp police station in Nashik for allegedly trying to force the religious conversion of a girl working in the TCS company. After the case was filed, she had gone absconding. Even after anticipatory bail plea was rejected, police were unable to trace her for nearly a month. IndiGo Airline has announced that it will begin commercial flight services from Noida International Airport in Jewar from the 15th of June. With this, IndiGo is set to become the airport's first launch carrier. IndiGo will gradually connect Noida International Airport with more than 16 cities across the country through direct flights. These include major metro cities like Bengaluru and Hyderabad, along with important destinations such as Amritsar, Chandigarh, Dharamshala, Jaipur, Lucknow, Navi Mumbai, Pantnagar and Srinagar. This will provide passengers with better travel options and faster connectivity. The Uttar Pradesh government has issued orders to operate all smart meters installed across the state in postpaid mode. Energy Minister Arvind Kumar Sharma stated that all smart meters installed under the RDSS scheme have been converted to the postpaid system with immediate effect. Under this arrangement, consumers will receive bills after electricity consumption. The bill for electricity consumed in May 2026 will be issued in June 2026 under the postpaid system. The energy minister said that prioritizing the convenience of electricity consumers, the Uttar Pradesh government has decided to discontinue the smart prepaid meter system. Saudi Arabia suspended U.S. military access to its bases and airspace, forcing President Donald Trump to abruptly abandon his plan to escort ships through the Strait of Hormuz, two U.S. officials have confirmed. The move marks a significant setback for Washington's Gulf strategy, with a key regional ally effectively blocking the operation, known as Project Freedom, before it could gain traction. Mr. Trump has shifted focus to diplomacy, describing recent talks with Iran as very good and saying a permanent deal is very possible.
10: Iran is now reviewing a 14-point U.S. proposal to end the war, with Tehran's Foreign Minister Abbas Araghchi calling for dialogue and diplomacy. The proposed framework would pause hostilities and open a 30-day window of final negotiations, even though core issues including Iran's nuclear program would be left for later talks. Washington says it expects an Iranian response imminently. The diplomatic picture remains fluid. Iran has not publicly confirmed acceptance of any terms, and Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Khalibaf has dismissed some media reports as fake. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai.
7: While diplomacy advances, fighting across West Asia shows no sign of stopping. Israel bombed Beirut's southern suburbs on Wednesday in the first strike on the Lebanese capital since a U.S. brokered ceasefire nominally took effect on the 17th of April. The Israeli military says its operations target Hezbollah's infrastructure and fighters and has reported more than 220 Hezbollah members killed since the ceasefire began. In Gaza, Israeli strikes have continued, with Hamas condemning the attacks as a continuation of what it calls Israel's war of extermination. Meanwhile, the U.S. military has carried out strikes on Iranian military facilities after responding to attacks on Navy ships. Washington said that it does not want the conflict to grow but is ready to defend its forces. Earlier, U.S. claimed that Iran attacked three U.S. Navy ships in the Strait of Hormuz, but American forces intercepted the attacks and no ships were damaged. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain-hit match at the Ekana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to a 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell Marsh scored a dazzling 111 off 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 off 31 for Bengaluru. Mitchell Marsh was adjudged player of the match. And now for a look at today's newspapers, it's over to Subhadra.
11: Thank you, Abhishek. BJP preparing to assume office in Kolkata after its stunning victory in West Bengal finds prominent mention in most of the dailies. Governor dissolves West Bengal Assembly leads the pioneer. Amit Shah to meet Bengal MLAs today on choice of new chief minister, says the Asian Age. Bengal's re-industrialization roadmaps being chalked out, informs the statesman. India urges Bangladesh to speed up verification of illegal migrants, reports Hindustan Times. In another story, Hindustan Times headlines, Governor keeps Vijay waiting as Tamil Nadu deadlock deepens. The Tribune in its editorial piece says, hung mandate led Tamil Nadu Assembly floor decide. The paper writes that Tamil Nadu's unfolding post-election uncertainty has once again brought the constitutional role of the governor under scrutiny. With Vijay's Tamaraga Vetri Karagam falling short of the halfway mark, the question before Raj Bhavan is politically explosive yet constitutionally settled. Who should be invited to form the government? The constitution does not automatically grant the single largest party the right to govern. The governor is expected to determine which formation is most likely to command the confidence of the assembly. And finally, Financial Express, citing Niti Aayog's National Education Report released yesterday, says that Indian school kids are weakest in mathematics, higher reasoning. And with that, it's back to you, Abhishek.
7: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. BJP Central Observer for West Bengal Amit Shah to meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam, Tho Lam, emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases in airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ekana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लकी अली के गाए कुछ गीत। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ में ये पहला गीत।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली के गाए कुछ गीत। इसी क्रम में सुनते हैं एक और गीत लक्की अली की आवाज़ में।

0: आए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम में। सुनवाते हैं एक और गीत लकी अली की आवाज में।

0: लकी अली के गाए इस गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही क्षणों में आप इस घंटे की खास खबरें सुनेंगे, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे सुरमई सवेरा, फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। वियतनाम के राष्ट्रपति तु लाम ने कल मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल राजधानी भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्थे के 1100 श्रद्धालुओं को ट्रेन से रवाना किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सोमनाथ हमारी प्राचीन विरासत, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। डॉक्टर यादव ने कल सफाई मित्रों को पीपीई किट प्रदान की। पीपीई किट में रेनकोट, फुल बॉडी ड्रेस, हेलमेट, ग्लव्स और रिफ्लेक्शन जैकेट शामिल है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में भी गर्मी का असर बना रहेगा। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कल 9 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडिया वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा का दूसरा भाग। श्रोताओ, आज हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के नवे स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बातें। तो हम यही कहेंगे कि आकाशवाणी से जो चाहत है हमारी, वो कुछ इस तरह से है कि जिसको हम भूल ना भी चाहें तो ना भूल पाएं। और आकाशवाणी को हम किस हद तक चाहते हैं वो हमारे श्रोताओं और हमारे कार्यक्रमों के बीच का एक रिश्ता है। और हम यही कहेंगे कि हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे जितना कोई ना चाहता हो तुमको।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

0: सूचनाओं, समाचारों और नगमों के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे ग्वालियर केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रमों का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज अपने इस कार्यक्रम की। तो दोस्तों, जैसे हर सुबह की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए सकारात्मक विचारों, प्रेरणादायक जानकारियों और समाज से जुड़े कुछ विशेष विषयों की सुंदर प्रस्तुति। सुबह की ताजगी, नई ऊर्जा और उम्मीदों के साथ हम चाहते हैं कि आपका दिन खुशियों और उत्साह से भर जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष अंक की। श्रोताओं, आज का दिन मानवता, सेवा और समर्पण के नाम समर्पित है, क्योंकि आज विश्व भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जा रहा है। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसने हर संकट और हर आपदा में लोगों तक सहायता पहुंचाने का कार्य किया है। चाहे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो, सड़क दुर्घटना हो या किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, रेड क्रॉस हमेशा सेवा और सहयोग के साथ लोगों के बीच खड़ा दिखाई देता है। दोस्तों, ये संस्था का जो उद्देश्य है वो केवल राहत पहुंचाना ही नहीं, बल्कि लोगों में मानवता, सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत करना भी है। रक्तदान शिविरों का आयोजन, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान और आपदा राहत कार्यों के माध्यम से रेडक्रॉस समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विशेष जो आज का जो दिन है, विश्व रेडक्रॉस दिवस, हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपने स्तर पर ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आएं और मानव सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। इसी विशेष अवसर पर आज हम लेकर आए हैं एक खास भेंटवार्ता, जिसमें रेडक्रॉस की सेवाओं और आपदा प्रबंधन में उसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपदा में सहारा, रेडक्रॉस, इस विषय पर हम आपको भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं, जिसमें जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री नवल शुक्ला जी से विशेष बातचीत की है विभूति सिंह जी ने। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम के इस भाग में, जहां हम बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी के विषय में। रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता की सेवा, आपदा राहत और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कार्य करती है। हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हमारे साथ है रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव नवल शुक्ला जी। आइए उनसे जानते हैं कि रेड क्रॉस स्थानीय स्तर पर कैसे काम करती है और इसके साथ कोई भी कैसे जुड़ सकता है। शुक्ला जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: सबसे पहले हमें बताएं कि रेड क्रॉस सोसाइटी की संरचना क्या है और इसकी मुख्य भूमिका क्या है।
2: रेड क्रॉस सोसाइटी पार्लियामेंट के एक्ट रेड क्रॉस अधिनियम के अंतर्गत इसका जन्म हुआ है, और अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम बात करें तो इसकी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और सचिव एक मानद होता है। प्रदेश स्तर पर बात करें तो इसमें अध्यक्ष राज्यपाल होते हैं और एक सचिव होता है जो उनके द्वारा नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें जिले स्तर पर तो कलेक्टर अध्यक्ष होता है और उनके द्वारा सचिव नामित किया जाता है। इसमें मूल काम जो है पीड़ित मानवता की सेवा करना। आकस्मिक जो आपदाएं आ जाती हैं, उन आपदाओं में हम देखते हैं कि परिवार कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति विपन्नता की होती है। उस विपन्नता की स्थिति में हम आकस्मिक आपदाओं में, जैसे किसी का अगर घर जल गया है या किसी का घर बरसात में बह गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ इस प्रकार की आकस्मिक आपदाओं में आदमी टूट जाता है और आर्थिक पक्ष उसका कमजोर होता है, तो हम रेड क्रॉस के माध्यम से त्वरित आर्थिक सहायता उनको पहुंचाते हैं।
1: रेड क्रॉस दिवस 8 मई को क्यों मनाया जाता है और इस साल 2026 में इसकी क्या थीम है?
2: रेड क्रॉस दिवस, जैसा सबको पता ही है कि हेनरी डुनेंट नाम के एक व्यापारी थे जो मूलतः अल्जीरिया के थे
1: जी।
2: वो व्यापार करने के लिए जाया करते थे। एक बार जब वो व्यापार करने के लिए सोलफ्रिनो प्रांत में गए तो वहाँ पर देखा कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में लगभग 40,000 सैनिक या तो मारे गए थे या घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। उनको लगा कि ये तो मानवता के लिए कलंक है। युद्ध में मारे गए सैनिकों को या घायल सैनिकों को किस प्रकार से उनकी सहायता की जा सकती है, इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हुए। और लौट करके जब अपने देश गए तो वहाँ पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी सेल्फ्रिनो के नाम पर, और वो पुस्तक उन्होंने सारे विश्व के बड़े बड़े नेताओं को भेजी जो लीडर्स थे, यहाँ तक कि नेपोलियन थर्ड को भी उन्होंने पुस्तक भेजी थी। उस पुस्तक का चिंतन अध्ययन करने के बाद में तमाम देशों के लोगों ने ऐसा तय किया कि युद्ध में घायल और मारे गए सैनिकों की सहायता करने के लिए एक संस्था का होना आवश्यक है। इसलिए रेड क्रॉस सोसाइटी का जन्म 1863 में हुआ।
1: जी, और इस वर्ष की थीम के विचार बताएं।
2: इस वर्ष की जो थीम है, मानवता में एकजुटता, यानी ह्यूमन बीइंग होने के नाते हम कैसे एकजुट हो सकते हैं, मनुष्य के नाते, मनुष्यता के नाते हम कैसे एकजुट हो सकते हैं, ये आज इस वर्ष की थीम है।
1: ब्लड डोनेशन, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा जैसी सेवाएं हैं, इनमें हमारे युवा कैसे भाग ले सकते हैं?
2: ब्लड डोनेशन को लेकर के अभी तो बहुत जागरूकता आ गई है। यदि हम अपने रेड क्रॉस सोसाइटी ग्वालियर की बात करें तो लगभग 10,000 के लगभग हमने इस वर्ष ब्लड का दान प्राप्त किया है, और लगभग 14,000 के लगभग लोगों को हमने रक्त प्रदान भी किया है। अब आपके मन में ऐसी कल्पना भी आ सकती है कि 10,000 यूनिट प्राप्त करके 14,000 यूनिट हम कैसे दे सकते हैं। तो रेड क्रॉस बहुत आधुनिक सज्जा से युक्त है। हम जिस प्रकार से दूध को अगर आप देखें तो दही बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं, ऐसे ही ब्लड को हम लोग मशीनों के द्वारा कुछ अलग अलग पैक्सल, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इनमें अलग अलग विभाजित कर लेते हैं। जिस मरीज को जैसी आवश्यकता होती है वैसा हम प्रदान करते हैं। बहुत बड़ा युवा वर्ग जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी एक वर्ग जो है जो ब्लड देने से डरता है, क्योंकि उसके मन में ऐसा लगता है कि ब्लड देने से उसका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। जबकि इसके विपरीत जो ब्लड देने वाले लोग हैं, एक तो उनके ब्लड देते समय उनके शरीर की जाँच हो जाती है, दूसरा ब्लड में आयरन की मात्रा संतुलित हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमें हृदय रोग के चांस कम हो जाते हैं। तीसरा, ब्लड देने वाले का नया ब्लड बनता है तो नए रेड सेल्स डेवलप हो जाते हैं जो हमारे शरीर को हमेशा तरोताज़ा रखते हैं। तो कुछ भ्रांतियां हैं, इन्हें दूर किए जाने की आवश्यकता है। हम लोग प्रयास करते हैं, जागरूकता के शिविर भी लगा रहे हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तभी हमारे यहाँ रक्तदाताओं की संख्या बढ़ी हुई है। इसी प्रकार से जो फर्स्ट एड है, हमारे यहाँ फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग दी जाती है, फैक्ट्री वाला होता है, विद्यालय वाले होते हैं। अभी हमने CPR को लेकर के बहुत बड़ा कैंप चलाया था, कई विद्यालयों में हमने CPR की ट्रेनिंग दी है। तो ये जागरूकता के विषय हैं। लोगों को अगर पता होगा कि किसी को अगर हार्ट अटैक आया और उसको तुरंत CPR कैसे दिया जा सकता है, तो इन माध्यमों से, फर्स्ट एड के माध्यम से हम सबको प्रशिक्षित करने का कार्य भी करते हैं। हमारे स्वास्थ्य चेतना शिविर जो है, उनसे जोड़ने के लिए भी हम विद्यालयों में कैंप करते हैं, फैक्ट्रियों में कैंप करते हैं, और गाँव में जा करके हम, अभी जैसे अगर आपको पता हो कि सिकल सेल एनीमिया, या अपने यहाँ जो शहरिया समाज के लोग रहते हैं, इनमें एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, जिससे क्या होता है कि उस शहरिया समाज के लोगों की जीवन यात्रा बहुत कम होती है। 45 से 50 साल के अंतर्गत वो ईश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। तो उनके अंदर जागरूकता फैलाने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए हम लोग जाते हैं, गांव में जाते हैं, हमारी वैन है, गांव में जाते हैं। हमने लगभग 156 पुरुष और मातृशक्ति का परीक्षण किया है, और उनको बताया है कि क्या क्या सावधानियां बरतें और उनको दवा दे करके ठीक करने

0: का भी हमने प्रयास किया है।
1: अब हमको बताइए कि रेड क्रॉस स्वयं सेवकों की भर्ती और प्रशिक्षण की क्या प्रक्रिया है?
0: जैसा कि रेड क्रॉस की एक संरचना है, उसके अंतर्गत विद्यालयों के माध्यम से और कॉलेजेस के माध्यम से युवा पीढ़ी में ये विषय अगर रोपित आरंभिक अवस्था में कर दिया जाता है, जैसे किसी बच्चे को अगर शुरू में सिखा दिया जाता है तो वो पाठ उसको सदैव याद रहता है। इस नाते हम विद्यालयों के माध्यम से और कॉलेजेस के माध्यम से जूनियर रेड क्रॉस और सीनियर रेड क्रॉस ऐसी योजना चला करके काम करते हैं। वहाँ जा करके उनको सेवा कार्यों से जोड़ते हैं, फर्स्ट एड के बारे में बताते हैं, ब्लड डोनेशन के बारे में बताते हैं, तो वो लोग सेवा कार्य से जुड़ जाते हैं। एक बार जिसके मन में सेवा का बीजारोपण हो गया तो निरंतर वो सेवा कार्य से जुड़ा रहता है। इस प्रकार से हम समाज को सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
1: फीडबैक का भी कोई चैनल है क्या, जिनको आप तैयार करते हैं या प्रशिक्षण देते हैं, उनके द्वारा कहीं कोई जीवन रक्षक कार्य इस तरह किया गया हो, ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं?
0: हाँ, ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। CPR को लेकर के हमको उदाहरण मिले, विद्यालय में कॉलेज में एक सज्जन को आया था, प्रशिक्षित बालिका थी, मतलब छात्रा थी
1: जी,
0: उसने उनको CPR दे करके ठीक करने का काम किया। और फर्स्ट एड के माध्यम से जो फैक्ट्रियों में हम प्रशिक्षण देते हैं, तो यदि किसी को उस समय त्वरित उपचार की आवश्यकता पड़ती है, फैक्ट्रियों के अंदर प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं, वो तुरंत सहायता करने में सक्षम हो जाते हैं।
1: ऐसे मिले हैं आपको इंस्टेंसेस? हाँ, हाँ। जिन स्वयंसेवकों को आप तैयार करते हैं, प्रशिक्षित करते हैं, इनके अलावा जो आम नागरिक हैं वो रेड क्रॉस के कार्यों में अगर जुड़ना चाहें, जैसे रक्तदान या स्वयं सेवा, तो कैसे इनसे जुड़ा जा सकता है?
0: प्रचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, FM के माध्यम से, लोगों को जब भी हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, एक हम लिंक बना देते हैं और उसको बहुत अधिक मात्रा में प्रसारित करते हैं। जो रक्तदाता होते हैं, जो इच्छुक रक्तदाता होते हैं, वो आते हैं और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और इस सेवा कार्य से जुड़ जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी हमारे यहाँ भी मैं बताऊँ कि एक पुरुष लॉन्ग स्टे होम और एक महिला लॉन्ग स्टे होम का संचालन किया जा रहा है। महिला लॉन्ग स्टे होम से तात्पर्य है कि जो महिलाएँ मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती होती हैं और वो ठीक हो जाती है, लेकिन समाज का परिवेश कुछ इस प्रकार का है कि अपने माता बहनों को वापस ले जाने की स्थिति में नकारात्मक उनके भाव दिखते हैं,
1: एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है।
0: हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं, ऐसे पुरुष वर्ग को लेकर के भी नकारात्मक जो भाव होते हैं, तो हम लोग प्रयासपूर्वक पहले तो ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है, लगभग 52 मातृशक्तियों को मैंने उनके परिवार वालों से मिलाने का कार्य किया है लगभग 4 साल में, और इनमें समाज जुड़ता है, सेवा कार्यों को देखता है, और जब आदमी साक्षात सेवा कार्यों का अनुभव करता है तो उसके अंदर पीड़ित मानवता की सेवा करने का भाव का जागरण होता है और स्वयं वो अपनी संस्था बना करके या व्यक्तिगत रूप से सेवा कार्य को आरंभ करता है।
1: एक सचिव के रूप में इस सोसाइटी से जुड़कर क्या अनुभव होता है, और कुछ संदेश अगर देना चाहें हमारे श्रोताओं को तो वो भी दे सकते?
0: पीड़ित मानवता की सेवा करना, अपने आप कहते हैं ना कि मंदिर जाने से अच्छा चलो एक रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, या नर सेवा नारायण सेवा, ये जो भाव है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। स्वर्ग और नर्क का कंसेप्ट यहीं पर है सब कुछ। आप अपने भावों में पवित्रता लाएं, सेवा के प्रति अपने निष्ठा को प्रबल करें, अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हमारा जो जन्म हुआ है, मैथिली शरण की 2 लाइन कहता हूँ, इसमें सिर्फ सार है कि ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो कि जिससे व्यर्थ ना हो। अपने जीवन का सार हम समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से हम सेवा के लिए प्रेरित होंगे। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि युवा पीढ़ी बहुत अधिक मात्रा में जुड़ रही है मेरे साथ में। यदि कभी आपका अवसर लगे, साक्षात दर्शन कराऊंगा कि युवा पीढ़ी, खास करके मातृशक्ति, अभी हमारा एक लेटेस्ट ब्लड डोनेशन कैंप लगा था, उसमें ब्लड देने वालों में मातृशक्ति की संख्या पुरुष वर्ग से ज़्यादा थी। ये निश्चित रूप से ही समाज में परिवर्तन लाने वाला है, और रेड क्रॉस दिवस पर मैं सभी शहरवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि रेड क्रॉस सोसाइटी पीड़ित मानवता के लिए सदैव तत्पर है। कभी भी किसी की आवश्यकता पड़ती हम पीछे हटते नहीं हैं, परंतु हम सबको भी बढ़ चढ़ करके सेवा कार्यों से जुड़ना चाहिए, पीड़ित मानवता से जुड़ना चाहिए, यही हमारे लोक और परलोक को सुधारने का काम करने वाला है।
1: आपके संदेश में ही मुझे ये गुंजाइश दिख गई है कि आपको संपर्क कैसे करें आमजन अगर चाहे तो?
0: हमारा कार्यालय कंपू में है, सभी के लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है, अपना आवेदन दे सकता है। मूलतः क्या होता है कि हमें प्रोसेस करना होता है, कलेक्टर को कन्विंस करना पड़ता है, वो अध्यक्ष रहती हैं, उनके माध्यम से ही स्वीकृति प्राप्त करके हम सहायता कर पाते हैं।
1: कार्यालय में आके मिला जा सकता है?
0: कार्यालय मिला जा सकता है। मेरा नंबर अगर आप चाहे देना चाहे तो दे सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप अगर देना चाहे हमारे श्रोताओं को तो दे सकते हैं।
0: मेरा नंबर है 9452539166। कभी किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता हो मुझसे प्रत्यक्ष संपर्क करें। वैसे पहले मैं अननोन नंबर नहीं उठाता था, लेकिन जब से रेड क्रॉस से जुड़ा हूँ पता नहीं किसको कब आवश्यकता पड़ जाए तो मैं अननोन नंबर अब उठाने लगा।
1: ये बहुत अच्छा परिवर्तन है जिसे आपने साझा किया, और अब हमारे श्रोताओं के पास आपका नंबर भी है, उम्मीद है कि नोट कर लिया होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, रेड क्रॉस दिवस पर इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी आभार।

श्रोताओं, अभी आपने सुना भेंटवार्ता जिसका विषय था आपदा में सहारा, रेड क्रॉस। और इस भेंटवार्ता में बात कर रहे थे जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्री नवल शुक्ला जी, और आपसे खास बातचीत कर रही थी विभूति सिंह। श्रोताओं, तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: खार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: श्रोताओं, आज का दिन भारतीय प्रसारण जगत के इतिहास में अत्यंत विशेष और गौरवपूर्ण है। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो अपनी स्थापना के 90 शानदार वर्ष पूरा कर रहा है। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से ऑल इंडिया रेडियो रखा गया था और तभी यह संस्था देश की आवाज़ बनकर जन जन तक पहुंच रही है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के मूल मंत्र के साथ आकाशवाणी ने दशकों से देश को समाचार, संगीत, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा और जन जागरूकता से जोड़ने का कार्य किया है। रेडियो की मधुर आवाज़ ने हर दौर में लोगों का साथ निभाया है, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन का समय हो, युद्ध की परिस्थितियां हो, प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर मनोरंजन या संस्कृति का प्रसार। आज भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और आत्मीयता के कारण करोड़ों श्रोताओं के दिलों में विशेष स्थान रखता है। इस ऐतिहासिक अवसर को और भी यादगार बनाने के लिए 8 मई 2026 की सुबह नई दिल्ली में एक विशेष मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और ये मैराथन आकाशवाणी भवन से प्रारंभ होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन तक आयोजित होगी। यह आयोजन केवल एक दौड़ नहीं बल्कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की प्रेरणादायक यात्रा और जनसेवा के प्रति समर्पण का उत्सव है। तो आइए इस अवसर पर हम सभी आकाशवाणी से जुड़े और उन सभी कलाकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और श्रोताओं को नमन करें जिन्होंने इस संस्था को देश की सांस्कृतिक पहचान बनाई। इसी शुभकामना के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में। दोस्तों, ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। और सड़क केवल मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम नहीं है दोस्तों, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी और जागरूकता की भी परिभाषा है। हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इनमें से कई दुर्घटनाएं केवल थोड़ी सी सावधानी और यातायात नियमों के पालन के द्वारा रोकी जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए जाने वाले वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हमें यही संदेश देता है कि सुरक्षित सड़कें, सुरक्षित जीवन। दो पहिया वाहन चलते समय हेलमेट पहनना, कार में सीट बेल्ट लगाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करना और तेज़ गति से बचना और ट्रैफिक संकेतों का पालन करना, ये कुछ नियम ही तो हैं। और इन नियमों का पालन करके हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। आजकल युवाओं में तेज़ रफ्तार और स्टंट का आकर्षण बढ़ता जा रहा है दोस्तों, लेकिन ये याद रखिए, ये सड़क पर थोड़ी

की लापरवाही किसी परिवार की खुशियां पल भर में छीन सकती है। एक छोटी सी गलती पूरे जीवन पर भारी पड़ सकती है। श्रोताओं, सड़क सुरक्षा केवल सरकार या ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी का सामूहिक दायित्व है। जब हम नियमों का पालन करते हैं तो हम केवल अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं। बच्चों को सड़क पार करने के नियम सिखाना, बुजुर्गों की सहायता करना और वाहन चलाते समय धैर्य रखना, ये छोटी छोटी बातें समाज को अधिक सुरक्षित बनाती हैं। दोस्तों, आज आवश्यकता है जागरूकता की, संयम की और जिम्मेदारी की। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि वाहन हमेशा सावधानी से चलाएंगे, यातायात नियमों का पालन पूरी तरह से करेंगे, नशे की हालत में वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे और दूसरों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सड़क पर सुरक्षा ही सबसे बड़ी समझदारी है। तो श्रोताओं, इस सकारात्मक संदेश के साथ ही अब समय हो गया है एक खूबसूरत फिल्मी गीत का। तो जीवन की अहमियत और सफ़र की खूबसूरती को महसूस कराता ये गीत आपके लिए पेश है।

तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग ग्वालियर कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कल सुबह नई ऊर्जा, नई जानकारियों और मधुर गीतों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी दोस्त स्मिता को। आप सभी को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचनाओं और समाचारों पर आधारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर हरिचरण वर्मा का गायन, राग है नट भैरव।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया डॉक्टर हरिचरण वर्मा का गायन, राग था नट भैरव। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: लीजिए, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिन मिश्र, वाचन स्वर दीपा सिंह। सीधी जिले में इन दिनों एक साथ कई बदलाव और गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। मौसम के बदलते तेवर, प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक अभियानों की रफ्तार, महिला सशक्तिकरण की पहल, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम, सभी मिलकर जिले की एक व्यापक तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। मई माह की शुरुआत इस बार सामान्य वर्षों की तुलना में अलग रही। जहां आमतौर पर इस समय तेज गर्मी का असर देखने को मिलता है, वहीं इस बार आंधी और बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ हुई बारिश ने किसानों के चिंताएं बढ़ा दी हैं। उधर उपार्जन केंद्रों और समितियों में रखे अनाज पर भी इस मौसम का असर देखने को मिला है। प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों और समितियों को निर्देश जारी किए कि अनाज को सुरक्षित रखने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। जिले में गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। किसानों के लिए सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। हजारों किसान स्लॉट बुकिंग के माध्यम से अपनी उपज बेच रहे हैं। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सैटेलाइट सत्यापन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। उपार्जन केंद्रों पर पेयजल, बैठने की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके साथ ही चना, मसूर और सरसों जैसी अन्य फसलों के लिए भी उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। जिले में सेवा और मानवता के संदेश को मजबूत करने के लिए इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा रेडक्रॉस सप्ताह मनाया जा रहा है। 2 मई से 8 मई तक चल रहे सप्ताह के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सलेंस में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आपदा के समय सजग रहने और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा दी गई। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को बताया कि कठिन समय में संयम और जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। रेडक्रॉस के इस अभियान के तहत शासकीय कन्या महाविद्यालय में छात्राओं के लिए प्राथमिक उपचार और CPR प्रशिक्षण का आयोजन भी किया गया। जिले में स्वच्छता को लेकर भी एक सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। स्वच्छता को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शहर में रंगोली अभियान आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। इस अभियान में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ने साबित कर दिया है कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। स्वच्छता अभियान को और मजबूती देने के लिए जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली। विधायक रीति पाठक ने रात्रिकालीन सफाई अभियान में स्वयं श्रमदान कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सफाई कर्मियों के साथ संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासनिक स्तर पर जनगणना अभियान को लेकर भी विशेष

सक्रियता दिखाई दे रही है। कलेक्टर ने स्वयं मैदान में उतरकर जनगणना कार्य में भाग लिया। उन्होंने एक परिवार के घर पहुंचकर न केवल प्रक्रिया का अवलोकन किया बल्कि लोगों को सही जानकारी देने का महत्व भी समझाया। जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की योजनाओं का आधार होती है। इसी कारण प्रशासन इस कार्य को पूरी पारदर्शिता और सटीकता के साथ संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जिले में उल्लेखनीय पहल की जा रही है। चुरहट में आयोजित अवनी कार्यक्रम ने महिलाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया। इस कार्यक्रम में सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन में स्वास्थ्य पोषण और आत्मनिर्भरता से जुड़े विभिन्न पहलुओं को भी शामिल किया गया। महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें पोषण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। शिक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम में क्रिएटिव गतिविधियां भी आयोजित की गई जहां छात्राओं ने चित्रकला के माध्यम से अपने सपनों और भविष्य की कल्पनाओं को प्रस्तुत किया। ये पहल न केवल उनकी प्रतिभा को मंच देती है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। समग्र रूप से देखा जाए तो सीधी जिले में विकास, जागरूकता और जन भागीदारी का संतुलित स्वरूप दिखाई दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण और कृषि, इन सभी क्षेत्रों में हो रहे प्रयास ये संकेत देते हैं कि सीधी जिला निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसर है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे सीधी जिले की चिट्ठी। आलेख सचिंद्र मिश्र का था और वाचन स्वर था दीपा सिंह का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 10:05 हुए हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आपकी अपनी पसंद के फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त स्मिता। दोस्तों, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शर्मिली से। नीरज के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने और आवाज़ किशोर कुमार की है। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी, एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ, अम्भई तहसील सिल्लोड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से हमें ये मैसेज लिखते हैं अनिल कुमार गोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के, धमता ग्राम सुखरी काला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म शर्मिली से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी, जो लिखते हैं हमें मैसेज जैन मंदिर वाली गली कुरावली से, राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरानी अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से, छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और उनकी लाडली पोती रौनक दीप कौर, छिंदर अजीत नगर मलोट पंजाब से, सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया और रीता भाटिया। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म बड़े दिलवाला से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत रचना आर डी बर्मन की है। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

श्रोताओं, अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बेमिसाल से। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत रचना आरडी बर्मन की है, आवाज़ किशोर कुमार की। और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना राजेंद्र सिंह ओबेरॉय, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल, मलियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवर जीवीएम जैन, भाई दिग्दर्शन जी, नई बस्ती गुंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हासमी, नाजमा बेगम हासमी, मोहम्मद तौसीफ हासमी, मोहम्मद तैमूर

कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रजनीगंधा से। योगेश के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। आवाजें हैं मुकेश। आइए सुनते हैं इस गीत को जिसे सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी पटियाला रोड गुंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद कुरैशी, आकिल कुरैशी, बेबी आरिबा हबीबा। यही गीत सुनना चाहते हैं महाराजा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रशीद वारसी। गाडरे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षिता लोखंडे और रेयांश लोखंडे। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म रजनीगंधा से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म मासूम से। आरती मुखर्जी की आवाज़ में इस गीत को हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी ने, जो हमें लिखते हैं मैसेज। पंडर कवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री बुरांडे और समस्त बुरांडे परिवार, बल्ला शाह से सूरज लोटे, प्राची एकलव्य इसी गीत को सुनना चाहते हैं, हितेंद्र दास कुदाली सोनबिल असम से, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया, वर्षा सुमन, देवश्री, कीर्ति भारती और अनुराग मोहन। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म मासूम से।

सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है मासूम। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और आवाज़ें हैं सुरेश वाटकर और भूपेंद्र की। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जसपाल यादव। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, वर्षा सुमन, देवश्री, कीर्ति भारती। कौन सा ही पूर्णा जंक्शन मस्तानापुर से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत, रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरक्रीत, गुरुशब्द सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से, न्यू बजरंग कॉलोनी राजा गैस गोदाम गोल पहाड़िया लश्कर ग्वालियर से लिखते हैं हमें मैसेज नेत्राम गोड़िया, सरोज गोड़िया, शशि कुमार, भावना, नीरज, अर्चना, आद्या, श्रेया और देवांशु। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म मासूम से।

श्रोताओं, आप आनंद ले रहे हैं अपने ही पसंद की फिल्मी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की है। इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता साथी सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से। अंडार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखन लाल वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के, रोहित दास चौक पंडरपुर शहर से, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गीत। फिल्म का नाम है छोटी सी बात। गीत के बोल लिखे हैं योगेश गौड़ ने और इस गीत को संगीतबद्ध किया है सलील चौधरी ने। आवाज़ एक बार फिर लता मंगेशकर की और इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता साथी। ये लिखते हैं मैसेज, ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू,

बलकरण वर्मा अंजनी, चित्ररेखा वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, उमेश धनेश्वरी वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, रामबाई कॉलोनी घाटकोपर मुंबई से वैभव चौहान, आभिर चौहान, भीमराव चौहान, सुजाता चौहान, धायरी वड़गांव पुणे से विजय कांबले, बेबी शौर्या, श्रेयस कांबले, अंकिता कांबले। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म छोटी सी बात से।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कामचोर से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है वारणा शहरापुर

भारत मक्कड़ कमाल सहानी पिंगा वाले चौक गोराया जालंधर से, मुकम्मम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर सलमा, मुमताज दिलशाद, नसीर मुलानी और समस्त मुलानी परिवार, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत फिल्म कामचोर से।

इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें, जिन्हें हम अपने मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिंदगी नामा। कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: मीडियम वेव डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना के 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वैकोथॉन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई, कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में सम्पन्न हुई। भोपाल स्थित भारत भवन में आज से माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का 3 दिवसीय मीडिया महाकुंभ शुरू हो रहा है। ये कार्यक्रम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के जश्न में आयोजित किया जा रहा है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के ग्वालियर समेत 21 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 34 जिलों में गर्मी का असर बना रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेब डीटीएच के ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
3: श्रोताओं, फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। तो जल्दी से डायल कीजिए 2660902 और एसटीडी कोड आप जानते ही हैं 0755। कीजिए हमसे बात और सुनिए अपनी पसंद के गीत। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। हेलो
4: जी, आलिनी दीदी सादर नमस्कार।
3: जी नमस्ते, आपका शुभ नाम?
4: जी दीदी, मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
3: हम बढ़िया। कहाँ से बोल रहे हैं?
4: मथुरा उत्तर प्रदेश।
3: हाँ शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत अच्छे हैं। आप सुनाइए, मथुरा में तो गर्मी बहुत तेज पड़ रही होगी।
4: जी दीदी, हृदय से धन्यवाद करते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि मथुरा में बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं है। तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और रात में 24 डिग्री सेंटीग्रेड
3: पर है।
4: मौसम बहुत ही खूबसूरत सुहाना है और लू की चपेट में बिल्कुल नहीं है।
3: क्या बात है, मतलब मथुरा का हमने सुना था गर्मी बहुत तेज पड़ती है इन दिनों में।
4: जी दीदी, पिछले 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी और रिमझिम रिमझिम फुहार पड़ी थी, ठंडी ठंडी हवाएं चली थी, जिसके कारण कि तापमान 42 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया।
3: अरे वाह, चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर कोई वहाँ विजिट करना चाहे तो अभी आराम से आ सकता है।
4: जी जी बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है, भ्रमण करने लायक है। और जो देवालय है यहाँ पे शिवालय है, अनेकों लीला स्थली क्रीड़ा स्थली भगवान की, वो सब दर्शन करने में बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी।
3: बहुत अच्छी बात है, ये जानकारी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी और हमारे बाकी श्रोता

0: के लिए भी, तो बहुत बहुत धन्यवाद शारदा जी। अच्छा अब ये बताइए, आज का प्रोग्राम है फोन करे गीत सुने, तो आज आपने कौन से गीत सुनने की फरमाइश है आपकी?
1: दीदी, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है शोर,
0: शोर।
1: आशीष कपूर साहब की आवाज में। जीवन
0: हाँ
1: चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, ये प्यारा सा पूरा गीत आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, प्रेरणादायक है।
0: अच्छा, जीवन चलने का नाम।
1: जी
0: देखते हैं हम ये गीत, हमारे पास वैसे तो है 99.9% है ये गीत, फिर भी एक
1: जी
0: बार
1: जी
0: मैं
1: जी
0: चेक
1: जी
0: कर
1: जी
0: लेती
1: याद आया
0: हूँ।
1: आपकी बात। जी
0: क्यों नहीं दिख रहा ये भाई?
1: 101% से और
0: हाँ हाँ होगा वो तो। और सुनाइए शारदा जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
1: दीदी, मैं हूँ, मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, एक
0: अरे
1: नाती
0: वाह,
1: है, एक नतनी है,
0: अच्छा अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: हम सब एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे रहते हैं
0: हाँ,
1: आनंद पूर्वक, और आप लोगों से वार्तालाप करते रहते हैं रेडियो
0: अरे
1: सुनना मेरा
0: वाह,
1: शौक
0: मतलब
1: है परिवार
0: आपके
1: में।
0: घर के सभी लोग हैं ना, गीत संगीत से
1: जी
0: जुड़े हैं और हमारे आकाशवाणी रेडियो से जुड़े हुए हैं।
1: जी जी निसंदेह।
0: ठीक है शारदा जी, आपकी पसंद का गीत मेरी नजरों के सामने है, तो कल आप अपनी पसंद का गीत इस प्रोग्राम में सुन सकेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो चुका है, तो आप आज जो रिकॉर्ड करेंगे वो कल सुनेंगे, तो कल
1: दीदी,
0: 11 बजे
1: मैं
0: अपना।
1: करीब 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, जब से ये रिकॉर्डिंग प्रोग्राम चालू हुआ है
0: हाँ हाँ
1: तब से मैं जुड़ गया हूँ। पहले मैं प्रयास करता था लेकिन मेरा फोन कभी लगता नहीं था लाइव प्रोग्राम में, और जब से रिकॉर्डेड हो गया है तो मैं
0: अच्छा
1: 8 दिन 10 दिन के अंदर से लगाता हूँ और
0: हाँ
1: मेरा
0: जी,
1: फोन आराम से लग जाता है।
0: चलिए धन्यवाद शारदा जी, और बस एक विनती करेंगे कि एक हफ्ते बाद ही दोबारा कॉल कीजिएगा।
1: हाँ दीदी, मैं 10 दिन में करता हूँ, 9 दिन में 10 दिन करता हूँ,
0: चलिए
1: इससे
0: ठीक
1: पहले
0: है,
1: मैं नहीं करता हूँ। मेरा
0: बिल्कुल
1: फोन
0: बिल्कुल।
1: 28 तारीख को लगा था और 28 के बाद आज लगा रहा हूँ।
0: ओके, धन्यवाद शारदा जी।
1: बहुत बहुत हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं का।

0: हेलो हेलो
1: कार।
0: हेलो। हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ, मैं ग्राम बालोदा लखा जिला उज्जैन से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ।
0: अच्छा कन्हैया लाल जी।
1: हाँ जी।
0: अभी भी जो हमारे पहले श्रोता थे वो भी प्रजापति और आप भी प्रजापति।
1: सही है।
0: बड़ा संयोग है ये तो। हाँ
1: सही बात है मैडम।
0: जी, बस वो कन्हैया लाल जी मथुरा से बोल रहे थे और ये वो कन्हैया लाल जी नहीं थे, क्षमा कीजिए, वो शारदा प्रसाद जी थे प्रजापति
1: अच्छा हाँ, अच्छा
0: और
1: चलो।
0: मथुरा से। और ये
1: हाँ
0: मथुरा से कन्हैया लाल जी आ गए हैं उज्जैन से, क्या बात
1: हाँ बहुत बढ़िया बात है।
0: है। बहुत ही बढ़िया संयोग
1: मथुरा से उज्जैन आ गए,
0: वही।
1: गोकुल
0: बिल्कुल
1: गोकुल बोलने गए, है ना, पढ़ने के लिए आ गए
0: बिल्कुल
1: यहाँ
0: बिल्कुल सही
1: आनंदपुर
0: बात है। हाँ तो
1: से।
0: चलिए कन्हैया लाल जी, अब बताइए, पहले तो आप अपने हाल बताइए कि हाल कैसे हैं आपके।
1: बस हाल क्या है, गर्मी बहुत भयंकर गिर रही है इधर, तो अब आराम कर रहे हैं या खाना खा करके।
0: सही बात है, गर्मी तो है। दो
1: अच्छा
0: तीन दिन से
1: वोटा हुआ
0: थोड़ी
1: कुछ।
0: सी राहत मिली है ना, थोड़ी बूंदाबांदी की
1: हाँ
0: वजह
1: हाँ
0: से।
1: हाँ भोजन वोजन करके आए और हरदेव लाला आराम
0: हाँ
1: कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी गिर रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कन्हैया लाल जी, गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप?

0: फिल्म जीने की राह सुना दीजिए।
1: जीने की राह,
0: आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा।
1: जीने की राह तो मिल गया है,
0: मेरी महबूबा ये वाला।
1: लेकिन इसमें देखिए ना, जीने की राह तो मूवी मेरे सामने है, बिल्कुल ठीक है, मिल गया आपकी पसंद का गीत भी मिल गया, है ना। चलिए तो कल हमारे प्रोग्राम में आप ये गीत सुन सकेंगे।
0: और आपके इधर किसने क्या गर्मी है अभी इंदौर?
1: हमारे यहाँ भी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है, लेकिन अभी थोड़ी बारिश हो गई थी तो 2 दिन से कुछ राहत कह सकते हैं।
0: अच्छा अच्छा रात में से सुन लिया।
1: जी जी चलिए, धन्यवाद कन्हैया लाल जी कॉल करने के लिए, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा, ऐसी गुजारिश है।
0: ओके ओके, धन्यवाद
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका फोन करे गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। जी
0: प्रेम सिंह सिसोदिया
1: मैडम,
0: जी कहाँ से? नागदा से।
1: जी हाँ, नागदा तहसील लगता है और ग्राम बछोड़ा है हमारा, उज्जैन जिले में लगता
0: जी
1: है।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेम सिंह जी। और
1: जी
0: कॉल
1: थैंक
0: कितने
1: यू सो
0: दिनों बात
1: मच।
0: कर रहे हैं आप?
1: जी समझ में नहीं आया
0: मैंने कहा फोन कितने दिन बाद लगा है आपका रेडियो में।
1: जी, 10 दिन बाद लगा है आज कॉल मेरा।
0: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं?
1: जी, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से। जी
0: अच्छा, क्या करते
1: जी
0: हैं आप ये तो बताइए।
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, भजन गायक हैं
1: जी
0: तो उसे
1: जी
0: भजन
1: हाँ,
0: गाते
1: हमारे
0: हैं।
1: 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है
0: हाँ
1: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं
0: हाँ
1: और 2 लोग ढोलक और तबला बजाते हैं। और दीदी
0: हाँ
1: आपको बताओ, मतलब हफ्ते 8 दिन 10 दिन में हमारा प्रोग्राम मतलब होता ही हो रहता है हमारे आसपास के एरिया में।
0: अच्छा, बड़ी अच्छी
1: जी
0: बात है।
1: हाँ, और उसके साथ में मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ 2005 से। पहले फोन इन प्रोग्राम कम आते थे, फोन इन के अलावा पत्रों द्वारा भी मैंने कई बार फरमाइश भेजी थी आकाशवाणी
0: हाँ
1: भोपाल
0: हाँ
1: पर।
0: जी
1: और
0: जी
1: एक आकाशवाणी भोपाल से मतलब रविवार की सुबह प्रोग्राम आता था, आपके मतलब पत्रों पर आधारित होता था जी। उसमें मतलब चिट्ठियां डालते थे, मतलब उसमें है ना पूरे हफ्ते की जानकारी के बारे में बताते थे सभी
0: अच्छा, मतलब
1: लोग।
0: काफी टाइम हो गया आपको रेडियो से जुड़े हुए।
1: जी हाँ, और उसमें है ना एक दिन ऐसा भी और विशेष होता था
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: श्रोताओं को मतलब आकाशवाणी के वहां से फोन आता था और श्रोता से जानकारी लेते थे वो आकाशवाणी के बारे में, कौन सा प्रोग्राम कैसा लगता है, किस प्रोग्राम में उतार चढ़ाव की जरूरत होती है, मतलब ऐसे मतलब है
0: हाँ
1: ना
0: जी,
1: आकाशवाणी स्टूडियो से कॉल लगाते थे और मुझे भी कई बार ऐसे कॉल आते थे वहां
0: अरे
1: से।
0: वाह, क्या बात है। तो चलिए,
1: जी,
0: मतलब
1: और
0: अब
1: एक बात और
0: अपना
1: है, जैसे युववाणी प्रोग्राम आता था ना, युववाणी
0: अभी भी
1: आकाशवाणी
0: आता
1: भोपाल
0: है।
1: के।
0: हाँ हाँ
1: जी हाँ, उसमें एक फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जीनियस करके,
0: हाँ हाँ
1: उसमें 5 सवाल पूछे जाते थे और जो जीनियस होते थे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता था,
0: हाँ हाँ
1: तो मैं भी एक बार वहां पे जीनियस बना था।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो प्रेम सिंह
1: जी
0: जी, अपना ये लगाव आकाशवाणी से बनाए रखिएगा और कल के प्रोग्राम में अपना गीत सुनिएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आकाशवाणी की जितने भी मतलब मैं कार्यक्रम सुनता हूँ ना, उनको बड़ा ध्यान से सुनता हूँ और सभी को मतलब ऐसा
0: हाँ
1: रखता
0: हाँ
1: हूँ लिखकर।
0: चलिए, धन्यवाद।
1: जी थैंक यू सो मच।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते
0: हाँ जी नमस्ते।
1: मैम। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते पहुँचे।
0: जी शुभ नाम आपका।
1: पंडित शिवनारायण तिवारी नागा
0: जी शिव
1: जी
0: नारायण जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है, कैसे हैं आप?
1: जी बहुत दिन बाद फोन भी लगा रहे हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है हाल चाल। गर्मी भी थोड़ी रफ्तार पकड़ रही है।
0: और घर में सब
1: और
0: कैसे हैं?
1: आप ठीक
0: हाँ
1: हैं
0: हम बढ़िया हैं।
1: जी?
0: तो बताइए कौन से गीत सुनेंगे?
1: आज सुनाना सड़क फिल्म का जी,
0: सड़क फिल्म का कौन सा वाला गीत?
1: ओ जब जब प्यार पे पहरा हुआ, ये
0: अरे वाह, क्या बात है! बहुत प्यारा गीत है ये।
1: का हम बिल्कुल सदाबहार गीत सुनते हैं मैम।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और कुछ गीत तो ऐसे हैं जो कितना भी सुन लो लेकिन उनसे आप ऊबते नहीं हो,
1: जी
0: है
1: मैम,
0: ना?
1: बिल्कुल
0: ठीक है, ये गीत हम आपको बिल्कुल सुनवाएंगे। तो कल 11 बजे अपने प्रोग्राम में ये गीत अपनी पसंद का जरूर सुनिएगा।
1: जी मैम,
0: जी
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है
1: नमस्ते
0: आपका।
1: मैम।
0: नमस्ते। अच्छा,
1: मैम शिवानी, मेरा बात करी नीमच से। जी
0: शिवानी।
1: मैम,
0: पूरा नाम क्या है आपका?
1: मेहरा,
0: शिवानी मेहरा।
1: शिवानी मेहरा,
0: कहाँ से? नीमच
1: नीमच
0: से।
1: से। जी
0: कैसी हैं शिवानी जी?
1: मैम, आप अच्छी हो? मैं, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं। और अभी गर्मी के मौसम में क्या स्पेशल प्लान किया है आपने?
1: मैम अभी तो कहीं हम निकल नहीं पा रहे क्योंकि इतनी गर्मी है।
0: कहीं घूमने जाने का, हिल स्टेशन पे जाने का प्लान नहीं किया?
1: नहीं मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है नीमच में, अभी कहीं
0: हाँ,
1: निकलने के भी नहीं है अभी तो, क्योंकि
0: ये बात तो सही है। फैमिली में कौन कौन है शिवानी
1: हाँ
0: जी आपके? कौन कौन है फैमिली में?
1: फैमिली में मैं, मम्मी,
0: हाँ।
1: पापा, मेरे से दो छोटी सिस्टर और एक भाई है।
0: अच्छा, और आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं तो कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो घर पर बैठे खाना वाना बना रही होती है, और फिर मैंने कि फोन में प्रोग्राम आ रहा है, मैंने ट्राई करती हूँ।
0: चलो ठीक है। तो शिवानी जी, कौन सी पसंद, मतलब कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगी आप कल?
1: मैम पागल मूवी का
0: अरे
1: चेहरा
0: वाह।
1: है चांद खिला है।
0: बहुत प्यारा गीत है ये तो।
1: जी मैम,
0: तो हम आपको ये गीत जरूर सुनवाएंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे आपका, और आप
1: जी
0: कल
1: मैम,
0: के प्रोग्राम में अपनी पसंद का गीत जरूर सुनिएगा शिवानी जी। कॉल
1: थैंक
0: करने
1: यू
0: के लिए
1: मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते, मैं देवास मध्य प्रदेश से राजू अग्रवाल बोल रहे हो दीदी।
0: हाँ राजीव जी, आपसे एक बार और बात हुई थी हमारी।
1: हाँ, बिल्कुल।
0: कैसे हैं आप?
1: आप कौन बोल रहे हैं?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: हाँ, धन्यवाद।
0: कैसे हैं राजीव जी?
1: बढ़िया है दीदी। आप जैसे फरमाइश कार्यक्रम करते हो, आपकी फरमाइश जो आता है तो
0: हाँ जी।
1: उसमें क्या है कि जैसे लेटर ज्यादा लिया करो आप,
0: चलिए।
1: जैसे ऐसा बोलते हो सोता साथी, वो तो सोते ही पसंद, बस पसंद आप सबकी में सब आ जाता है। आप जो बोलते हो ना, तो थोड़ा सा लेटर उसमें बढ़ाओ, और हमारा देवास के लेटर तो शामिल ही नहीं हो रहे हैं।
0: वो इत्तेफाक है, इतना बड़ा बंडल होता है उसमें से हम कुछ लेटर सिलेक्ट करते हैं तो जो हाथ में आते जाते हैं, ऐसा रहता है। पर कोशिश करेंगे आपका पत्र भी हम शामिल करें।
1: मध्य प्रदेश एमपी के लेटर कम शामिल हो रहे, और एक ही एक लेटर रोज शामिल हो रहे हैं। जैसे आपने जो कल लिया वही आज वापस वो का वही शामिल हो गया। तो हमारा ये आपसे अनुरोध है कि जैसे सबके लेटर शामिल होने चाहिए।
0: बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक पत्र पढ़ें। और
1: जी,
0: चलिए अभी तो
1: और
0: आज के लिए
1: ऐसे है
0: बताइए
1: कि
0: कि कौन सा गीत सुनना चाहते हैं।
1: आज तो दीदी जैसे ये अजीज नाजा जो कव्वाल है मशहूर, 7 मई का उनकी मतलब डेथ का
0: देखिए
1: दिन है। जी
0: आप एक बात भूल रहे हैं, यहाँ पर है ये फिल्मी गीत। फिल्मी गीत आपको सिलेक्ट करने हैं जो अपने
1: हाँ,
0: फिल्मों के।
1: फिल्मी गीत पुतली बाई पिक्चर का सुनवा दीजिए, उन्हीं का गाया हुआ गीत है कोई सा,
0: अच्छा
1: उसमें
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
1: पुतली बाई का
0: हाँ,
1: वाला सुनवा दीजिए। नहीं तो फिर ये
0: पुतली
1: लेडीज
0: बाई का
1: सिंगर
0: कौन सा वाला?
1: उसका कोई सा भी, जैसे इन्हीं का गाया हुए गीत है उसमें, झूम बराबर झूम शराबी, ये भी है और दूसरा भी है गीत।
0: नहीं, इसमें झूम बराबर
1: और
0: झूम तो
1: या
0: नहीं।
1: फिर लेडीज टेलर पिक्चर का, दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला,
0: देखते हैं ये है कि नहीं है।
1: पुतली बाई का देख लो पहले, अजीज नाजा साहब का गाया।
0: नहीं, है इसमें पुतली बाई का तो नहीं है। पुतली बाई का जो गीत आप बता रहे हैं
1: हाँ

0: वो नहीं है इसमें।
1: अजीज नाजा जी का नहीं है गीत?
0: नहीं
1: तो फिर ये यही सुना दो, लेडीज टेलर पिक्चर का, दो चाहने वालों की मुलाकात है वल्ला,
0: लेडीज टेलर।
1: रफी साहब और लता जी,
0: अच्छा,
1: मजरू साहब और लक्ष्मीकांत
0: हाँ
1: प्यारेलाल।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये है हमारे पास लेडीज टेलर का गीत, दो चाहने वालों की।
1: हाँ मुलाकात है वल्ला,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: लोकेन वर्मा भी इसे की फरमाइश, इसी की फरमाइश कर रहे हैं
0: चलिए ठीक है। तो ये गीत आप
1: उसके।
0: बिल्कुल सुनिएगा कल के प्रोग्राम में, और कॉल करने
1: धन्यवाद,
0: के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हेलो। हाँ
1: हेलो
0: जी नमस्ते।
1: दीदी, नमस्ते।
0: क्या शुभ नाम है आपका?
1: रणपाल सिंह गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील ख्वाज, जिला जौनपुर से बोल रहा हूँ। दीदी,
0: आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए।
1: रणपाल सिंह गुर्जर, ग्राम बाबूपुरा, तहसील ख्वाज, जिला जालौन से बोल रहा हूँ।
0: जालौन से गुर्जर है ना?
1: हाँ
0: जालौन से गुर्जर जी बोल रहे हैं?
1: जी, सुरनपाल से गुर्जर, ग्राम
0: सुरेंद्र
1: बाबूपुरा।
0: पाल
1: जी
0: जी गुर्जर। ठीक है ठीक
1: अच्छा
0: है। तो सुरेंद्र पाल जी, क्या हाल है आपके?
1: है, बढ़िया
0: गर्मी
1: चल
0: कैसी
1: रहा है
0: निकल
1: आपका।
0: रही है?
1: हाँ
0: जालौन में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: अभी तो बारिश हो जाती है तो गर्मी कम है फिलहाल में, हल्की
0: चलो।
1: फुल्की बूंद बांद हो जाती है
0: हाँ हाँ
1: तो गर्मी से राहत है इस समय।
0: चलिए, और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: उपकार का सुना दीजिए, मेरे देश की
0: अच्छा।
1: धरती सोना उगले। जी
0: ठीक है। उपकार का मेरे देश की धरती, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है। और कुछ कहना चाहेंगे? आपने कॉल कितने दिनों में किया है? और
1: हो गए 2 माह 3 के लगभग,
0: अच्छा चलिए ठीक है, क्योंकि
1: एक
0: हमारे
1: बार
0: यहाँ एक ये नियम है कि 1 हफ्ते के पहले किसी भी कॉलर का कॉल रिपीट नहीं लेते हैं।
1: नहीं,
0: ठीक
1: दो
0: है,
1: तीन माह हो गए करीब करीब।
0: चलिए, धन्यवाद कॉल करने के लिए सुरेंद्र जी। और आप अपना पसंद का गीत कल सुन सकते हैं, अपनी पसंद का गीत। ठीक
1: एक
0: है
1: बात, जिज्ञासा है हमारी दीदी,
0: है?
1: एक जिज्ञासा है जो आप 11 बजे से फोन करते, वो अब वो उन लोगों रिकॉर्डिंग क्या
0: हाँ,
1: बजे से होती
0: वो
1: है?
0: अब रिकॉर्डिंग होती है 10:30 बजे से, एक दिन पहले। आज जो अपन
1: अच्छा
0: बात कर रहे हैं ना, ये कल
1: हाँ जी,
0: 11 बजे प्रोग्राम में आप सुन पाएंगे।
1: अच्छा
0: ठीक,
1: यही जिज्ञासा थी। चले
0: हाँ जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच,
1: धन्यवाद,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी, नमस्ते।

0: हेलो हेलो हेलो।
1: हेलो मैम, नमस्ते। क्या
0: हाँ विपिन जी नमस्ते।
1: बात है, मैं कॉल मतलब घंटी गई नहीं और आपने उठा लिया, इसलिए ध्यान
0: नहीं,
1: ही नहीं
0: घंटी तो
1: गया
0: यहाँ पर आई है, आपको
1: जी।
0: ऐसा
1: बिल्कुल,
0: वहाँ पर फील हुआ होगा, यहाँ पर तो घंटी बाकायदा आई।
1: लेकिन आप तुरंत पहचान गई मुझे।
0: अब हमारे पुराने श्रोता जितने हैं और इतनी बार बात कर चुके हैं तो आवाज़ से पहचान ही जाते हैं।
1: हाँ, पर
0: और
1: हमारे लिए तो है ना, आप एक लॉटरी की तरह रहती हैं, पता नहीं कौन निकलेगा।
0: आपने पहचान लिया कि हम कौन हैं?
1: जब आपने पहचान लिया तो हम भी पहचान ही लेते हैं।
0: कौन है हम?
1: आप हैं कविता रावत और मैं हूँ विपिन कटारे।
0: बिल्कुल। और विपिन जी कैसे हैं?
1: ना जी, मैं अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। और आज 15-16 दिन हो गए थे तो हमने कहा चलो कॉल करते हैं, आज फोन करेंगी, सोने की रिकॉर्डिंग हो रही
0: बहुत
1: होगी
0: अच्छी बात है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? बस जगह भूल
1: जी।
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल, मैं ग्राम गौर झामर, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बात
0: सागर
1: कर रहा हूँ।
0: से? बिल्कुल ठीक है विपिन जी। और गर्मी कैसी पड़ रही है सागर में? तो गर्मी
1: गर्मी
0: तेज।
1: तो बहुत बहुत हो रही है गर्मी, लेकिन हालांकि 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी ना, तो उससे
0: हाँ।
1: थोड़ी सी कमी तो आई है, लेकिन हाँ फिर भी गर्मी हो रही है अभी भी।
0: ये तो है।
1: हाँ,
0: अच्छा
1: आपके यहाँ भी गर्मी हो रही होगी।
0: हमारे यहाँ भी गर्मी है, लेकिन वही सेम सीन, 2 दिन पहले बारिश
1: हाँ
0: हो गई तो थोड़ी सी राहत हुई है।
1: हाँ पहले जो 10 दिन पहले गर्मी थी ना, उससे तो थोड़ी सी
0: हाँ
1: कम है अभी।
0: वही वही। और सब कुछ परिवार में सब शुभ मंगल?
1: हाँ जी बिल्कुल, सब बढ़िया, अच्छा।

0: अखबार है रघुवीर पंडा, गोलू अखबार, और सभी के लिए और आपके लिए भी।
1: थैंक यू वेरी मच विपिन जी। चलिए
0: जी
1: अब एक
0: थैंक
1: हफ्ते
0: यू,
1: बाद आपसे दोबारा बात होगी।
0: जी शुक्रिया,
1: जी
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें कि सुने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 11:58 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने

आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विकास, साझेदारी, वैश्विक कार्यबल, आपातकालीन सहायता में भारत की भूमिका और नई पहल पर जोर देते हुए वैश्विक राजनीति में भारत की भूमिका रेखांकित की है। डॉ एस जयशंकर ने सूरीनाम के पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी विषय पर सत्र को संबोधित किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राजधानी भोपाल में वॉकेथॉन का आयोजन किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के रहमानखेड़ा में शुरू हुए 2 दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म काम चोर का एक गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। इंदिवर ने इस गाने को लिखा है और राजेश रोशन ने संगीत से सजाया है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है आदर्श नगर मलोट से। लिखने वाले हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश सावले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म नीला आकाश से, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। इस गाने को पसंद किया है, लिखने वाले हैं गौतम नगर जिला नादेड़ से प्रभाकर चौधले और आरती चौंदले, और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सारणी जिला बैतूल से, लिखने वाले हैं अमित खातन खातरकर, निहारिका खातरकर, शिवपाली यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणि बाग और पंजाब राव निबालकर और संदीप पाटिल। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखने वाले हैं कोरबाई जिला विदिशा से जावेद अली, साबिर अली और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म जिद्दी से, आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से लिखने वाले हैं ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। साथ ही ये पत्र है दोबीहा नेवादा गाजीपुर से लिखने वाले हैं प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी है। सुनते ये गीत।

अगले गाने को लिया है हमने फिल्म लैला मजनू से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका, रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं रामचंद माखीजा काफिर, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा और संपर्क माखीजा और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में खत आया है घंटाघर चौक खंडवा से, लिखने वाले हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया का परिवार। तो सुनते हैं ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म प्रिंस का एक गीत, आवाज मोहम्मद रफी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है।

अभी आपने जो दो गाने सुने उन दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। नेपाल पहले सागर से लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, ये लिखा है इन्होंने ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, ताज मोहम्मद, और इन्होंने ये लिखा है आज़ाद नगर लश्कर हरिद्वार से। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्तीसगढ़ भाटा पारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, महादेव अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए जो आप अगला वाला सुनने वाले हैं उसकी फरमाइश है सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपद साहू, सरोजनी कुंती साहू, छत्तीसगढ़ लच्छनपुर से इन्होंने ये पत्र भेजा है। और अगला गाना है माँ और ममता फिल्म का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत, सुनते हैं ये गीत। ये अंतिम प्रस्तुति आपकी फरमाइश की।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 5 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन और सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासा का समाधान चाहते हैं वो 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर से 2660902 और 2660903 पर फ़ोन लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय फ़ोन नंबर एक बार दोबारा सुन लीजिए, 10 मई 2026 शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच फ़ोन नंबर है 2660902 और 2660903। भोपाल का एसटीडी कोड है 0755। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 होने को हैं। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जादूगर को सलाम की नवी कड़ी।
3: कुणाल फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक जादूगर को सलाम।

0: श्रोताओं, कलम के जादूगर स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की सभी रचनाएं भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। इन रचनाओं में से लगभग सभी को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। उन्हीं की लिखी अनेक कहानियों में से कुछ कथाओं से प्रेरणा लेकर उन्हें रूपांतरित रेडियो नाटकों के एक धारावाहिक के रूप में प्रस्तुत किए जाने का प्रयास है जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक का उद्देश्य है साहित्य के उस अमर शिल्पी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। श्रोताओ, धारावाहिक की नौवीं कड़ी के रूप में आज प्रस्तुत है स्वर्गीय मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बोध का नाट्य रूपांतरण।
1: हाँ तो बच्चों, दो दुनी
2: चार,
1: पांच सत्ते
2: पैंतीस,
1: ग्यारह निम्मे
2: निन्यानवे।
3: कहां से जंगल में आ फंसा? यदि किसी अन्य विभाग में नौकर होता तो आज हाथ में चार पैसे होते, आराम से जीवन कटता। हमसे तो मजदूर ही भले। और मेरे बगल में जो पड़ोसी हैं, उनको देखो, और एक मैम और एक वो दोनों हैं। जी हाँ, मैं इन्हीं दोनों की बात कर रहा हूं। एक हैं ठाकुर अतिबल सिंह, थाने में हेड कांस्टेबल साहब, और दूसरे हमारे पड़ोसी मुंशी बैजनाथ, तहसील में पटवारी। दोनों ने क्या भाग्य पाया है। हालांकि दोनों का वेतन मुझसे ज्यादा नहीं है, परंतु दोनों का जीवन मुझसे बेहतर है। शाम हुई नहीं कि हमारे कांस्टेबल साहब खमीरा पीकर मस्त हो जाते हैं, आराम कुर्सी पर पसर जाते हैं। और दूसरे मुंशी जी, उनका तो कहने क्या, अरे कचहरी से आते ही बच्चों को पैसे और मिठाइयां बांटते हैं, घर में पकवान बनते हैं, घर में सब सुख सुविधाओं का सामान है, एक बोतल रोज की साफ कर जाते हैं। और तो और, नशा चढ़ने पर बेतान की तान कर पूरे मोहल्ले की नींद उड़ाते हैं, सो अलग।
4: मैं

देखो तो सही, ये दोनों तो इतना भी नहीं जानते कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है, सूर्य पृथ्वी का नहीं। साधारण से पहाड़ों तक का ज्ञान नहीं है।

0: मर्जी है।
1: मगर ईश्वर ने इन पर पूरी कृपा दृष्टि की हुई है। बाजार निकल जाएं तो बनिए उठ उठ कर सलाम करते हैं इन्हें। चार पैसे की चीज टके में लेकर आते हैं टके में। और एक मैं पंडित चंद्रधर प्राइमरी स्कूल में मास्टर। यहां तो महीना भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपए देखने को मिलते हैं। ना खाने का सुख ना पहनने का आराम। भाग्य ने कौन सा बड़ा तीर मार दिया जो कभी शेर आ शेर दूध भेज दिया, थोड़ी सी सब्जियां भेज दी। अरे कौन सा मुझ पर एहसान करते हैं, मैं इनके बच्चों को नहीं पढ़ाता क्या? बातें तो सुनो इनकी।
2: पंडित जी, ये तीनों लड़के आवारा हुए जाते हैं, जरा इनका ख्याल रखिएगा। अब आप तो जानते हैं मुझे थाने से फुर्सत नहीं मिलती, और अगर थोड़ी बहुत मिल भी जाती है तो फिर ये काला अक्षर मेरे लिए भैंस बराबर।
1: अजीब बात तो ऐसी करते हैं जैसे इनका गुलाम हूं मैं। लेकिन करूं क्या? अजी नाराज भी तो नहीं कर सकता इन दोनों को। अरे ये हैं तो कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते हैं, अचार चटनी चखने को मिल जाती है, बाजार से सामान भी सस्ता ही मिल जाता है। भाग्य के इस कड़वे घूंट को मुझे पीना ही पड़ेगा। अरे क्या कोशिश नहीं की मैंने इस स्थिति से उभरने के लिए। बड़े बड़े अफसरों से खुशामद दरामद की, प्रार्थनाएं भी की, लेकिन हार थककर मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही रही, वही स्कूल टीचरी। लेकिन मैं अपने गांव में कोई कमी नहीं आने देता भाई। ठीक समय पर स्कूल जाता हूं और देर से घर वापस आता हूं, और बच्चों को मन लगाकर पढ़ाता हूं। तभी तो सभी अफसर खुश हैं मुझसे। साल में कभी कभार इनाम भी मिल ही जाता है। वो बात अलग है कि अध्यापन विभाग की वेतन वृद्धि ऊसर की खेती है, बड़े भाग्य से हाथ लगती है। बस्ती के लोग भी मुझसे संतुष्ट हैं। ये मेरे परिश्रम के कारण ही तो हुआ है कि छात्रों की संख्या बढ़ गई है। छात्र भी मुझ पर जान देते हैं जान। हाँ, अरे कोई बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता है। अब बस मेरे लिए तो यही बात।

0: आओ आओ ठाकुर साहब आओ, मैं आप ही को याद कर रहा था।
1: याद कैसे नहीं करोगे, चोली दामन का साथ जो ठहरा।
0: अरे भाई आप तो बारिश में भीग गए, बैठिए।
1: हाँ भाई। मुंशी जी, मेरे मन में अयोध्या जी के दर्शन का विचार आया है और वही सलाह करने आपके पास आया हूँ।
0: नेकी और पूछ पूछ, मैं खुद आपसे इसी बात का जिक्र करने वाला था। सुना है बड़ा भारी मेला लगा हुआ है।
1: जी हाँ, लेकिन दूर की यात्रा है, सब परिवार जाने में समस्या नहीं आएगी। अब पांच घर वाले तो हम ही हो जाएंगे।
0: वही तो मैं कहना चाहता हूँ, आपकी भाभी और दोनों बच्चों ने मेले में जाने की जिद पकड़ रखी है, हफ्ते भर की छुट्टी हो जाएगी।
1: आप हाँ करो तो उसकी व्यवस्था भी हो जाएगी। वो आपने पंडित जी है ना, उनको भी साथ ले लेते हैं, उनके आने जाने का खर्चा हम मिलकर बांट लेंगे।
0: बात तो बड़े पते की है, मेले ठेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम निकलते हैं। इसी बहाने पंडित जी को भी अयोध्या जी के दर्शन हो जाएंगे।
1: एक हफ्ता बिल्लौर में न रहने से उनके कौन से काम रुक जाएंगे। लीजिए, आखिरकार अयोध्या जी की यात्रा की वो शुभ घड़ी आ ही पहुंची।
0: पंडित जी, गाड़ी तो ठीक समय पर ही है ना?
2: जी मैंने पता कर लिया है, डेढ़ घंटे देर से है, इसीलिए तो भीड़ भाड़ बढ़ती जाती है। अजी बेहतर होगा कि खाना पीना अभी कर लिया जाए।
3: ये ठीक रहेगा।
4: कृपया ध्यान दीजिए, अयोध्या जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अब से बस कुछ ही समय में आने वाली है।
1: चलो भाई, सब लोग अपना सामान ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा तो नहीं। पंडित जी जरा हाथ तो बटाइए।
2: अरे बच्चों, बच्चों तुम लोग आगे आ जाओ।
0: अजी सुन तो हो, देखो देखो चुन्नी का हाथ चुना जाता है। अरे हटिए भाई साहब, जरा जगह दीजिए, बच्चे हैं। अरे दिखता नहीं क्या, बच्चे हैं। हटिए।
1: अरे ओ, मेरा बिस्तर बन लिए कहाँ जा रहा है, रास्ता देख, आगे बढ़ने दो, हटो पीछे, हट हट। देखता नहीं महिला है।
2: अरे अरे रास्ता, अरे रास्ता तो दो। अरे मेरी जो चटनी बना दी कमबख्तों ने। अरे अरे मुंशी जी, ओ मुंशी जी, अरे मुंशी जी कौन से डिब्बे में चढ़े जा रहे
1: हैं? अरे जी चढ़ने दीजिए, आइए हम सब इसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। इस आफत में कौन किसकी राह देखता है, आज में तो सब एक ही जगह मिल जाएंगे।
0: अरे भगवान, तुम बच्चों को लेकर आगे चलो, संदूक लगा लो।
5: अरे भैया,
0: अरे हटिए भाई साहब,
5: नहीं नहीं जगह
0: दीजिए।
1: अरे इस कंपार्टमेंट में तो चार ही आदमी है, यहाँ बैठने की जगह अवश्य निकल आएगी। उठो।
6: हैं? क्या उठे जी,
1: देखते नहीं है, हैं? हम खड़े हुए हैं। बैठो जी, आप बैठो, आप बैठो।
6: तुमने बैठने का ठेका लिया है क्या?
1: क्या हमने किराया नहीं दिया है?
6: जिसे किराया दिया हो उससे जाकर जगह मांगो।
1: जरा होश की बातें करो, इस कंपार्टमेंट में 10 यात्रियों को बैठने की आज्ञा है।
6: जरा जबान संभाल कर बात कीजिए।
1: तुम कौन हो जी?
6: हम वही हैं जी जिस पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, भूल गए? और जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर टले थे।
1: आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी, चालान कर देता तो तुम सजा पाते।
6: और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की है कि गाड़ी में खड़े रहने दिया, ढकेल देता तो तुम नीचे गिर जाते और तुम्हारी हड्डी पसली टूट जाती।
7: क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते?
1: अगर थाने में होता तो इनकी जुबान खींच लेता।
7: और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते हुजूर? इसमें कौन सी बेइज्जती हुई जाती है? ये थाना थोड़ा ही है कि आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा।
1: अरे क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है?
7: जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ।
1: मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई, तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी।
7: जी आपने मेरी सूरत नहीं देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले की बात है, आपने मुझे कई डंडे लगाए थे, याद है ना? मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कचूमर निकाल दिया। मैं चुप रह गया, पर घाव दिल पर लगा हुआ है, आज इसकी दवा मिलेगी।
6: अरे जनाब, आप पांव पसार कर पड़े रहिए, जो भी होगा निपट लेंगे।
2: अजीत ठाकुर साहब, जाने दो, वक्त का यही तकाजा है। वो देखो, तीसरा स्टेशन आ रहा है, वहां उतर कर डिब्बा बदल लेंगे। आइए ठाकुर साहब, डिब्बा बदल लेते हैं। संभाल के। ये क्या, ठाकुर साहब तो मुंह के बल गिर गए। ठाकुर साहब, चोट वोट तो

0: नहीं लगी ना।
1: अगर ये दोनों थाने में होते तो आज बताता ठाकुर अतिबल सिंह चीज क्या है। वो तो गार्ड ने सीटी दे दी और इस डिब्बे से इस डिब्बे में सामान उठाकर रखना पड़ा, नहीं तो गार्ड से कहकर इन्हें हवालात का दरवाजा दिखा देता। अभी ये मुझे क्या धक्का देंगे और क्या मेरा सामान फेंकवाएंगे।
0: अरे इतनी भीड़ में ना जाने मुंशी जी किस हाल में होंगे, दिखाई नहीं दे रहे, देखता हूँ।
2: अजी देखते हो, बैठने की जगह भी तो बने, तिल रखने की जगह तो है नहीं, आप भी पता नहीं किस डिब्बे में आ चढ़े।
3: अरे भगवान, मैं तो पहले ही मना करता था कि इतनी भीड़ में अयोध्या जी की यात्रा कोई हंसी खेल नहीं है। ए भाई साहब, जरा महिला और बच्चों का लिहाज तो करो, थोड़ा सा जरा टिक जाने दो भाई।
4: मुझे तो इस कोयले पानी का ही सहारा है,
5: इसकी पिनक में ही सफर कट जाए।
3: चुन्नू की मम्मी, अपनी जगह पकड़े रहना, मैं अभी आया।
2: अच्छा।
4: देखो क्या हाल है, अरे पेशाब घर में भी घुसे पड़े हैं, आदमी को बुलावा आए तो कहाँ जाएगा। ए भाई, ए लघु शंका का दबाव है, बाहर आओ, चलो निकलो, जल्दी करो भाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अब ठीक है, यहाँ पी लेता हूँ, आधी बोतल यहीं उंडेल लेता हूँ। अब कम से कम 4-6 घंटे का पता ही नहीं चलेगा, सफर चैन से कट जाएगा। अब बच्चों के पास चला जाए।
2: सुनो जी, आप बहुत देर से खड़े हैं, तनिक टिक जाइए, मैं खड़ी हो जाती हूँ।
4: तुम बैठी रहो, ठीक है। पता नहीं ये पेट में कैसी गुड़गुड़ मची है, अचानक बहुत दबाव बन गया है, मैं अभी आता हूँ।
2: अजी क्या हुआ, आप ऐसे पेट क्यों पकड़े हैं?
4: भगवान, पेट में भयंकर मरोड़ हो रही है, उल्टी भी हो गई, बहुत कष्ट हो रहा है।
2: हाय हाय, आप बैठ जाइए।
4: बैठ नहीं पाऊंगा, फिर दबाव है, होकर आता हूँ, क्या करें, संडास में ही लोग ठुसे बैठे हैं।
2: आइए ऐसा करते हैं, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, यहीं पर उतर जाते हैं। चलो बच्चों आओ, आप भी आइए, संभल कर जरा। हाँ बच्चों संभल कर।
0: अरे ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मुंशी जी, भाभी और बच्चे, ये लोग तो यहीं उतर गए, सब सामान भी है, पता नहीं क्या माजरा है।
1: अरे ये तो लेट गए, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, उतारना तो पड़ेगा ही। चलो भाई जल्दी करो।
0: हाँ उतरते हैं, चलो भाई।
2: हाय हाय, ये क्या हो गया, मैं तो हपड़ा तबड़ी में संदूक उतारना ही भूल गई। हाय राम, मेरे तो सारे कपड़े लत्ते पैसे जेवरात सब उसी में ही चले गए, अब क्या होगा जी। अब क्या होगा। हे भगवान।
0: अरे अरे अरे
1: अरे, अरे भाभी क्या हो गया है, क्यों रो रही हो।
2: देखिए ना भाई साहब, मेरा तो संदूक गाड़ी में ही चला गया, कपड़े और पैसे भी उसी में ही थे।
0: अरे भाभी वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि मुंशी जी को क्या हुआ।
3: क्या बताऊं, इतनी भीड़, इतनी गर्मी, न बैठने को जगह, न खाने की सुविधा, एक आध बार स्टेशन का पानी पी लिया है, उसी से पेट गड़बड़ हो गया, मारे उल्टी दस के हालत खराब है।
6: ये प्लेटफॉर्म पर क्यों लेटे हैं, आप लोगों को कहाँ जाना है, लगता है इन्हें हैजा हो गया है, और हैजे के मरीज को प्लेटफॉर्म पर ठहरने की अनुमति नहीं है, बेहतर होगा आप इन्हें यहाँ नज़दीक जिला अस्पताल है वहाँ ले जाइए।
1: भाई पंडित जी चलिए सहारा दीजिए, इन्हें वहाँ सामने पेड़ के पास लेटाए देते हैं, तब तक मैं डॉक्टर साहब को लेकर आता हूँ।
0: हाँ ठीक है, आओ भाई जरा हाथ लगा दो भाई। हाँ
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
7: जी हाँ, कहिए, यहाँ का मैं कंपाउंडर डॉक्टर और बस सब मैं ही हूँ, सभी मुझे चौकीलाल कहते हैं।
1: आप चलकर उन्हें देख लीजिए।
7: सवेरे के समय तो मुझे बाहर जाने की आज्ञा नहीं है।

0: ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो ठहरो, अरे हैजे के रोगी को ऊपर लाने की आज्ञा नहीं है। हाँ।
1: अरे ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे ये तो बिल्लोर के ही हैं, भला सा नाम है, तहसील में आया जाया करते हैं। क्यों महाशय मुझे पहचानते हैं?
0: जी हाँ, खूब पहचानता हूँ पहचानता हूँ।
1: अरे भाई पहचान कर भी इतना रूखापन, मेरी जान निकल रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया है।
0: ये सब काम मैं कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है।
2: अस्पताल में कैसी फीस जनाबे मन?
0: वैसे ही जैसी इन मुंशी जी ने मुझसे वसूल की थी जनाबे मन।
2: आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
0: मेरा घर बिल्लौर में है, वहाँ एक थोड़ी सी जमीन है मेरी, साल में दो बार देखभाल करने के लिए जाता हूँ। और मुंशी जी अपना हक वसूल कर लेते हैं, ना दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है। जरा सोचिए हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। अब मेरी फीस 10 रुपये निकालिए ताकि दवा दूं।
2: 10 रुपये?
0: जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहे तो 10 रुपये रोज।
3: दरोगा जी विवश हो गए, मुंशी जी की स्त्री से रुपए मांगे, मगर रुपए तो बक्से में थे और बक्सा ट्रेन में ही छूट गया था। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे, किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखे लाल को दे दिए और उन्होंने दवा दे दी। दिन भर कुछ फायदा ना हुआ, रात को कहीं जाकर हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की आवश्यकता हुई। मुंशियाइन का एक गहना जो 20 रुपए से कम न था बाजार में बेचा गया, तब कहीं जाकर काम चला। शाम तक मुंशी जी भी चंगे हो गए। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर स्थान की खोज हुई। पंडों के घर पर तो जगह ही नहीं थी, हर घर में आदमी भरे हुए थे। अंत में एक पेड़ के नीचे डेरा जमाना निश्चित हुआ, लेकिन सब जगह यात्री थे। खुले आसमान के नीचे बिस्तर बिछाए गए। इतने में बादल घिराए, बारिश होने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट से कान के पर्दे फटे जाते थे, बच्चे रोने लगे, स्त्रियों के कलेजे कांप रहे थे। वहां ठहरना मुश्किल था, पर जाएं कहां। अकस्मात एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा। वो जब निकट पहुंचा तब पंडित जी ने उसे देखा, आकृति कुछ जानी पहचानी सी मालूम हुई, तो वो पास जाकर बोले,
4: क्यों भाई साहब, यहां यात्रियों के ठहरने के लिए जगह नहीं मिलेगी।
5: अरे आप तो पंडित चक्रधर तो नहीं?
4: जी हाँ, आप मुझे कैसे पहचानते हैं?
5: चरण स्पर्श पंडित जी, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरी चरण वंदना स्वीकार कीजिए। मेरा नाम कृपा शंकर है, मेरे पिताजी कुछ

0: तो तुम ही हो कृपा शंकर। अरे भाई तब तो तुम दुबले पतले से लड़के थे, हैं? कोई 8-9 साल हुए होंगे इस बात को।
1: जी हाँ, 9 साल था।
0: हाँ।
1: मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया।
0: अच्छा,
1: अब यहाँ म्युनिसिपैलिटी में नौकर हूँ।
0: हाँ।
1: कहिए, आप तो अच्छे हैं ना? सौभाग्य था कि आपके दर्शन हो गए।
0: भाई मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा आनंद हुआ। वैसे तुम्हारे पिता कहाँ हैं?
1: उनका तो देहांत हो गया, माता जी साथ हैं। आप यहाँ कब आए?
0: आज ही आया हूँ बेटा, पंडों के घर जगह नहीं मिली, विवश होकर यहीं रात काटने की सोच रहा हूँ।
1: क्या बाल बच्चे भी साथ में हैं?
0: नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ, पर मेरे साथ दरोगा जी और पटवारी साहब हैं, उनके बाल बच्चे भी साथ में हैं।
1: कुल कितने लोग?

0: घर में पूरियां पकने लगीं। कृपा शंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता था। उसके विनय और नम्रता ने सबको खुश कर दिया था और सब लोग तो खा पीकर सो गए, किंतु पंडित जी को नींद नहीं आई। उनकी विचार शक्ति इस यात्रा की घटनाओं का उल्लेख कर रही थी, रेलगाड़ी की रगड़ झगड़ और चिकित्सालय की नोच खरोंच के सम्मुख कृपा शंकर की सहायता और शालीनता प्रकाशमय दिखाई देती थी। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, किसी बात का कष्ट ना हुआ। कृपा शंकर ने उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम का दर्शन किया। 3रे दिन जब लोग चलने लगे तब वो स्टेशन तक उन्हें पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो सजल नेत्रों से उसने पंडित जी के चरण स्पर्श किए।
1: कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा।
2: मुझे अब जीवन पर्यंत इसी विभाग की सेवा में रहना है, मेरे लिए तो इससे अलग अब कुछ भी नहीं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कलम के जादूगर की 9वीं कड़ी बोध। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता थे कुणाल फिल्म्स, निर्मात्री कौशल्या रॉय, रूपांतरकार दुष्यंत हिमराज, संकलन डॉक्टर पीसी राय, सहायक निर्माता विकेश कुमार और ध्वनि मुद्रण रामकिशन। भाग लेने वाले कलाकार थे सतीश कक्कड़, गौहर परवेज, शिमाइला, अशोक शर्मा, हीरेंद्र झा, कुणाल राय और मोइन शमसी। तो अब इसी के साथ दीजिए हमें आज्ञा, आज ही के दिन और इसी समय हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: संग्रहालय से मैं अभी आपने सुना जादूगर को सलाम। इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी का प्रसारण आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलो ग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 और 2660903 पर फ़ोन करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भोपाल का एसटीडी कोड 0755 है। सूचना समाप्त हुई। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय 12:58 होने जा रहे हैं। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारत की अविनाशी शक्ति और सनातन आस्था का प्रतीक है। श्री शाह ने आज सोशल मीडिया में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उससे जुड़ी अपनी दिव्य अनुभूति पर एक भावपूर्ण लेख लिखा है जिसे सभी देशवासियों को पढ़ना चाहिए। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबू धाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीति साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश के

0: मानखेड़ा में शुरू हुए दो दिवसीय फ्रूट होराइजन 2026 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों को रोग मुक्त पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। निजी क्षेत्र को भी इसमें सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज राजधानी भोपाल के भारत भवन में हिंदी पत्रकारिता के द्विशताब्दी प्रसंग पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय विमर्श का शुभारंभ किया। प्रदेश में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तारीख 15 मई है। कल तक 60,000 से ज्यादा पंजीयन किए जा चुके हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1 बजे हैं। अब प्रस्तुत है महिला सभा। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का योगदान है।

बहनों, रिश्ते कभी भी हमारी उम्र, सुंदरता या व्यक्तित्व पर निर्भर नहीं करते हैं। रिश्ते तो हमेशा सच्चाई एवं हमारे द्वारा दिए गए साथ, समय, सम्मान और अपनत्व पर निर्भर करते हैं। बहनों, इसी सुविचार के साथ आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है महिला सभा के इस अंक में। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो मित्र प्रतिभा चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए मेरा सस्नेह नमस्कार। बहनों, आज के दिन को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाने की खास वजह ये है कि आज यानी 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक हेनरी डुनेट की जयंती है। इनका जन्म 8 मई 1828 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ था। सन 1901 में शांति के क्षेत्र में कार्य के लिए उन्हें पहला नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। बहनों, ये दिन युद्ध, आपदाओं और स्वास्थ्य संकटों के दौरान निस्वार्थ सेवा देने वाले वॉलंटियर्स को सम्मानित करने और मानवीय सहायता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में घायलों और पीड़ितों की मदद करने वाले सेवकों के प्रयासों की सराहना करना है। लोगों को जागरूक करने की दिशा में स्वास्थ्य संकटों और मानवता के प्रति रेड क्रॉस के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। बहनों, विश्व रेड क्रॉस दिवस 2026 मानवता, करुणा और सेवा के महत्व की एक सशक्त याद दिलाता है। मानवता को जीवित रखना की थीम के साथ ये दिन उन लाखों स्वयं सेवकों को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से जीवन बचाने और विश्व भर में संकटों को कम करने के लिए काम करते हैं। बहनों, ये एक गैर सरकारी मानवतावादी संगठन है जो युद्ध, आपदा, महामारी, भुखमरी और अन्य लोकतंत्र में धार्मिकों को सहायता प्रदान करता है। ये संस्था किसी भी जाति, धर्म, रंग या राष्ट्रीयता से जुड़े सभी उद्यमियों की मदद करती है। रेड क्रॉस के 7 मूल सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता, सार्वभौमिकता। बहनों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस डे की शुरुआत 1948 में हुई थी। आज हेनरी ड्यूनेट की प्रेरणा से 192 देशों में नेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट कमिटीज टूल्स है, जिसमें ये आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। तो बहनों, अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे विश्व रेड क्रॉस दिवस पर, और अब रुक करते हैं गीत संगीत की ओर। तो चलिए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में गाइड फिल्म से ये गीत। शैलेंद्र की रचना को संगीत से सजाया है SD बर्मन ने।

0: बहनों कहा जाता है जान है तो जहान है। बहनों सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना जरूरी है। आप चाहे पैदल हों या साइकिल पर, दो पहिया या चार पहिया की सवारी कर रहे हों, हर हाल में सावधानी बरतना जरूरी है। ट्रैफिक लाइट्स के दिशा निर्देशों का पालन करें, साथ ही सड़क किनारे लगे साइन बोर्ड पर अंकित निर्देशों के पालन में कोताही ना बरतें और वाहन की गति हमेशा धीमी रखें, साथ ही हेलमेट का उपयोग करें। बहनों सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए WHO द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह ये एक द्विवार्षिक अभियान है जो 8 मई से 12 मई तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु और चोटों को कम करना है। बहनों इसका मुख्य फोकस पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। इसका महत्व सड़क सुरक्षा को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में उजागर करता है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं वैश्विक स्तर पर मौत और विकलांगता का एक प्रमुख कारण बनती हैं। इसका उद्देश्य पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने वाली सुरक्षित सड़कों की मांग करना है। बहनों ये अभियान दुनिया भर के नीति निर्माताओं, गैर सरकारी संगठनों और समुदायों को एकजुट होकर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम, हेलमेट वितरण और ब्लैक स्पॉट को ठीक करने जैसे सुरक्षा उपाय अपनाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करना, तेज गति, शराब पीकर गाड़ी चलाने और बिना हेलमेट सीट बेल्ट के ड्राइविंग को रोकना है। बहनों सड़क पर चलते समय सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर एक की जिंदगी बहुत कीमती है। और ये तो हमने आपको जानकारी दी संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। और बहनों मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, मौका दीजिए अपने खून को किसी की रगों में बहने का, ये लाजवाब तरीका है कई जिस्मों में जिंदा रहने का। बहनों हम समय समय पर विभिन्न विषयों पर वार्ताएं लेकर आते हैं और आज की वार्ता का विषय है रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी, और वार्ताकार हैं कीर्ति सक्सेना।
1: ब्लड हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। ब्लड प्रत्येक मनुष्य एवं जीव जंतुओं में पाया जाता है। ब्लड की एक निश्चित मात्रा का हमारे शरीर में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि शरीर में ब्लड की कमी होती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। इसके साथ ही हम जानेंगे ब्लड किससे मिलकर बना होता है। ब्लड एक तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात परिसंचरण तंत्र में भ्रमण करता रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। प्लाज्मा में अनेक प्रकार के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोटीन पाई जाती है। ब्लड का लगभग 7% भाग प्रोटीन का ही बना होता है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथोम्बिन मुख्य प्रोटीन है। प्लाज्मा में हॉर्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। कभी कभी ब्लड में कुछ बाहरी पदार्थ जैसे प्रोटीन, बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं। इन पदार्थों के पहुंचते ही प्लाज्मा विशेष प्रकार के पदार्थों का फॉर्मेशन होने लगता है, जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं, तथा जो पदार्थ एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करते हैं एंटीजन कहलाते हैं। एंटीजन सामान्यतः प्रोटीन एवं पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, जबकि एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं। कुछ एंटीजन RBC में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन वी। इसी प्रकार कुछ एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। ब्लड कोशिकाएं, रुधिर का लगभग 40% भाग रुधिर कणिकाओं या ब्लड कोशिकाओं का बना होता है। सभी जीवों की रुधिर कणिकाओं में थोड़ी बहुत विभिन्नता पाई जाती है, इसके बावजूद इनके मूलभूत लक्षण एक समान ही होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो कि गोल या अंडाकार कोशिकाएं हैं जो हल्के पीले रंग की होती हैं, लेकिन लाखों की संख्या में एकत्र होने पर ये लाल रंग की हो जाती हैं। मनुष्य की एक RBC का व्यास 7.5 μ तथा मोटाई 1.2 μ होती है। एक RBC लगभग 100 दिन तक ही जीवित रहती है, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। RBC शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करती है। इसके साइटोप्लाज्म में लाल रंग का आयरन कंपाउंड पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। 100 मिलीलीटर ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड लाल रंग का होता है। सफेद रुधिर कणिकाएं जो कि अमीबा के समान अनियमित आकार की RBC से बड़ी लेकिन संख्या के हिसाब से कम मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण यह रंगहीन होती हैं। मनुष्य के प्रति घन मिलीमीटर ब्लड में 5000 से 9000 तक की संख्या में सफेद रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। सफेद रक्त कणिकाएं

0: की कमी के कारण आरबीसी की मात्रा ब्लड में कम हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। अब हम जानेंगे रक्त की आवश्यकता कब पड़ती है। कभी कभी दुर्घटना होने पर या किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड की कमी हो को पूरा करने के लिए चिकित्सक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देकर उसकी रक्षा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को भी रक्त की अत्यंत आवश्यकता होती है जब वह व्यक्ति हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है, क्योंकि इस व्यक्ति को चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में 1 से 4 घंटे का समय लगता है, जबकि स्वस्थ व्यक्ति की चोट में थक्का जमने में 2 से 8 मिनट का ही समय लगता है। इसीलिए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति की अधिक रक्त स्त्राव के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस रोग के लिए अब तक कोई भी दवा नहीं है, इसका केवल इलाज ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही है। स्वस्थ व्यक्ति के रक्त को रोगी व्यक्ति को देना रक्तदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। अब हम बात करेंगे स्वस्थ रक्तदान क्यों और कैसे, अर्थात रक्तदान के समय हमें किन किन सावधानियों को अपनाना चाहिए। प्रायः रक्त देने वाला व्यक्ति डोनर अर्थात दाता एवं प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रापक तथा रेसिपिएंट कहलाता है। रक्तदान की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय 2 विपरीत रक्त समूहों वाले व्यक्तियों के रक्त को मिलाया जाता है, तब इन ब्लड्स की आरबीसी में आपस में चिपककर गुच्छा बना लेती है। गुच्छे कभी कभी पतली रुधिर वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देते हैं, फलतः रुधिर वाहिकाएं फट जाती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार आरबीसी के चिपकने की प्रक्रिया को एग्लूटिनेशन कहते हैं। डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर ने वियना में स्थित अपनी प्रयोगशाला में आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन तथा प्लाज्मा में 2 प्रकार की एंटीबॉडी का पता लगाया। इन्हीं एंटीजन एंड एंटीबॉडी के आधार पर उन्होंने सन 1900 में ह्यूमन ब्लड को 3 वर्गों में डिवाइड किया। इसके 2 साल बाद 1902 में लैंडस्टीनर के ही स्टूडेंट ने एक और ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसे एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर एवी नाम दिया गया। इस प्रकार लैंडस्टीनर एंड उनके छात्रों ने अपने मानव ब्लड ग्रुप्स को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला ब्लड ग्रुप ए, इसमें एंटीजन ए एंड एंटीबॉडी बी पाई जाती है। ब्लड ग्रुप बी, इसमें एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी, इसमें एंटीजन ए एंड बी दोनों पाए जाते हैं लेकिन एंटीबॉडी का अभाव होता है। ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही पाई जाती हैं, इसमें एंटीजन का अभाव होता है। इसीलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डोनर एंड रेसिपिएंट के ब्लड की जाँच की जाए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का ब्लड हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय यह ध्यान रखा जाता है कि डोनर की एंटीबॉडी रेसिपिएंट के विपरीत हो। ऐसी स्थिति में एग्लूटिनेशन नहीं होता, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल ए एंड एबी ग्रुप के व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड केवल बी एंड एबी ग्रुप के व्यक्ति को दिया जा सकता है। एबी ब्लड ग्रुप का ब्लड केवल एबी ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। साथ में ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन ना होने के कारण यह स्वयं ओ तथा अन्य किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। एबी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति केवल एबी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां हैं कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या एचआईवी का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, एचआईवी संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने या एचआईवी संक्रमित मां से गर्भावस्था में बच्चे को हो सकता है। वहीं दूसरी ओर समस्त विश्व में कई प्रकार की खतरनाक बीमारियों का संक्रमण फैला हुआ है, जिसमें से कुछ खतरनाक बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस तथा प्रमुख रूप से वर्तमान में एड्स या एचआईवी का संक्रमण फैला हुआ है, जो कि संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध रखने, एचआईवी संक्रमित रक्त उत्पाद चढ़ाने एवं एचआईवी ग्रस्त संक्रमित माँ से उसके बच्चे को हो सकता है। यह एचआईवी रोग लाइलाज है। अतः ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ब्लड की जाँच की जानी अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह संक्रमित बीमारियां ब्लड डोनेट करते समय संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ना फैल सके। इसके साथ ही साथ संक्रमित सिरिंज को भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। दिए गए उपायों को ध्यान में रखते हुए स्वस्थ तरीके से रक्तदान किया जाना चाहिए, अर्थात ब्लड ग्रुप्स एंड संक्रमित ब्लड की जांच करके ही रोगी व्यक्ति को ब्लड डोनेट किया जाना चाहिए, जिससे हम उनके जीवन की सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं एवं उनके जीवन को बचा सकते हैं।
1: रक्त एवं रक्त वर्ग एक जानकारी। अभी आपने ये वार्ता सुनी वार्ताकार कीर्ति सक्सेना से। जो खून तेरी रगों में बहता है वही मेरी रगों में बहता है, दान करते रहें अपने खून का, ये दान किसी को जीवन दे सकता है। और बहनों आप प्यारे से गीत का आनंद लेते हैं फिल्म आराधना से। युगल स्वर है आशा भोसले और मोहम्मद रफी का, और आनंद बख्शी की रचना को संगीत में पिरोया है SD बर्मन ने।

अभी आपने आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी के स्वर में आराधना फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। और बहनों अब देते हैं आपको उपयोगी जानकारी। बहनों इन दिनों सूर्य देव के तीखे तेवर और ताप का प्रभाव चरम पर है। दिन का तापमान लगभग 45 डिग्री पहुंच गया है। झुलसाने वाली धूप और गर्म हवाएं सभी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। बहनों ऐसी स्थिति में बचाव जरूरी है। गर्मी में तेज धूप और लू से बचने के लिए सुबह 10 से 11 बजे से सूर्यास्त तक बाहर जाने से बचें। गर्मी व धूप से बचने के लिए सूती या वायल के हल्के रंग के पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। बहनों धूप में निकलने से पहले अच्छी कंपनी का सनस्क्रीन लोशन या क्रीम का उपयोग करें और घर से बाहर जाते समय सिर व कानों को सूती दुपट्टा अंगोछा या रूमाल से अच्छी तरह ढकें। मैंने उस चौड़ी किनारे वाली टोपी और यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन वाले चश्मे पहने। हाथों और पैरों को धूप से बचाव के लिए सूती दस्ताने और मोजे पहने। बहनों पर्याप्त मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। नींबू पानी नारियल पानी पीते रहें। बहनों खान पान में ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करते रहें, जैसे तरबूज खरबूज खीरा ककड़ी दही छाछ या मट्ठा सतुआ का सेवन करते रहें। बहनों गर्मी को देखते हुए दिन में 2 बार ठंडे पानी से स्नान करें और मौसमी फल सब्जियों का सेवन करें। तला भुना ज्यादा मिर्च मसाले की बजाय हल्का और सादा भोजन करें। बहनों घर को ठंडा रखने के लिए दिन में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। तेज धूप से बचाव के लिए हल्के रंग के मोटे पर्दे डालें। बहनों बच्चों बुजुर्गों का खास ख्याल रखें, इन्हें धूप में हरगिज ना जाने दें और समय समय पर पानी इलेक्ट्रोल व ग्लूकोज मिलाकर पिलाते रहें। बहनों जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलें। बहनों घर से बाहर जाते समय यदि जाना जरूरी ही है तो पानी की बोतल भुंजे चने और गुड़ हमेशा अपने साथ रखें व समय समय पर इनका सेवन करते रहें। बहनों ये छोटी छोटी सावधानियां हमारे परिवार को स्वस्थ व सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी हैं। और बहनों गर्मी के मौसम में मूक पशु पक्षियों के लिए भी चारे और दाने सहित पानी की व्यवस्था भी जरूर करें। इनके लिए किया गया आपका सेवा सहयोग आपको बहुत सुकून देगा। बहनों आए हैं इस धरती पर तो कुछ अच्छा कार्य करते चलें। प्रकृति की रक्षा के लिए एक पेड़ लगाएं और वृक्षारोपण का ध्यान रखें। किसी जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद कर उसके चेहरे पर आप मुस्कान ला सकते हैं। और हर परिस्थिति में अच्छी सोच रखें और सकारात्मक रहें। बहनों अब चलने का समय हो गया है तो इतना जरूर कहूंगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। और बहनों इसी के साथ अब अनुमति दीजिए प्रतिभा चतुर्वेदी को। नमस्कार।

0: महिला सभा का प्रसारण अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम इस अंतराल के उस पार।
1: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
2: आपका संदेश, आपकी पहचान, हर घर तक पहुंचना हुआ आसान। अपने व्यवसाय को दें नया आयाम। आकाशवाणी भोपाल से गूंजेगा आपके ब्रांड का नाम। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 1:30 हुए हैं। ये समय है लोक संगीत के कार्यक्रम का, और इस लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र का ये योगदान, जिसमें आज कलाकार हैं राजू पटेल और साथी। आइए इनसे सुनते हैं कार्यक्रम के आरंभ में ये गुरु महिमा।

और लोक संगीत कार्यक्रम की अगली रचना आप सुनने जा रहे हैं पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में।

पुरुषोत्तम नायक और साथियों के स्वरों में अभी आपने ये गुरु महिमा सुनी, और इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 1:45 हुए हैं, ये समय है सुगम संगीत के कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में भी आप सुनने जा रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति। इसमें आप सुनेंगे चंद गज़लें, कलाकार हैं इकबाल सिद्दीकी।

0: और इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: पानी की हर बूंद है अनमोल,
4: बहने ना दें इसे बेमोल।
3: आओ मिलकर सच कर दें हम धरती माँ का सपना,
4: बूंद बूंद जल संरक्षण कर पहना दें हरियाली का गहना।
5: आपकी पहचान आपके विचार, अब हर घर तक पहुँचेंगे बार बार। बढ़ेंगे ग्राहक, तरक्की होगी कमाल। विज्ञापन देने का सही पता आकाशवाणी भोपाल। विज्ञापन संबंधी सभी जानकारियों के लिए कॉल करें 9425012367।
6: कवि शेब राग तेलंग।
7: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी

0: शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
2: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और ये समय है फिल्म संगीत का कार्यक्रम का। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, आनंद बख्शी ने इस गीत को शब्द

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में अब आप सुनने जा रहे हैं असद भोपाली के ये शब्द। आवाज़ है आशा भोसले की, फिल्म का नाम गुमराह।

और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होने जा रहा है। हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:10 होने जा रहे हैं।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। उन्होंने सरदार पटेल को याद करते हुए कहा कि पटेल इस मंदिर के पुनर्निर्माण को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते थे और अब मंदिर के गौरवशाली इतिहास को सम्मान देने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष प्रार्थनाएं होंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कुछ ही देर में श्री शाह भाजपा के सभी 207 नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। वहीं कल यानी 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच संगठनात्मक मामलों और आगामी राजनीतिक रणनीति पर चर्चा हुई। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातदंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। इस महाकुंभ में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और फिल्मकार डॉ. चंद्र प्रकाश द्विवेदी समेत देशभर के दर्जनों वरिष्ठ पत्रकार और विद्वान इसमें शिरकत करेंगे। इस मौके पर 200 साल की पत्रकारिता की यात्रा पर एक खास प्रदर्शनी भी लगाई गई है और 8 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट लाइव कार्टून शो भी पेश करेंगे। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। इसी तरह की एक दौड़ भोपाल स्थित आकाशवाणी के दफ्तर से भी सुबह में आयोजित की गई। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फिरोजपुर डिवीजन के 1000 किलोमीटर और जम्मू डिवीजन के 440 किलोमीटर रूट पर यह सिस्टम लगाया जाएगा। कवच एक स्वदेश निर्मित स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है, जो खतरे की स्थिति में ट्रेन में अपने आप ब्रेक लगाकर टक्कर और दुर्घटना को रोकती है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा और पांडुना में आज तेज आंधी के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है, जिससे किसानों की फसल को नुकसान हो सकता है। मुरैना में बिजली गिरने और ग्वालियर विंध्य क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम बदलने का अनुमान है। वहीं छतरपुर, दमोह, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा स्थित नेहरू पीजी कॉलेज में सत्र 2026-27 के लिए ई प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। वहीं छात्रों को पंजीयन दस्तावेज, सत्यापन, विषय चयन और फीस संबंधी जानकारी देने हेतु हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। नीमच में जलगंगा संवर्धन अभियान तहत ग्रामीण नल जल योजना के संचालन, संधारण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम सरपंचों, सचिवों एवं पंप ऑपरेटरों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कल आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
2: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
5: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
6: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
7: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
6: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
8: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
9: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
8: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
10: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
11: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
8: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कराईकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। DRDO और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
12: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:30 हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। रामपुर का लक्ष्मण फिल्म का नाम था। कैफी आजमी ने इस गीत को शब्द दिए थे, धुन थी मदन मोहन की। सुनने के लिए चिट्ठी लिख भेजी थी हमारे इन सभी दोस्तों ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता सिद्धांत और प्रिंस एकांश गवहाणकर ने। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित और ध्वनि गवाणकर ने भी इसी गीत को सुनना चाहा था। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार ने इस गीत के लिए अपनी फरमाइश लिख भेजी थी। ग्राम महसेवाड़ी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न घाड़े, निनाजी घाड़े और स्वप्निल घाड़े साथ में अजय खिरोडकर ने इस गीत को सुनना चाहा था। और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। ये हैं अनिल कवचाले, नेहा, सबीहा, पूजा, सुषमा, स्मिता। इन्होंने ये चिट्ठी लिख भेजी है स्कीम नंबर 71 इंदौर से। पुणे से अगला खत भेजा है प्रियंका, पंकज और आर्या ने। जरूर वरुड़ से ये खत लिख भेजा है बाबा साहेब बड़ौदे और चंद्र प्रभा बड़ौदे ने। ये खत आया है गांधी बाग आकोला से रमेश काटनकर, वैशाली काटनकर और हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया, अस्मा, सालिया, शुएब, मुस्तफा खान, साथ में है रऊब भाई और शाहिद भाई। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर आप सुनेंगे लता मंगेशकर का गाया हुआ यह गीत।

रोशन का ये संगीतबद्ध किया हुआ नगमा है, बोल है मजरूह सुल्तानपुरी की आवाज़, लता मंगेशकर की, फ़िल्म का नाम ममता, फरमाइशी नाम गीत के बाद।

लता जी के गाए हुए इस गीत को सुनना चाहा था हमारे इन सभी दोस्तों ने। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप और केशव पटेल, संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सरमती पंचोलिया ने घंटाघर चौक खंडवा से ये चिट्ठी हमें लिख भेजी थी। रेलवे कॉलोनी बटंडा से अगला खत आया है। जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जे एस नायक और शोभा नायक। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश। उपाध्याय नगर देवास से मुरलीलाल वर्मा, मनीष और शिवम वर्मा। राजा राम नगर देवास से ही ये खत आया है। राजू अग्रवाल, मधु महाजन और राकेश अग्रवाल, ये दोस्त हमारे जो हैं, इन्होंने भी ये चिट्ठी लिख भेजी है। देवास से सुपरमार्केट से ये खत है, प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज और सनी जसवानी का। हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल और निरंजन माली ने रूपा खेड़ी देवास से ही खत लिख भेजा है। जेल रोड देवास से अगली चिट्ठी आई है नवीन वर्मा और बबलू वर्मा की। गंगेड़ी ज़िला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालाग्राम, दशरथ बागवान, साथ में है कन्हैया लाल प्रजापति। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

संतोषानंद ने इस गीत धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, आवाज़ कमलेश अवस्थी की और फिल्म का नाम प्यासा सावन।

और अब बारी है हमारे इन सभी दोस्तों की फरमाइश की। ये हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री ने ये चिट्ठी लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से। लाल माता सुदामा नगर रेटलाई ज़िला झालावाड़ राजस्थान से ये खत लिख भेजा है हमारे इन सभी सुनने वालों ने, हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बांगरी। जयराज प्लॉट राजकोट से इस खत लिख भेजा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मिन और प्रयागराज भट्ट। इन सभी दोस्तों की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत। साथ में आवाज़ है सुरेश वाडेकर की। राहुल देव वर्मन ने इस गीत को संगीतबद्ध किया है और शब्दकार हैं आनंद बख्शी। फिल्म का नाम बेमिसाल।

और इसी नगमे के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब ख़त्म होता है। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। 2:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के स्वागत के बाद श्री शाह सबसे पहले दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की खुशी में भोपाल के भारत भवन में 3 दिन का मीडिया महाकुंभ चल रहा है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और वीर भारत न्यास मिलकर प्रणाम उदंत मातंड नाम से यह समारोह 10 मई तक आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी की सेवा के 90 साल पूरे होने के जश्न में आज नई दिल्ली में 3.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक होते हुए वापस आकाशवाणी भवन पर ही खत्म हुई। और रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपये खर्च होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

से। अब हम इस सभा का समापन करें, उससे पहले आपको जानकारी दे दें हमारी सांध्यकालीन सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। शाम 5:02 पर आप सुनेंगे युवा दोस्तों का कार्यक्रम युवावाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगी और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुना जा सकेगा शाम 6:00। ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा 7:21 पर। सुर्खियों में इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा 8:00। खेल जगत, इसे आप सुन सकते हैं 9:30 पर। 10:00 का समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। पंडित भीमसेन जोशी का राग भीम पलासी में ख्याल गायन प्रसारित होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में प्रसारण समय रहेगा 10:30। ये थी जानकारी हमारे उन कार्यक्रमों की जिन्हें आप हमारी सांध्यकालीन सभा में सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। 3:02 होने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा संपन्न होती है। मीडियम वेव पर आप हमारी सभा का प्रसारण शाम 5:00 से सुन सकते हैं। अभी दीजिए इजाज़त, इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा। नमस्कार। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:02 हुए हैं। अब सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति।

और लोक संगीत के इस कार्यक्रम के बाद है बारी सुगम संगीत के इस कार्यक्रम की। इसमें आप सुनेंगे इकबाल सिद्दीकी की गाई हुई कुछ गजलें। ईश्वर समान महिमा।

और उसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब ख़त्म हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण DTH के ऑडियो चैनल पर। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

राहत फ़तेह अली ख़ान, शंकर महादेवन ने इस गीत को अपनी आवाज़ें दी है, प्रसून जोशी ने शब्द दिए हैं। शंकर एहसान लॉय का संगीत है और फिल्म का नाम है लंदन ड्रीम्स।

और अब जो गीत आ रहा है उसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम और आशीष श्री ने, साथ में इस गीत को शब्द दिए हैं अमिताभ भट्टाचार्य, इरफान सिद्दीकी, शाम पांडे और रोशन नरेश अय्यर।

जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत को आप सुनने जा रहे हैं। संगीतकार हैं शंकर एहसान रॉय और इस गीत को गाया है शफकत अमानत अली और साथ दिया है शंकर महादेवन ने। फिल्म का नाम है कभी अलविदा।

एटीएम मेट्रो फिल्म का ये गीत था। विशाल मिश्रा ने इसे गाया था, कौसर मुनीर ने शब्द दिए थे, धुन थी मार्क के रॉबिन की।

अरिजीत सिंह को आप सुन रहे हैं डंकी फिल्म में। इरशाद कामिल ने इस गीत को शब्द दिए हैं और संगीतकार हैं प्रीतम। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं विशाल मिश्रा का गाया हुआ ये गीत। एनिमल फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं। राजशेखर इस गीत के शब्दकार हैं और धुन विशाल मिश्रा की है।

0: आकाशवाणी भोपाल के इस प्रसारण को आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर, और अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। पश्चिम बंगाल में भाजपा की बैठक में शुभेंदु अधिकारी का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। रेलवे ने स्वदेशी तकनीक से बनी कवच ट्रेन सुरक्षा प्रणाली को उत्तर रेलवे के अहम रूटों पर लगाने की मंजूरी दे दी है, जिस पर करीब 362 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आईपीएल में

शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। और प्रदेश में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी व पूर्वी हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ ये गीत साहिर ने लिखा था, धुन तैयार की थी मदन मोहन ने, फिल्म का नाम था लैला मजनू।
1: पलट, अरे पलट
2: पलट के दरा दे

0: लूंगा जी रह लूंगा।
1: पानी भरोगे?
0: हाँ जी।
1: चौका करोगे?
0: जी हाँ।
1: झाड़ू पीतोगे?
0: हाँ जी। आ? ना ना ना ना जी।
2: आप ये गीत सुन रहे हैं नाग, पद्मिनी फिल्म से। बलबीर और सुधा मल्होत्रा ने इसे आवाज़ें दी हैं, प्रेम धवन ने शब्द दिए हैं और धुन है सन्मुख बाबू की।

अगला गीत है रोजा फिल्म से, एसपी बाला सुब्रमण्यम चित्रा ने इसे गाया है, पी के मिश्रा गीतकार, संगीतकार ए आर रहमान।

तर्ज बनाई थी नदीम श्रवण ने, बोल थे समीर के, आवाज़ें थी अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। फिल्म का नाम सड़क।

0: मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री शाह भाजपा के सभी 207 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में विधायक दल का नेता यानी मुख्यमंत्री चुना जाएगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान से रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्यों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है। और IPL में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों आपका स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे आपके मनोरंजन के लिए मधुर गीत भी। तो आइए दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक महंगाई मापने के प्रमुख उपकरण है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आम उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाले वस्तु और सेवाओं की कीमतों में बदलाव को दर्शाता है। यह आम लोगों की जीवन यापन लागत को समझने में मदद करता है। CPI में खाद्य पदार्थ, कपड़े, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ें शामिल होती हैं। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। यह मुख्य रूप से उत्पादकों और व्यापारियों के स्तर की महंगाई को दिखाता है। WPI में कच्चा माल, ईंधन और विनिर्मित वस्तुएं शामिल होती हैं। CPI का उपयोग आमतौर पर मौद्रिक नीति बनाने में किया जाता है, जबकि WPI से उत्पादन लागत और आपूर्ति की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाता है। CPI सीधे आम जनता को प्रभावित करता है, जबकि WPI अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। दोनों सूचकांक मिलकर अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझने में सहायक होते हैं। अगर CPI बढ़ता है तो महंगाई बढ़ने का संकेत मिलता है। WPI में वृद्धि से उत्पादन लागत बढ़ने का संकेत मिलता है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक इन सूचकांकों के आधार पर नीतियां बनाते हैं, इसलिए CPI और WPI दोनों आर्थिक विश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों ये तो थी हमारी एक छोटी सी जानकारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक पर। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर। वार्ता का विषय है जल संरक्षण। वार्ताकार हैं सुमुख रावत।
1: सभी को नमस्कार, और आज हम जल के संरक्षण और जल के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जल संरक्षण वर्तमान समय की महती आवश्यकता। जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह न केवल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, बल्कि यह कृषि, उद्योग और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के लिए भी अनिवार्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया का लगभग 40% आबादी को पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है। जल संकट लगातार बढ़ रहा है, और यदि इस पर तुरंत ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी विकराल हो सकती है। जल का अनावश्यक उपयोग, जल स्रोतों का दूषित होना और जलवायु परिवर्तन की वजह से वर्षा में अनिश्चित जल संकट को और गंभीर बना दिया है। इसलिए जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्यता बन गया है। जल संकट के महत्व, जल संकट के कारण, जल संरक्षण के विभिन्न उपायों और इससे जुड़े सामाजिक तत्वों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण का अर्थ है जल के उपयोग को अनुकूलित करना, जल की बर्बादी को रोकना और जल स्रोतों की रक्षा करना। यह न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जल संरक्षण के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। पहला, मानव जीवन का आधार। जल के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। यह पीने, खाना पकाने, स्वच्छता बनाए रखने, कृषि और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाता है। दूसरा,

और खाद्य सुरक्षा। कृषि क्षेत्र जल पर अत्यधिक निर्भर करता है। सिंचाई के बिना खेती असंभव है। जल की कमी के कारण फसल उत्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। तीसरा, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। नदियाँ, झीलें और समुद्र कई जीवों का प्राकृतिक आवास है। जल स्रोतों की कमी से जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है और पारिस्थितिक असंतुलित हो जाती है। चौथा, ऊर्जा उत्पादन में योगदान। जल का उपयोग बिजली हाइड्रो पावर उत्पादन में किया जाता है। यदि जल संकट बढ़ता है तो बिजली उत्पादन भी प्रभावित होता है, जिससे औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पांचवा, औद्योगिक और आर्थिक विकास। अधिकांश उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। यदि जल की उपलब्धता सीमित हो जाती है तो औद्योगिक उत्पादन भी प्रभावित होगा, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान जल संकट और इसके कारण, जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन। भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन जल संकट का एक प्रमुख कारण है। उद्योगों, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए लगातार बढ़ते दोहन ने भूमिगत जल स्तर को अत्यधिक गिरा दिया है। जल प्रदूषण। औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक अपशिष्ट, कृषि में उपयोग होने वाले कीटनाशक और घरेलू गंदगी जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं। इससे स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित वर्षा। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का पैटर्न अनिश्चित हो गया है। कई क्षेत्रों में सूखा पड़ रहा है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है। शहरीकरण के कारण जल स्रोतों पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिससे जल संकट और भी गंभीर हो गया है। जल प्रबंधन की कमी। भारत जैसे देशों में जल प्रबंधन की कमी भी जल संकट का एक बड़ा कारण है। जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण जल का अपव्यय हो रहा है। जल संरक्षण के उपाय। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल का संरक्षण और उपयोग जल संकट को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। इसके लिए विधियां अपनाई जा सकती हैं। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संरक्षण किया जाए। तालाबों और कुओं का पुनरुद्धार किया जाए। ग्रामीणों क्षेत्रों में पारंपरिक जल संचयन तकनीकों को अपनाया जाए। भूमिगत जल पुनर्वरण, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। कुओं, तालाबों और बावड़ियों की सफाई कर उन्हें जल संरक्षण के लिए उपयुक्त बनाए जाए। सड़कों और घरों के पास परकुलेशन टैंक बनाए जाए, ताकि वर्षा जल जमीन में समा सके। सिंचाई में जल की बचत, टपकन सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग किया जाए। कम पानी वाली फसलें उगाई जाएं। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाए। घरेलू स्तर पर जल की बचत। नलों को खुला ना छोड़ें और टपकते नलों को ठीक कराएं। बाल्टी से नहाने को प्राथमिकता दें। शावर को कम उपयोग करें। कपड़े और बर्तन धोने में पानी कम खर्च करें। उद्योगों में जल संरक्षण। जब जल पुनर्चक्रण तकनीकों को अपनाएं, औद्योगिक कचड़े को जल स्रोतों में बहाने से रोकें। कारखानों में जल उपयोग की प्रभावी निगरानी हो। जल स्रोतों का संरक्षण। नदियां, झीलें और जलाशयों की सफाई और पुनरुद्धार किया जाए। जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण किया जाए। जन जागरूकता अभियान। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों पर जल संरक्षण पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। जल संरक्षण पर सामाजिक अभियानों को बढ़ावा दिया जाए। सरकार और समाज की भूमिका। सरकार नीतियों और योजनाएं। नमामि गंगे जैसी योजनाएं का विस्तार किया जाए। जल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए। किसानों को जल बचाने की तकनीकों पर प्रशिक्षण दिया जाए। समाज की भूमिका। प्रत्येक नागरिक को जल की बचत के लिए प्रयास करने चाहिए। सामाजिक संगठनों को जल संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। युवाओं को जल संरक्षण अभियानों में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष। जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यदि हम जल को बचाने के लिए अभी से प्रयास नहीं करेंगे तो भविष्य में जल संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर मिलकर जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जल बचाने के लिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा। जल स्रोतों को स्वच्छ रखना होगा। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना होगा और जल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया को अपनाना होगा। सरकार, उद्योगों और आम जनता को मिलकर जल प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना होगा। जल है तो कल है, यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यदि हम जल संरक्षण के लिए अभी से कार्य करें तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध
भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

0: जल की हर एक बूंद अनमोल है, इसे बचाना सभी की जिम्मेदारी है।
1: साथियों, अभी आपने सुनी ये वार्ता जिसका विषय था जल संरक्षण। वार्ताकार थे सुमुख रावत। साथियों, कार्यक्रम का रुख मोड़ देते हैं अब मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये मधुर गीत।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना ये था फिल्म कारवां से, जिसमें आवाज़ थी अरिजीत सिंह की, जिसके गीतकार थे आकर्ष खुराना और संगीत से सवारा था अनुराग साइकिया ने। साथियों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आज है 8 मई, यानी आज ही के दिन हम विश्व रेड क्रॉस दिवस भी मनाते हैं। तो हम आपको दे देते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में थोड़ी सी जानकारी। विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन मानवता, सेवा और करुणा के मूल्यों को सम्मान देने के लिए समर्पित है। यह दिन हेनरी ड्यूनांट के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। उन्होंने युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद के लिए एक वैश्विक मानवीय संगठन की नींव रखी।

विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा के लिए लोगों को प्रेरित करना, आपदा और संकट में राहत कार्यों के महत्व को समझाना, स्वयं सेवकों के योगदान को सम्मान देना। रेड क्रॉस संगठन दुनिया भर में कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में सहायता, प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, रक्तदान शिविरों का आयोजन, शरणार्थियों और जरूरतमंदों की मदद करना। आज के समय में जब दुनिया विभिन्न संकटों से जूझ रही है, रेड क्रॉस जैसे संगठन मानवता के लिए उम्मीद की किरण है। यह हमें सिखाता है कि बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करना ही सच्ची मानवता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह याद दिलाता है कि छोटे छोटे प्रयास भी किसी की जिंदगी बदल सकते हैं। सेवा, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से हम समाज को बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व रेड क्रॉस दिवस के बारे में। साथियों, आपको लेकर चलते हैं हमारी आखिरी चर्चा की ओर, जिसका विषय है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और जागरूकता बढ़ाना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। सड़क सुरक्षा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा बन चुका है। हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं। इस सप्ताह के दौरान विभिन्न देशों में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन बचा सकता है। तेज गति और लापरवाही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण भी बनती है। नशे में वाहन चलाना बहुत खतरनाक होता है। पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा शिक्षा भी दी जाती है। सरकारें बेहतर सड़क और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पर जोर देती है। यह सप्ताह युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश फैलाया जाता है। आपातकालीन सेवाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह सुरक्षित ड्राइविंग करे। छोटी छोटी सावधानियां बड़े हादसों को रोक सकती हैं। यह अभियान सुरक्षा पहले की सिद्धांत को बढ़ावा देता है। मिलकर प्रयास करने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। तो साथियों, हमेशा हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग करें और वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं। साथियों, ये तो थी हमारी एक चर्चा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह पर। साथियों, वक्त हो चला है मनोरंजन का, तो आइए करवा देते हैं आपका मनोरंजन इस मधुर गीत के साथ।

साथियों, अभी हमने सुना फिल्म अखियों के झरोके से ये मधुर गीत, जिसमें आवाज़ थी हेमलता की, जिसके गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। साथियों, अब जाते जाते दे देते हैं आपको रोजगार सूचना भी। RRB योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक लोको पायलट यानी ALP, जिसमें पदों की संख्या है 11,127। आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी आधिकारिक वेबसाइट यानी www.indianrailwaysgovernment.in पर विजिट भी कर सकते हैं। ना चाहते हुए भी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपने मित्र अनुपम खरे को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में कार्यक्रम युववाणी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी, आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब लेते हैं एक अंतराल। बदलो बदलो आदत।

रक्तदान जीवन का उपहार है। आइए रक्तदान करें, जीवन दान करें। रक्तदान से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती। 18 से 65 वर्ष तक उम्र और 45 किलो अथवा इससे अधिक वजन का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 माह में रक्तदान कर सकता है। रक्तदान एक पीड़ा रहित प्रक्रिया है। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान किसी को जीवन और स्वयं को आत्मसंतोष प्रदान करता है। रक्तदान करने के लिए शासकीय अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के ब्लड बैंक में संपर्क करें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब सुनिए केदारनाथ फिल्म से ये गीत, गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे हैं इसके बोल और अमित त्रिवेदी ने सजाया है इसे संगीत से।

अगली आवाज़ सुनिए वेद शर्मा की मलंग फिल्म से। ये गीत लिखा है कुणाल वर्मा, हर्ष लिम्बाचिया, और संगीत दिया है वेद शर्मा ने।

अगला गीत सुनिए लक्ष्मी फिल्म से, शशि, डीजे खुशी, निकिता गांधी और मधुबंती की आवाज़ है, गगन आहूजा के बोल हैं और संगीत है शशि और डीजे खुशी का।

अगला गीत सुनिए लव आजकल फिल्म से, शाश्वत सिंह और अरिजीत सिंह की आवाज़ है, इरशाद कामिल के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जन्मदिन हो, त्योहार हो या हो कोई शुभ अवसर, पहुंचाइए अपने शुभकामना संदेश आकाशवाणी भोपाल से जुड़कर। बुकिंग कराने के लिए संपर्क कीजिए इस नंबर पर 9425012367।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 5:58 हुए हैं। अब प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
4: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या इस वर्ष मार्च तक 2,17,00,000 तक पहुंच गई है। पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित यह योजना सेवानिवृत्त के बाद नागरिकों को लंबे समय तक के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में लीची की फसल को कीड़ों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए त्वरित और सक्रिय कदम उठाए हैं। श्री चौहान ने एक विशेष विशेषज्ञ कार्यबल गठित करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित निर्माणाधीन विकास कार्यों में तेजी लाकर उन्हें समय सीमा में पूर्ण किया जाए। और आईपीएल में आज शाम 7:30 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है।

0: यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
1: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
1: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
1: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
1: जी
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
1: जी
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
1: जी
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
1: जी
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800-440-559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविन्द्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरोदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था, इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शिद्दत फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसके गायक, गीतकार और संगीतकार हैं मनन भारद्वाज।

अगला गीत सुनिए सत्यमेव जयते 2 फिल्म से, ज़ारा एस खान और देव नेकी की आवाज़ है और तनिष्क बागची गीतकार व संगीतकार हैं।

अगली आवाज़ सुनिए रश्मि इतकौर की और शामूर की रूही फिल्म से। ये गीतकार हैं इस गीत के आईपी सिंह, सचिन जिगर, और संगीतकार हैं सचिन जिगर।

की एंड का फिल्म से अगला गीत सुनिए, मीत ब्रदर्स, जयज थामी, अदिति सिंह शर्मा की आवाज़ में, और कुमार ने लिखे हैं इसके बोल, और संगीतकार हैं मीत ब्रदर्स।

अगला गीत सुनिए मोनिका ओ माई डार्लिंग फिल्म से, मिकी मैक्लेरी अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तव की आवाज़ है और अरुण ग्रोवर ने लिखे हैं इसके बोल और अचिंत का है संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और अगला गीत सुनिए नमस्ते इंग्लैंड फिल्म से दिलजीत दोसांझ, बादशाह और आस्था गिल की आवाज़ है। गीतकार और संगीतकार हैं बादशाह।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब समय है सूचना का। आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा में रविवार दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस हेलोग्राम सभा के लिए विषय है जायद उद्यानिकी फसलों पोषण प्रबंधन एवं सामयिक कार्य। इस कार्यक्रम में जो भी श्रोता अपनी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान चाहते हैं वे दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य आकाशवाणी भोपाल के फ़ोन नंबर 2660902 या 2660903 पर फ़ोन कर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दिन समय और फ़ोन नंबर एक बार पुनः सुने। दिनांक 10 मई 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे के मध्य फ़ोन नंबर है 2660902 या 2660903 और भोपाल का एसटीडी कोड है 0755 यानी 0755। सूचना समाप्त हुई।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने कहा कि बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिल वेत्री कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम

0: आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है कार्यक्रम विवरण का। अब से कुछ ही देर में शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कार्यक्रम का आकर्षण होगा आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। शाम 8 कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। शाम 8:15 और रात 9:45 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। रात 9:30 पर कार्यक्रम खेल जगत प्रस्तुत होगा। रात 10 आपकी फरमाइश कार्यक्रम में पूरी करेंगे आपके पत्रों द्वारा भेजी गई गीतों की फरमाइश। और रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आनंद लीजिएगा पंडित भीमसेन जोशी की आवाज में ख्याल गायन का। राग होगा भीम पलासी। अब कुछ प्रमुख कार्यक्रम जो आप सुनेंगे कल यानी 9 मई की सभा में। सबसे पहले मुख्य कार्यक्रम जो कल सुबह 11 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में। कल सुबह 6:05 पर वंदना और 6:30 पर श्री रामचरितमानस गान का आनंद लीजिएगा। सुबह 6:40 पर चिंतन और 6:45 पर कृषि चर्चा सुनिएगा। कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल प्रस्तुत होगा। कल सुबह 8:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा प्रस्तुत होगा। कल सुबह 9:15 पर लोक संगीत कार्यक्रम में प्रेम लता नागदेव की आवाज में निमाड़ी गीतों का आनंद लीजिएगा। कल सुबह 9:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम, 10 जिले की चिट्ठी, 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला प्रस्तुत होगा। अब कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों का विवरण जो आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में। सुबह 11 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे सुनिएगा। दोपहर 12:00 आपकी फरमाइश, दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जादूगर को सलाम की 10वीं कड़ी प्रस्तुत की जाएगी। दोपहर 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 पर लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। और ये सभी कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति में। दोपहर 2 फिल्म संगीत और 2:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम प्रस्तुत होगा। शाम 5:33, 6:30 और 8:15 पर फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। कल शाम 6 विशेष भेंटवार्ता सुनिएगा आकाशवाणी के स्वर्णिम 90 वर्षों के गौरवशाली सफर पर आकाशवाणी भोपाल की विशेष प्रस्तुति में। कल शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। कल शाम 8 कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत होगा। कल रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी संस्कृति भारती। और आकाशवाणी दिल्ली के ही अनुप्रसारण में कल रात 10 संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। इसी के साथ आज की शेष सभा और कल की सभा के कार्यक्रमों का विवरण संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज की घड़ी में संध्या के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को करेंगे दर्शन पूजन। अगले 1000 दिनों तक होंगी विशेष प्रार्थनाएं। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर, कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में लेंगे शपथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से की मुलाकात। और देश भर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति पूरी तरह सामान्य, वाणिज्यिक आपूर्ति 70% बहाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को इस मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री मोदी ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा कि सोमनाथ भारत की सभ्यतागत ताकत का प्रतीक है और यह मंदिर बताता है कि आस्था और संस्कृति बार बार के हमलों के बावजूद जिंदा रहती है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कोलकाता में आयोजित विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया है। बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया।
1: प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शुभेंदु अधिकारी ने इस चुनाव में ममता बनर्जी को उनके गृह क्षेत्र भवानीपुर से हराया है और नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। श्री शुभेंदु कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनके निवास पर भेंट की। इसके अलावा उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी शिष्टाचार भेंट कर उन्हें पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह

ही है जीवन है अपनों, और जब अपनों अपन अपनों स्वयं को जो है ख्याल रखेंगे तभी तो देखो सुरक्षित जिंदगी जी पाएंगे, औरों की भी मदद कर पाएंगे। अपने जैसे बड़े बुजुर्ग जिन्हें अपन रोड वो कराते हैं पास कराते हैं, तो भैया देखो तनिक सी लापरवाही ना हुई सोई भैया सभी मामलों जो है गड़बड़ सो हो जाते कि नहीं, जरा सी चूक या जल्दबाजी हमेशा के लिए जो है पराधीनता की जिंदगी जीनी पड़त है, और कहीं जिंदगी तो ख़त्म भी सो हो जाते हैं। तो हम तो अपने सभी श्रोता भैया बहनन से ये कार्यक्रम का सुन रहे हैं, देश विदेशन में बैठे हुई हैं, कि सड़क पर चलते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, काहे कि हेलमेट हमारी जीवन को जो है सुरक्षा जो है कवच तो है ही, और भैया जो है उच्च गुणवत्ता वाले हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। यह काहे कि देखो मृत्यु के जोखिम को 6 गुना से भी अधिक कम करता है, और मस्तिष्क की यानी कि सिर की चोटों को 74% तक सुरक्षित रखता है, गंभीर चोट से बचाता है। हेलमेट सिर की सुरक्षा के लिए पहनना जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक उपकरण है, और विशेष रूप से भैया देखो लाखों करोड़ों की जो है जानों को बचाता है। और भैया हरो हेलमेट एक आविष्कार मुख्य रूप से जो है एडवर्ड डब्ल्यू बुलार्ड को माना जाता है, जिन्होंने 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के हेलमेट के आधार पर जो है पहला औद्योगिक हार्ड हेड विकसित करोगा हतो। और भैया मोटरसाइकिल हेलमेट का पहला उपयोग 1914 में डॉक्टर हेनरिक गार्डनर द्वारा जो है कियोगा हतो। तो भैया हरो हम जो ही कहें कि देखो सिर पे हेलमेट जरूर लगाएं, और बाको जो है सही तरीका से बेल्ट को बांध के और लगाएं, और जब भी जैसे गाड़ी चलाते समय अपने दाएं बाएं देखें, गाड़ी को चलाएं और धीमी गति से ही उनको चलाएं, और आने जाने वाले लोगों का भी विशेष ध्यान रखें। तो अब जैसे भैया देखो कार्यक्रम को आगाऊ बढ़ावे से पहले अब अपने भैयन को जो है सुनवा रहे हैं जो चेतावनी अशोक प्रजापति से और साथियों के स्वर में।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: हाँ भैया, रो देखो गीत और संदेशन के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में। सभी श्रोता भैया को करते हैं स्वागत। और भैया देखो, जो अपन और सभी जानते हैं कि हमारे किसान भैया खेती बाड़ी तो करते ही हैं, और सभी की किसान भैया की जो है जो भी इच्छा रहते हैं कि हमें अपनी खेती से जो है अच्छा उत्पादन मिले, अच्छा बाको उपज बढ़े, और जो ऐसे लागत भी लगानी पड़ता है कि नहीं। तो भैया लागत लगानी सो पड़ता है, तो जाके लाने यानी खर्चा पानी भी सो ही लगाने पड़ते हैं। अब जाके लाए, कृषकों को जो है शासन द्वारा कई सुविधाएं दी हैं, तो ऐसे ही ऋण सुविधाएं भी दी जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए भैया आज हम आप और उनको ऐसी ही भेंट वार्ता सुनवा रहे हैं। भेंट वार्ता को विषय है बैंक से कृषकों को ऋण सुविधाएं। तो हमारे बीच जानकारी दे रहे हैं श्री आशीष शुक्ला जी, और उनसे चर्चा कर रहे हैं श्री सोहन सिंह जी। तो भैया हर सुनते हैं जो भेंट वार्ता।
3: किसान भाइयों, हम फसल उत्पादन करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम फसलों से अच्छा उत्पादन लें। अच्छा उत्पादन लेने के लिए उन्नतशील बीज, खाद और सिंचाई महत्वपूर्ण अवयव होते हैं, और इनके लिए धन की आवश्यकता होती है। पहले हमारे ग्रामीण भाई जो धनवान लोग होते थे, उनसे पैसे उधार लेकर अपना कार्य किया करते थे, लेकिन उनकी ब्याज दरें अधिक होती थीं। आज जगह जगह पर बैंकें स्थापित हो गई हैं और बैंकें कृषकों को ऋण प्रदान करती हैं, जिसको लेकर हमारे किसान भाई अपनी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बैंकों से कृषकों को किस तरह ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित हैं श्री आशीष शुक्ला। शुक्ला साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
4: धन्यवाद सर।
3: शुक्ला साहब, हमारे किसान भाइयों को कृषि के लिए किस तरह ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और इनका लाभ लेकर हमारे किसान भाई किस तरह अपनी खेती से अधिक उत्पादन ले सकते हैं?
4: किसान के लिए सरकार का बड़ा फोकस है, और फोकस में मुख्यतः सबसे प्रथम अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन में वो KCC के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसमें 7% इंटरेस्ट लगता है। अगर वो सुचारू रूप से चलाता है, दोनों टाइम ईयर में पलटी करता है, तो उसको 4% लोन मिलेगा। 3% का इंटरेस्ट सबमिशन मिलता है, जो सरकार की तरफ से उसको दिया जाता है सही चलाने में। और KCC होने से अगर उसकी फसल में कुछ खराबी भी होती है, तो उसके साथ में फसल बीमा किया जाता है, जिसके लिए रवि के सीज़न में जो रहता है उसका KCC अमाउंट होता है, जो लोन होता है उसका 2% होता है, और खरीफ के लिए होता है 1.5% होता है।
3: शुक्ला साहब, आप बता रहे हैं KCC, जिसे ग्रामीण भाषा में कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड, अगर इसे हमारे किसान भाई बनवाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया है जो उन्हें पालन करते हुए आपके बैंकों से ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं?
4: बहुत आसान प्रक्रिया है। कृषक भाई स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जाएं, जाने के बाद उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड हमको चाहिए होगा, KYC जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में है उसको लेकर जाएं, फसल की जो किताब होगी उसको लेके जाएं, और खसरा खतौनी जो लगता है उसकी वकील जो होता है वो उसको सर्च करता है। सर्च में जब उपयुक्त आ जाने के बाद हम लोग उसको कर देते हैं, बस हमको इतना ही चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ इसमें लगता नहीं है। बहुत इजी, सुगमतापूर्वक हो जाता है और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद भी है।
3: जैसे ऋण हमारे किसान भाई स्वीकृत कराते हैं तो इसकी कुछ सीमा रहती होगी, ये किस तरह आप निर्धारित करते हैं?
4: इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित करती है। उस जितना स्केल ऑफ फाइनेंस होता है उस आधारित पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, और जो उच्चतम होता है तो हम उसको प्रदान करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं 5 साल में। तो उसको फर्स्ट ईयर में जो मिलता है, सेकंड ईयर में उसका 10% इंक्रीज होता है, और जो 5वें साल में उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वहां तक पहुंच जाता है। वो हर साल 10% इंक्रीज होकर 5th ईयर में उसकी जो फाइनल लिमिट होगी वो उसको मिलेगी। इसके लिए उसको हर साल रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट बेनिफिट लेने के लिए उसको रिन्यूअल करने पड़ेंगे, रेगुलर बेसिस पे रिन्यूअल होगा। व्यू होंगे तो उसको इंटरेस्ट सबमिशन का भी बेनिफिट मिलेगा, जो एडिशनल इंटरेस्ट सबमिशन सरकार की तरफ से मिलता है उसका बेनिफिट मिलेगा, तो इंटरेस्ट बहुत नॉमिनल रह जाता है। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो KCC का जो ऋण है वो सबसे सस्ता पड़ता है किसान भाई को, जस्ट लाइक अगर कहीं बाजार में भी कोई भी रहता है, किसी साहूकार के पास भी जाएंगे तो 1% लेता है या 2% का इंटरेस्ट रहता है, वो 24% पड़ता है ईयरली, बट आपको यहाँ पे 7% नॉर्मल है। अगर आप सही से सुचारू रूप से चलाते रहेंगे तो 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा आप पे।
3: शुक्ला साहब, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे पास 1 एकड़ जमीन है जी, तो हमें कितना ऋण स्वीकृत हो सकता है 1 एकड़ जमीन पर?
4: 1 एकड़ जमीन है अपने पास, तो अपना ऋण जो है, एकड़ को अपन हेक्टेयर में काउंट करते हैं, 1 हेक्टेयर पर 2.47 एकड़ होगा जाके, तो उसमें जो उसका स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड होगा वहाँ का, उस हिसाब से उसको डिसाइड करेंगे एकड़ में। जो एकड़ में जैसे दतिया डिस्ट्रिक्ट में है 33,260 रुपीज़ कुछ वीट के, मतलब गेहूँ के उत्पादन के लिए है, चावल के लिए अलग रेट है, तो जो उसका रेट आएगा एक पर एकड़ के हिसाब से, तो हम उसको उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, उसी हिसाब से डिवाइड करेंगे उसको।
3: तो शुक्ला साहब, जिस तरह हमारे किसान भाई ऋण तो लेते हैं तो खुशी खुशी लेते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है कि चलो हमें बैंक से धन मिल रहा है, लेकिन उनसे जो आप जो भुगतान है वो किस तरह करते हैं?
4: किसान क्रेडिट कार्ड में तो किसान के लिए बहुत फायदा है, किसान के पास जो भी लेन देन फसल का आ रहा है अगर कार्ड में आएगा तो उसमें ट्रांजेक्शन दिखेगा, उस आधार पे उसको जो सबमेंशन मिलता है और सबमेंशन भी उसको दिखेगा उसमें, और वो उससे पैसा निकाल सकता है, क्योंकि वो एक ओवरड्राफ्ट सीसी लिमिट टाइप का अकाउंट है, सीसीओडी लिमिट अकाउंट है, जिसमें वो पैसा अपना निकाल सकता है और डाल सकता है उसमें, वो जस्ट लाइक ओडी अकाउंट काम करेगा किसान के लिए।
3: शुक्ला साहब, जिस तरह हमारे किसान भाई खरीफ के लिए ऋण लेते हैं या रबी फसल के लिए लेते हैं, तो उन्हें जो धन है वो एक साथ मिल जाता है कि वो किस्तों में मिलता है?
4: जो आपकी लिमिट है उस साल के लिए डिसाइड की गई है, जिसका एग्रीमेंट होता है पहली साल में, आपको उस पूरे साल के लिए वो पूरा पैसा मिल सकता है, आप चाहें तो एक बार में निकालिए चाहे आप किस्तों में निकालिए, वो आपको मिल जाएगा।
3: खेती के साथ साथ हमारे जैसे सहायक व्यवसाय हैं, पशुपालन है, उद्यानिकी है, या दूसरे हमारे किसान भाई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आपके यहाँ से ऋण सुविधाएं हैं?
4: हाँ, मध्य प्रदेश शासन अभी भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि अभी पशुपालन के लिए भी केसीसी शुरुआत की गई है, हर डिस्ट्रिक्ट में लक्षित किया गया किसानों को कि किसानों को पशुपालन के लिए केसीसी देनी है, जिससे वो अपनी मतलब पैदावार को बढ़ा सके और अधिक से अधिक जानवरों का फीड कर सके, उसमें दिक्कत नहीं आए। इसी तरह मत्स्य पालन के लिए भी अभी स्टार्ट किया गया है कि हम उनको भी केसीसी दे सकते हैं।
3: इसमें हमारे किसान भाइयों को किस तरह जो सुविधाएं वो प्रदान की जाती है, जैसे पशुपालन करना चाहते हैं?
4: पशुपालन के लिए आपको जो वहाँ पे वेटनरी का हॉस्पिटल है, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ के थ्रू डॉक्टर्स उसको सर्टिफाइड करके हमारे पास एप्लीकेशन भेजते हैं, हम उनको देखते हैं, एप्लीकेशन हम लगती हैं, इसमें सब चीज़ें सही पाई जाती हैं, उसको हम करते भी हैं उसको प्रोसेस, और बहुत आसान काम है वो, तो सिर्फ आपको वेटनरी में जाके उसको जो आवेदन है उसको भरना है, डॉक्टर उसको सर्टिफाइड कर देगा और हम यहाँ से उसको फाइनेंस कर देंगे।
3: शुक्ला साहब, आपके तरफ से तो पूरी जो सरकारी प्रक्रिया है वो लागू होती है
4: जी,
3: लेकिन हमारे कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं
4: जी जी,
3: कुछ सामाजिक कार्यों के लिए भी ऋण लेना चाहते हैं, तो क्या सामाजिक कार्यों के लिए भी आपके यहाँ से ऋण की सुविधा है? जैसे शादी होती है, किसी की विवाह होता है, तो उसके लिए भी उन्हें धन की आवश्यकता होती है?
4: किसानों के तार्थ में हम उनको तरह तरह के लोन देते हैं, उसमें उनके खेतीबाड़ी से उपकरण में जो भी आते हैं उनके लेके, कृषि में फसल लगाने से लेके पैदावार तक, हार्वेस्टिंग तक का हम लोग करते हैं। अगर हमें शादी ब्याह के लिए अगर हमें कुछ लेना है तो हमें मतलब बैंक के कुछ किसी और प्रोडक्ट में जिसमें एसेट बैक्ड लोन आता है उसमें ले सकते हैं,
3: क्योंकि ये जो आपके बैंक के ऋण हैं अगर हमारे किसान भाई समय पर भुगतान करते रहते हैं तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज पर ऋण लेते हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी लाभदायक।
4: हाँ, निश्चित ही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर किसान भाई अगर उसको लेते हैं तो उसमें किसान को फायदा भी है, और जो प्रताड़ित होते हैं जो कहीं बाहर से पैसे लेने से जो 2% लेने पड़ते हैं 3% लेने पड़ते हैं, तो उससे बहुत आरामदायक है केसीसी करण, और आगे आपकी लाइजनिंग मंथ क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती तो, और बैंक आपको कंसीडर करता है बहुत सी सारी चीज़ों के लिए।
3: शुक्ला साहब, हमारे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं आपके यहाँ से भी ऋण ले लिया
4: जी,
3: कोई दूसरी बैंक है वहाँ से भी ऋण ले लिया, फिर उन्हें जो भुगतान में काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो उन्हें कैसे आप चिन्हित करते हैं?
4: आज के समय में बहुत सारी चीज़ें सब ऑनलाइन हो गया है, अगर किसी व्यक्ति ने, अगर मान लीजिए किसी का केसीसी स्टेट बैंक में है और किसी ने अगर दूसरी बैंक से फाइनेंस कराया है तो उसमें दिखता है, तो हम उसको बताते हैं, हम उसको लीगल नोटिस देते हैं कि हम ऐसा कार्य ना करें, कि हमें ऐसी कार्रवाई करना पड़े, चूंकि हम भी किसान के हितैषी हैं, स्टेट बैंक का एक ही मोटिव है कि रूरल क्षेत्र में जितना भी है सरकार का जो मुख्य बिंदु है उसको फोकस करते हुए हम उसको आगे बढ़े और किसान को उसको लाभान्वित करवा सके, इसलिए मतलब ऐसा कार्य ना करें कि एक जगह आपने लिया है उसको प्रॉपर बंद करें तभी दूसरी जगह अप्लाई करें और उसको ले, ऐसा डबल आप करेंगे तो वो लीगल कार्रवाई में आएगा।
3: इतनी सुविधाएं देने के बाद भी शुक्ला साहब अभी भी हमारे ग्रामीण भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऋण लेते हैं उसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं बजाय बैंकों के, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं?
4: ग्रामीण बैंक के ब्रांच में होने के नाते मैं ही कहूँगा, किसानों को कम पढ़े लिखे होने के कारण वो अपनी बात को रख नहीं पाते और वो बैंक में आने से डरते हैं, और जो उनको पूछना चाहिए क्वेरीज जो आती हैं वो उनको डिसीजन नहीं मेकिंग नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, जो बिचौलिए होते हैं, जो जो मतलब एक्टिवली आते हैं, वो उनका उपयोग करके कहीं ना कहीं उनको कर देते हैं। अदरवाइज बैंक तो बहुत इजी मतलब एक्सेस देता है, स्टेट बैंक स्पेशली मतलब किसानों के लिए हम लोग नाइट कैंप लगाते हैं, जाके नाइट कैंप में जाके उनको अवेयर करते हैं कि आप आइए, आप ऋण चुकाइए, और हम उसको रीफाइनेंस भी करते हैं। इवन स्टेट बैंक में तो ऋण समाधान स्कीम थी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक रही वो, उसमें जो किसान खराब भी हो जाते हैं तो उनको भी हमने इंटरेस्ट में हर स्टेप वाइज स्टेप उसको छूट देते हुए उनको सेटल किया है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव है कि जो हमारा ऋणी है उसको मुख्यतः बेनिफिट मिले और वो आगे सुधार करते हुए चले।
3: शुक्ला साहब, अंत में चलते चलते हमारी किसान भाई से और क्या कहना चाहेंगे जिससे हमारे किसान भाई आपके जो बैंक हैं उनसे जुड़ें और अधिक से अधिक लाभ लें?
4: मैं सभी किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि वो अगर किसी भी तरह का ऋण लेना है, किसी बिचौलिए के चक्कर में ना आए, किसी भी साहूकार के चक्कर में ना आए, वो सीधे ब्रांच में आए, अपने डॉक्यूमेंट्स लाएं। आजकल सब कुछ मिल जाता है, गूगल पे कुछ जानकारी लेनी वहाँ लीजिए, ब्रांच में भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो प्राधिकृत अधिकारी जो कंट्रोलिंग ऑफिस में है वो आपको जानकारी प्रदान करेंगे। हम सभी लोग आपके लिए तत्पर हैं, लेकिन किसी भी बिचौलिए के चंगुल में ना फंसें।
3: शुक्ला साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को बैंक द्वारा किस प्रकार के ऋण प्रदाय किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ भैया, और देखो अभी सुन रहे थे भेंट वार्ता थी बैंक से कृषकों को ऋण सुविधाएं, तो जानकारी दे रहे थे श्री आशीष शुक्ला जी और उनसे बातचीत कर रहे थे सोहन सिंह। तो देखो भैया हरो कितेक जो है अच्छी नौनी जानकारी भेंट वार्ता के माध्यम से आपने सुनी, सभी किसान भैया ने जाको जरूर लाभ मिलो हुई है। और अब लेते हैं अल्पविराम और सुनवाते हैं जो संदेश, फिर संदेशन के बाद आपको सुनवाएंगे काय के शादी ब्याह चल रहे हैं, तो आपको विदाई गीत बाबूलाल कुशवाहा और साथियन के स्वर में, पर पहले सुनाते हैं कछु संदेश।

हाँ भैया, संदेश और जो है विदाई गीत के बाद हम फिर से हाजिर हैं अपने चौपाल कार्यक्रम में। सभी श्रोता भैया को करते हैं स्वागत। तो भैया हरौदे को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की यदि चर्चा करी जाए तो यह बहुत ही नौनी और महत्वपूर्ण योजना है जो कि 2010 में शुरू करी गई हती 9-10 में, और PMAGY योजना का उद्देश्य गाँव का सशक्त बनाना और गाँव को विशेष रूप से देखो उन गाँवों को आबादी अधिक है उनकी जैसे समग्र विकास हो सके। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत आबादी वाले गाँवों का समग्र विकास करके उन्हें आदर्श ग्राम में बदलना। तो भैया हरो, स्वास्थ्य, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे जैसे हमारी सड़क, बिजली, पानी का बेहतर बनाने पर केंद्रित करना, और भैया हरो प्रधानमंत्री आदर्श योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आती है। गांव का नाम नवीनतम जन जागरण, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सभी प्रकार की जो है स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूली शिक्षा और गांवों को बेहतर से बेहतर विकासशील बनाना ग्रामीण लोगों के लिए, उनकी आजीविका के जो है विकास के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्रदान जो है करती है। तो भैया हरो, अब कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं जो प्यारो सो गीत बादाम सिंह लोधी और साथियों के स्वर में।

0: हाँ भैया, जे सिंगार गीत के बात अब हो गई है भैया, चलवे की बेरा। तो हम तो सभी भैयन को जो है जो ही कहें कि खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ और निरोग रहें। ऐसी ही भैया देखो अपनों ध्यान रखें और चौपाल कार्यक्रम को आनंद जाई प्रकार से लेते रहें। और भैया देखो भैया हरो अब जो है घड़ी इशारों कर रही है, तो सभी भैयन को राम राम, जय जवान जय किसान।
1: कार्यक्रम सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी। इस सप्ताह की शुरुआत में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित होने के बाद अब ध्यान सरकार के गठन पर केंद्रित हो गया है और वही है आज हमारी चर्चा का विषय, पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारी, राजनीतिक गतिविधियां और चुनौतियां। इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और संचिता गुहा और भाजपा प्रवक्ता केया घोष। आप सबका आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आज कोलकाता में हुई भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा की। चलिए सुनते हैं गृह मंत्री ने क्या कहा।
4: भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: तो अभी हमने सुना कि अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगा दी, जो कि पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं आप तीनों से जानना चाहूंगी, शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में वो क्या कारक थे जिन्होंने उनको इस पद के लिए उपयुक्त बनाया। खेया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं कि ये जो जनादेश मिला है, इसको आप किस नजरिए से देखती हैं?
5: सबसे पहली बात ये है कि ये जो लड़ाई थी, मैं लड़ाई इसलिए बोल रही हूँ कि ये लड़ाई से किसी भी हद से कम नहीं था। लगातार ये कुशासन पश्चिम बंगाल में जो हुआ है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुई है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर पूरा एक युवा पीढ़ी रस्ते में बैठ गया है। तो ये जो लड़ाई थी, ये लड़ाई एक दिन में तो नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो लड़ाई जो तृणमूल सरकार थी उनके वर्सेस पश्चिम बंगाल के आम जनगण, उनका जनता ने इस बार तय कर लिया था कि तृणमूल को हटाना है और उनके सामने एकमात्र विकल्प था भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आजकल देखिए इंटरनेट की जमाना है, हर जगह की खबर मिलती रहती है, जैसे कि लोगों को ये भी पता लगता है कि असम जैसे छोटे राज्य में भी इतना बड़े तादाद में इंडस्ट्री हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में हमारे यहाँ क्या है, तस्करी है, राशन घोटाला बोलिए, शिक्षक की नौकरी को लेके घोटाला बोलिए, तो ये तो पश्चिम बंगाल की संस्कृति नहीं है
1: जी।
5: तो लोगों ने इस बार तय किया था कि पश्चिम बंगाल से जो सरकार इनका बिल्कुल सुपरा साफ करना है
1: जी। तो शेखर जी, वो कौन सी ऐसे कारक थे, कौन से

0: फैक्टर्स थे जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में जिन्होंने काम किया?
1: अनुपम जी, आप देखिए, पश्चिम बंगाल में जो लंबा सा एक मुहिम चला, जिसका एक बड़ा चेहरा था शुभेंदु अधिकारी, पिछले चुनाव से पहले आए थे, और उसके बाद जिस तरह नंदीग्राम में ममता को डिफीट किया, और इस बार दोबारा भवानीपुर में, दक्षिण कलकत्ते के एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, वहां पे ममता को अपने गढ़ में जाके डिफीट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और लगातार जिस तरह तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो राजनीतिक जो हिंसा चली आई है, उसको मुकाबला करना, आपने देखा दो दिन पहले किस तरह घटना घटी, उनकी सेक्रेटरी को गोली मार के हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो कल्चर है, ये साइकिल ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस जो हमने देखा है, खास करके पहले वामपंथी सरकार में था, इसके बाद में अभी तृणमूल के ए में भी एक प्रकार से हथियार बन गया, कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा था मामला, केवल लोक कल्याण के काम पे कुछ स्कीम्स दे रहे थे, और लोग के अंदर ये था कि अगर चुनाव बिना भय सुरक्षित रूप में अगर होगा तो जरूर वहां पे परिवर्तन आ सकता है। तो इस बार हमने देखा जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो व्यवस्था की, जिसकी वजह से लोगों ने बिना डर घर से बाहर आके वोट किए। पहली बात, जो SIR को ममता ने बड़ा मुद्दा बनाया, उसको ने भी लोगों ने नकारा दिया, क्योंकि SIR के माध्यम से जितनी फर्जी वोटर्स गोस्ट वोटर्स भी निकल गए। पश्चिम बंगाल के जनता की जो आशाएं अपेक्षाएं, उसको रिफ्लेक्ट करके इतना बड़ा मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी।
0: संचिता जी, आपसे भी यही पूछना चाहूंगी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे कारक हैं जो शुभेंदु अधिकारी के फेवर में, इनके पक्ष में काम कर रहे हैं?
2: शुभेंदु अधिकारी का जो पर्सनल जो फैक्टर है, वो दो दो बार ममता बनर्जी को हरा चुके हैं
0: जी।
2: पर बीजेपी ऐसा पार्टी नहीं है, बीजेपी एक इंडिविजुअल के नाम पे नहीं चलता है, बीजेपी एक ऑर्गेनाइजेशनली ड्रिवन पार्टी है। जैसे शेखर जी ने बताया कि जिस तरह से इलेक्शन कंडक्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो तो बहुत ही, ये 15 साल में पहली बार नहीं, 50 साल में पहली बार शायद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए हैं। किनको वोट दिया है वो बड़ी बात नहीं है, पर वोट दे सकते हैं, सबसे बड़ी फैक्टर थी जो ममता बनर्जी के खिलाफ गया है। वो आजकल रेप मर्डर का असली खूनी जो थे, वो तो कभी पकड़ा नहीं गए। तृणमूल को शायद लगा था कि लोग भूल गए हैं, वो कोई फैक्टर नहीं होगा, पर वो बहुत बड़ी फैक्टर थी। लोग कुछ भी नहीं भूलते हैं। पिछले साल मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, अप्रैल 2025 में जो वायलेंस हुआ, दैट वॉज अनदर लैंडमार्क इवेंट इन द हिस्ट्री, वो भी लोग भूले नहीं है। वकफ बिल पास होने के बाद वेस्ट बंगाल में मुसलमान लोग जैसे हिंदुओं के घर जला दिए हैं, वो कभी हम सोच भी नहीं तक सकते थे। और ये जो बंगाली अस्मिता, बंगाली अस्मिता जिसको जो मुद्दा बनाए थे ना ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने, कि जो बंगाली बोलते हैं वही इंडियन है, पश्चिम बंगाल के लोग और बांग्लादेशी उनको एक ही कर रहे थे, ये अच्छा नहीं लगा
0: जी, जी।
2: और सबको समझ में आ गया ये क्या हो रहा है, और इस बार का वोट उसके खिलाफ है, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है।
0: और इससे पहले के कार्यक्रम में आगे बढ़े, चलिए सुनते हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने और क्या कहा।
3: सबसे पहले मैं दो हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहाँ पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
0: मैं किया जी से अगला अपना सवाल करना चाहूंगी कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो आपकी सरकार की क्या प्राथमिकताएं होंगी और कौन सी चुनौतियां हैं जिनका आपकी सरकार को अगले कुछ सालों में सामना करना पड़ेगा?
4: हमारे सामने चुनौतियां तो बहुत है, क्योंकि सिर्फ ये 15 साल नहीं, इसके पहले 3.5 दशक का, मतलब करीब 50 साल का जो अपशासन पश्चिम बंगाल में हुआ है, जब सारा देश आगे बढ़ रहा था, हम बंगाली हम लोग पीछे जा रहे थे। तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, भारी इंडस्ट्री नहीं हमारे राज्य में, यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा, तो जैसे हमारे संकल्प पत्र में हमने वादा किया है कि पहले जो मंत्रिसभा मंत्रिमंडल की बैठक होगा, उसमें आयुष्मान कार्ड सबके लिए हम लोग अवेलेबल करेंगे, वो हमारे सबसे जो पहला वादा वो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ये प्रतिश्रुति दे के गए हैं, पहला बात। दूसरी बात ये कि 45 दिन के अंदर जो 7th पे कमीशन पश्चिम बंगाल का जो पेंडिंग है वो बैठाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारी जो कर्मचारी है उनका DA इतने सालों से पेंडिंग है। ममता बनर्जी जी वो जनता के पैसा, टैक्स की पैसा खर्च करके वो DA बंद करवाने के लिए कहां कहां नहीं गई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह चली गई। तो ये हमारा वादा है, ये पूरा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जॉब क्रिएशन, क्योंकि पश्चिम बंगाल में यहाँ पर इतना ब्रेन ड्रेन हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जॉब नहीं है
0: जी।
4: वो आप माइग्रेंट लेबरर बोलिए या व्हाइट कॉलर जॉब, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर कौन जॉब करेगा। तो वो हमको वापस लाना है। हमारा बंगाल के जो टैलेंट है, इतने अच्छे अच्छे जो लोग हैं, उनको वापस बंगाल में लाना है, जॉब क्रिएशन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में फिलहाल जो अर्थनीति है, जीडीपी है, बहुत नीचे, सारा देश के मुकाबले, इतना बड़ा राज्य है उसके मुकाबले बहुत नीचे चला गया। तो चुनौती तो बहुत सारे हैं, और एक दिन में तो नहीं होगा ये, तो कोई एक महीना भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जो हम एक एक कदम हर दिन के लिए हमारे लिए चैलेंज होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी सरकार पे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो बार बार बोल के गए हैं कि डबल इंजन की सरकार। और आपको तथ्य मैं दे दूं कि ऑलरेडी केंद्रीय सरकार 2,900 करोड़ रुपए का एक मूव जो है हमारे यहाँ ग्रांट किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो हम लोग पीछे रह गए थे उसको थोड़ा सा पैरिटी लाने के लिए ये राशि नव निर्वाचित पश्चिम बंगाल सरकार को दी जाएगी।
0: शिखर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, जब हम चुनौतियों की बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो अगली जो सरकार है उसके सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी?
1: बिल्कुल अनुभव जी, वहाँ पे सबसे बड़ी बात है 15 साल के बाद सुशासन का शुरुआत होगा
0: जी,
1: यानी गुड गवर्नेंस। और प्रधानमंत्री की तरफ से यही बड़ी गारंटी है कि जो जो केंद्र के बड़े कार्यक्रम जो है, वो पीएम आवास योजना हो, आपके जल जीवन मिशन हो, जितने कार्यक्रम को जो ममता ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया, या आयुष्मान भारत हो, ऐसे कई कार्यक्रम को राजनीतिक कारण से वहां पर रुकावट डाली थी ममता जी ने, वो सारे चीजें अभी हट जाएगा। अब बंगाल भी राष्ट्रीय जो एक जर्नी चल रही है विकसित भारत के लिए, उसमें शामिल हो जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री। देखिए, एक पैसा भी वहां कोई भी इन्वेस्टमेंट की कोई ये नहीं थी, स्कोप ही नहीं थी, क्योंकि ऐसा एक शासन था, लोगों को डर था भाई पैसा डालो तो पहले टोलबाजी होगी यानी कटबनी होगी। देखिए, पहले से बिगड़ा हुआ था वामपंथी सरकार के समय, 34 ईयर्स जो वहां पे वामपंथी की सरकार, चीजें बहुत बिगड़े थी, सबको पता है। उसके बाद जब बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश किए, तब उसको विरोध करके ममता ने बड़ा ये छेड़ा कैंपेन, और जिसके वजह से ममता को फिर मैंडेट मिली, ममता ने चीजों को और बिगाड़ा। और आज एक परिस्थिति आ गई है बंगाल में, नौजवान के लिए सबसे बड़ी चीज नौकरी चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे सारे बंगाल के जो हमारे बच्चे हैं जो शिक्षा लेकर आते बाहर, सबको बाहर जाना पड़ रहा है। ये चीजों पर एक रोक लगेगी, जितनी जल्दी वहां पे इंडस्ट्री की छोटे बड़े जो भी उद्योग शुरू हो सकता है उसका होगा। और सबसे बड़ी बात, लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि अभी तक ऐसा एक रूल चल रहा था कि शासन और पार्टी और सरकार, पुलिस, कोई फर्क नहीं था, सब कुछ पार्टी के दादा तय करते थे और आपस में भी लड़ते थे कलेक्शन के लिए। देखिए, एक चीज बताना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल की भ्रष्टाचार को भी हमें समझना है, इतने सालों से क्या हो रहा था, क्या भ्रष्टाचार होता है, कोई ब्रजा प्रोजेक्ट होता है तो कोई कमीशन ले लेते, यहाँ पे प्रोजेक्ट तो होता ही नहीं है, या प्रोजेक्ट में जो भी पैसे वो खा जाते थे, और लोक कल्याण के लिए भी जो पैसा खर्चा होता था उसमें भी पैसे खाते थे। तो ऐसी एक हालत बन गया है जो उसको पूरा पूरा खत्म करके, और अभी जो नया गवर्नमेंट बनेगा उस पे आप देखेंगे बहुत चीजें होंगी, और सबसे बड़ी बात शांति कायम हो जाएगी, पॉलिटिकल वायलेंस की बिल्कुल बंद, और तीसरी बात लोगों को एक सुरक्षा महसूस करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है।
0: संचिता जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बार तृणमूल कांग्रेस को केवल 80 सीटें ही मिल पाई हैं, जो कि 2021 में उसके द्वारा जीती गई 2015 सीटों के मुकाबले में बहुत कम है, आधे से भी कम है, फिर भी तृणमूल कांग्रेस जो है वो राज्य की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है। तो नतीजों के बाद जो जिस तरह के घटनाक्रम हमने देखे हैं उसे देखते हुए, आप राज्य की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस और इसकी प्रमुख ममता बनर्जी की भूमिका को किस तरह से देखती हैं?
2: देखिए, ममता बनर्जी तो अभी तक अपनी हार स्वीकार कर ही नहीं पाई, अभी तक अपने आप को चीफ मिनिस्टर बोल रही है, जबकि गवर्नर ने असेंबली डिसॉल्व कर दिया है उसके बाद भी। तो आई थिंक ये बात उनके दिमाग में थोड़ा बैठने में टाइम लगेगा, और जो वो बोल रही है कि वो अभी पूरा भारतवर्ष घूम घूम के बीजेपी को सारे हटाएंगी, उसके बारे में तो क्या ही बोले। तो तृणमूल कांग्रेस से अभी टोन जैसे आ रहे हैं लीडर से, मेरे ख्याल से कुछ लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बीजेपी उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं वो तो बीजेपी की बात है, और कुछ लोग तृणमूल टीएमसी में रह जाएंगे। जितना तक मैंने सुना है कि बहुत सारा टीएमसी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट अपने आप में, जो एक दूसरे से लड़ाई जो चल रही थी, वो सब एकदम बाहर आ रही है, ये और भी बाहर आती जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जैसे सद्दाम हुसैन ने जब कुवैत इन्वेड किया था और अमेरिका उनको ने उनको हटा दिया, उन्होंने

0: सारे जो ऑयल वेल था, तेल की खनी, आग जला दिए। तो सद्दाम हुसैन हट जाने के बाद भी वो आग जलती रही। तो ममता बनर्जी भी ऐसा ही कुछ करना चाह रही है।
1: शेखर जी, जो भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत ने पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य को किस तरह प्रभावित या फिर आप कहिए कि परिवर्तित किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल आज तक पारंपरिक रूप से वामपंथ का गढ़ रहा है, तो पश्चिम बंगाल की राजनीति और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक जो है, भाजपा की जीत ने उसको किस तरह से प्रभावित किया है?
2: देखिए, बहुत बड़ा फर्क यही पड़ेगा, हमारे राजनीति में सुशासन एक माइलस्टोन बन गया है कि कोई पार्टी की हार या जीत इस ये पे मेजर किया जाएगा, वो लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, गरीबों के लिए क्या कर सकते हैं, किसान के लिए क्या कर सकते हैं, महिला के लिए क्या कर सकते हैं। एक प्रकार से जो राजनीतिक हिंसा पर भी एक बड़ी रोक लगेगी और बड़ी मैसेज जाएगी। आपने सही कहा कि बीजेपी के लिए अपना एक इमोशनल जर्नी है। पहले जनसंघ की जो फाउंडर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके प्रति एक बहुत बड़ा ऑनर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो कल्पना थी सोनार बांग्ला का, आज उस सपना को साकार करने में पहला कदम है ये।
1: शेखर अय्यर जी, संचिता गुहा और केया घोष, आपने आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में शामिल हुई और पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की जो तैयारियां हैं उसके परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक गतिविधियों और चुनौतियों पर हमसे बातचीत की, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। शोले फिल्म से सुनिए ये गीत, राहुल देव वर्मन की आवाज है, आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल हैं और संगीत भी है RD वर्मन का।

अगली आवाज़ सुनिए आशा भोसले की खुशबू फिल्म से। गुलजार के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का। और अब जूली फिल्म से ये अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल और संगीत है राजेश रोशन का।

अगली आवाज़ सुनिए अरिजीत सिंह और पलक मुछाल की गब्बर इज बैक फिल्म से। मनोज यादव के लिखे हुए बोल हैं और संगीत में पिरोया है चिरंतन भट्ट ने।

आप सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत विरासत फिल्म से कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ है, जावेद अख्तर के लिखे हुए बोल और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश, और अब लेते हैं एक अंतराल।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से, और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है, और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी, वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित की जाएगी समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहाँ राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप।

0: भट्टाचार्य जी।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत

0: को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुँच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अड़िग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं। प्राची प्रिया।
5: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
1: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के

देंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस वीसीके आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: कल सुबह सरकार की हलफ बर्दारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है, जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, अरकान कानून साज असेंबली हैं कांग्रेस के 5, जबकि वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम नेज

कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेल जगत। कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनिए। आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाएं, और वार्ताकार हैं पंकज शुक्ला।

खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष गजपीये। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 अब अपने बेहद रोमांचक और निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। जैसे जैसे लीग चरण के मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे प्लेऑफ की तस्वीरें और भी अधिक दिलचस्प होती जा रही है। कई टीमें शानदार प्रदर्शन के साथ शीर्ष स्थान के लिए संघर्ष कर रही है, तो वही कुछ टीमें अंतिम अवसरों का लाभ उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटी हुई है। क्रिकेट प्रेमियों के बीच आईपीएल का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है और हर मुकाबला नई संभावनाएं लेकर सामने आ रहा है।

आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं यह वार्ता। वार्ताकार है पंकज शुक्ला।

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीजन अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में पहुंच चुका है और आईपीएल 226 प्लेऑफ की रेस सबसे बेहद दिलचस्प हो गई है। यह टूर्नामेंट 28 मार्च 2026 को मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के साथ शुरू हुआ था। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें कुल 74 मैच खेल रही हैं जो 13 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। पिछले सीजन की तरह आईपीएल 2026 के लीग स्टेज के अंत में टॉप फोर टीमें ही प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। अगर 14 मैचों के बाद टीमें समान अंक पर रहती है तो नेट रन रेट के आधार पर पॉइंट्स टेबल में उनकी रैंकिंग तय होगी और इसके हिसाब से वे मैच खेलेंगी। इस बार टॉप फोर की लड़ाई बेहद कड़ी है क्योंकि अभी तक कोई भी टीम पूरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले मुकाबले हर टीम के लिए करो या मरो जैसे साबित होने वाले हैं। कुछ को हार का तुरंत नुकसान हो सकता है तो कुछ के लिए हार आगे चलकर मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 अपने निर्णायक चरण की ओर बढ़ रहा है। लीग के 49 मैच हो चुके हैं और प्लेऑफ की तस्वीर भी एक हद तक साफ दिखती है। सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स की स्थिति मजबूत है। हालांकि इन टीमों के पिछले मैचों में प्रदर्शन और दूसरी ओर तालिका में नीचे मौजूद टीमों के प्रदर्शन ने प्लेऑफ की जंग को रोमांचक बना दिया है। अभी कोई भी टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर नहीं है। मुंबई, लखनऊ और कोलकाता जैसी टीमों की संभावनाएं काफ़ी कम तो हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स, गुजरात और दिल्ली के लिए अब बचे सभी मैच करो या मरो के हैं। ऐसे में देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर कौन सी टीमें प्लेऑफ पे पहुंचने में सफल होंगी। सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 की अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई है। बुधवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को हराकर और उसे दूसरे स्थान पर धकेलते हुए पहला स्थान हासिल किया। यह जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं

आज मई तक के हुए मुकाबलों की है। गुरुवार को लखनऊ सुपर जायंट्स ने आरसीबी को हराकर आईपीएल में अपना तीसरा मुकाबला जीत लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर है। अगर वह अभी भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई है, उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा हैं। ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने गुरुवार 7 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आईपीएल के 50वें मुकाबले में 6 रनों से हराया। लखनऊ सुपर जायंट्स की इस जीत के हीरो सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श रहे, जिन्होंने शानदार शतक जड़ते हुए 111 रनों की पारी खेली। मार्श ने 49 गेंदों पर शतक जड़ा और वह लखनऊ के लिए आईपीएल में सबसे तेज सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बने। इस मामले में उन्होंने कप्तान ऋषभ पंत के 54 रनों का रिकॉर्ड तोड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स की आरसीबी के खिलाफ इस जीत के बाद यह उत्सुकता है कि क्या अभी भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले अपने बचे सभी मुकाबले जीतने होंगे। लखनऊ के अगले 4 में से 2 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हैं, वहीं एक एक मैच राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स से है। अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ये सभी 4 मैच जीतने में कामयाब रहती है तो उन्हें 8 अंक मिलेंगे। फिलहाल उनके खाते में 6 पॉइंट हैं। इन 8 अंकों के साथ वह 14 अंकों तक पहुँच सकती है। अब अंक तालिका में टीमों की स्थिति पर हम नजर डालते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैचों में 7 जीत के साथ 14 अंक लेकर पहले स्थान पर है। पंजाब किंग्स 10 मैचों में 13 अंक लेकर दूसरे। आरसीबी 10 मैचों में 12 अंक लेकर तीसरे। राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों में 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात जॉइंट 10 मैचों में 12 अंक लेकर 5वें स्थान पर है। चेन्नई सुपर किंग्स 10 मैचों में 10 अंक लेकर छठे। दिल्ली कैपिटल्स 10 मैचों में 8 अंक लेकर 7वें। कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों में 7 अंक लेकर 8वें। मुंबई इंडियंस 10 मैचों में 6 अंक लेकर 9वें और लखनऊ सुपर जायंट्स 10 मैचों में 6 अंक लेकर 10वें स्थान पर है। यहां यह बताना चाहूंगा कि समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में जो अंतर है वो उनके रन रेट की वजह से है। यह तालिका अभी जब हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं 7 मई तब तक की है, इसके बाद इसमें सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। अब प्लेऑफ समीकरण की यदि हम बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की करने के लिए अब अपने बाकी 3 मैचों में से सिर्फ 1 जीत की आवश्यकता है। टीम 16 अंकों के सुरक्षित आंकड़े तक पहुंच सकती है। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी बेहद मजबूत रही है और इसी वजह से उनका नेट रन रेट भी शानदार है, जो टाई की स्थिति में बड़ा फायदा देगा। टीम सिर्फ प्लेऑफ की नहीं बल्कि टॉप 2 में फिनिश करने की भी मजबूत दावेदार मानी जा रही है। वहीं आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बाकी मैचों में से 3 की जीतने की जरूरत है। टीम 16 से 18 अंकों तक पहुंच सकती है। उनका नेट रन रेट पूरे टूर्नामेंट में सबसे मजबूत में से एक है, इसलिए 14 अंक पर भी टीम क्वालिफाई कर सकती है अगर बाकी नतीजे उनके पक्ष में गए। आरसीबी शीर्ष 2 में जगह बनाने की भी प्रबल दावेदार है। राजस्थान रॉयल्स को भी प्लेऑफ में सुरक्षित पहुंचने के लिए 2 जीत चाहिए, जिससे टीम 16 अंकों तक पहुंच जाएगी। हालांकि टीम का प्रदर्शन इस सीजन में उतार चढ़ाव भरा रहा है। राजस्थान रॉयल्स को अपने नेट रन रेट को भी मजबूत बनाए रखना होगा ताकि पीछे चल रही टीमों से वह आगे रह सके और अपनी स्थिति इस प्लेऑफ में मजबूत कर सके। जहां तक गुजरात टाइटंस की बात है तो गुजरात टाइटंस अंक तालिका में शीर्ष 4 टीमों में बराबर अंक पर हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट चिंता का विषय बना हुआ है। गुजरात टाइटंस को अपने आखिरी 4 मैचों में कम से कम 2 बड़ी जीत दर्ज करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट सुधरे और वो राजस्थान रॉयल्स या ऊपर की 4 अन्य टीमों में से किसी को पीछे छोड़कर अपनी जगह बना सके। चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने बाकी 4 मैचों में से कम 3 मैच जीत दर्ज करवानी होगी। टीम 16 अंकों तक पहुंच सकती है यदि वह यह जीत दर्ज करेगी तो। सीएसके का नेट रन रेट फिलहाल पॉजिटिव है, जो अन्य टीमों के 14 या 16 अंकों पर फंसने की स्थिति में अहम भूमिका निभा सकता है। यानी कोई टीम 16 या 14 अंकों में फंस जाती है, वहां अगर रन रेट से मुकाबला होगा तो चेन्नई सुपर किंग्स की संभावनाएँ ज़्यादा बनती हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए अपने सभी बाकी मैचों को जीतने ही होंगे। एक भी हार उनकी उम्मीद को लगभग खत्म कर देगी। इसके अलावा टीम का खराब रन रेट भी बड़ी परेशानी का सबब है, इसलिए दिल्ली को न केवल जीत चाहिए बल्कि इस जीत का अंतर भी बड़ा चाहिए, तभी वो सुपर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने में सफल हो पाएगी। कोलकाता नाइट राइडर्स को प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए अपने बाकी सभी 5 मैच जीतने होंगे, जिसमें से टीम अगर ये मैच जीती है तो उनका स्कोर 17 तक पहुंच सकता है। हालांकि उनका खराब नेट रन रेट चिंता का विषय है, ऐसे में 15 अंक भी शायद काफ़ी नहीं होंगे, उन्हें अधिक अंक जुटाने के लिए ही मेहनत करनी होगी।
मुंबई इंडियंस को अपने सभी बाकी मैच जीतने होंगे, साथ ही ये उम्मीद भी करनी होगी कि 12 अंकों पर मौजूद बाकी टीमें अपने अधिकतर मुकाबले हार जाएं। यानी मुंबई को अगर पहुंचना है तो उसे यह भी दुआ करनी पड़ेगी कि जो दूसरी

टीम है वो हारें और मुंबई इंडियंस के बराबर अंक के साथ वो हासिल ना कर पाए। मुंबई का खराब नेट रन रेट उनकी प्लेऑफ उम्मीदों के सामने सबसे बड़ी बाधा बनकर हमें दिखाई देता है। ये टीमों की स्थिति है और इसमें अधिकांश हमें दिखाई देता है कि न केवल खुद का प्रदर्शन बेहतर करना होगा बल्कि जो प्रतिस्पर्धी दूसरी टीम है उनके प्रदर्शन पर भी बाकी की जो शेष चार टीमें हैं उनका प्रदर्शन, उनकी उम्मीद और उनका रास्ता निर्भर करेगा। यह जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं 7 मई तक के हुए मुकाबलों की है। इसके बाद लगातार मैचों और उनकी हार जीत के हिसाब से यह तालिका और इसके अंकों में परिवर्तन संभव है। यदि हम ऑरेंज और पर्पल कैप की रेस की बात करें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है और इस IPL में हमने देखा है कि काफ़ी तेजी से रन बने हैं और बॉलिंग का स्तर भी, बॉलिंग रन रेट भी काफ़ी बड़ा है, तो इस पर अगर हम बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद पंजाब किंग्स मैच के बाद ऑरेंज कैप एक बार फिर से सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन के पास आ गई है। क्लासेन ने 43 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली थी। क्लासेन के सीजन के 11 मैचों की 11 पारियों में 494 रन हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के ही अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर हैं। अभिषेक के 11 मैचों की 11 पारियों में 475 रन हैं। पर्पल कैप RCB के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास है। भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। दो नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज हैं। कंबोज ने 10 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। IPL 2026 में हो रही रनों की बारिश ने गेंदबाजी के आंकड़े भी बिगाड़े हैं। एक समय 4 ओवर के कोटे में 30-32 रन बनना सामान्य माना जाता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़कर 45 से 50 रनों तक पहुंच गई है, यानी एक ओवर में 50 रन तक बन रहे हैं। अगर कोई गेंदबाज 4 ओवर में 50 रन खर्च करते हुए एक दो विकेट निकाल ले तो उसे अच्छा स्पेल माना जाने लगा है। लेकिन इसके बाद भी IPL 2026 के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब गेंदबाज इससे ज़्यादा रन लुटा बैठे हैं। यह जानना बेहद दिलचस्प होगा कि इस सीजन किन गेंदबाजों की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है, किन गेंदबाजों ने एक ओवर में सर्वाधिक रन खर्च किए हैं। इसकी बात करते हैं तो IPL में सबसे महंगे स्पेल की बात करें तो इसमें पंजाब किंग्स के गेंदबाज सबसे आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया से आने वाले जेनवियर बार्टलेट ने 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 4 ओवर में 69 रन दिए। यह इस सीजन की अब तक की सबसे महंगा स्पेल रहा है। उन्हें एक विकेट मिला था। इसके बाद अर्शदीप सिंह का नाम आता है। बाएं हाथ के इस पेसर ने 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुकाबले में 4 ओवर में 68 रन दिए। इसके अलावा साकिब हुसैन, जो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं, जिन्होंने 4 ओवर में 62 रन दिए हैं। पंजाब किंग्स के मार्को यानसान ने 4 ओवर में 61 रन दिए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के प्रफुल्ल हिंगे ने 4 ओवर में 60 रन दिए हैं। ये ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने सीजन में 60 या उससे ज़्यादा रन दिए हैं। पंजाब किंग्स के लिए खेल रहे अर्शदीप ने IPL 26 में अब तक सबसे ज़्यादा रन दिए हैं। यह गेंदबाज 10 मैचों में 38 ओवर फेंकते हुए 396 रन दे चुका है। यह इस सीजन में सर्वाधिक हैं। उन्हें अब तक 11 विकेट भी मिले हैं, लेकिन उनका इकोनॉमिक रेट 10.42 का रहा है। इसके बाद इस सीजन के सबसे ज़्यादा रन खर्च करने वाले खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद के ईशान मलिंगा हैं। उन्होंने 38.2 ओवर में 362 रन दिए हैं। गुजरात टाइटन्स के कगिन्सो रबाडा ने 39 ओवर में 360 रन दिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के टी नटराजन ने 31.5 ओवर में 356 रन दिए हैं। वहीं पंजाब के मार्को यानसन ने 35.2 ओवर में 350 रन दिए हैं। यह IPL का एक दृश्य था जो हमने आंकड़ों के जरिए और टीमों के स्तर, उनके प्रदर्शन और उनके नेट रन रेट के स्तर पर खींचा है। हमें उम्मीद है कि बेहतर प्रदर्शन और आक्रामक प्रदर्शन के जरिए खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अपनी टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में सफल होंगे। आप आनंद लीजिए IPL का और क्रिकेट के उस हुनर का जो दिनों दिन निखरता जा रहा है। धन्यवाद।

0: अभी आपने आईपीएल में टीमों की वर्तमान स्थिति और संभावनाएं विषय पर यह वार्ता सुनी। वार्ताकार थे पंकज शुक्ला। खेलों से जुड़ी हुई गतिविधियों की जानकारी के लिए सुनना ना भूले कार्यक्रम खेल जगत। होगी मुलाकात खेल जगत से जुड़ी हुई हस्तियों से।
1: 19 मई 2016 को मैंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे अपने देश का झंडा फहराया था।
2: जब मेरा गोल्ड मेडल आया तो मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे।
3: फ्लैग अपने शोल्डर्स पे लेना भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद मेरे लिए तो एक ड्रीम जैसे ही था।
4: मैंने बहुत छोटी एज से सेल करना स्टार्ट कर दिया था,
1: तो मुश्किल था वो सफ़र, पर उसके बाद से मैंने जो सही हुआ, फिर उसके बाद से जो मैंने पिकअप पकड़ा था, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: होगी खेलों से जुड़े हर पहलू पर बारीक नजर, तो जरूर सुने कार्यक्रम खेल जगत प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:30 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल जगत। कार्यक्रम में आपने भेंट वार्ता सुनी आईपीएल में टीमों की स्थिति एवं संभावनाएं। वार्ताकार पंकज शुक्ला से, प्रस्तुतकर्ता व कार्यक्रम संयोजक थे मनीष गजभिये। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश और अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। सरफरोश फिल्म से गीत सुनिए कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाज़ में समीर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है जतिन ललित का।

अगली आवाज़ सुनिए आशा भोसले और साथियों की फिल्म तक्षक से। सुखविंदर सिंह और तेजपाल कौर के लिखे हुए बोल हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

इसी के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। नमस्कार श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं नंदिनी रतले और अब शुरू करते हैं आपकी फरमाइशी पत्रों में लिखे हुए गीतों का सिलसिला। और सबसे पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं प्यासा फिल्म से गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और इसकी फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन ने। और इसके अलावा लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू ने। साथ ही राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज, मधु राजावत, राशि, रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत और उनके समस्त राजावत परिवार ने।

और अब अगली फरमाइश आप सुनेंगे जीवन धारा फिल्म से। गीत गाया है आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने, और हाँ फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं मोहम्मद हलवाईयान शेरकोट ज़िला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, इसके साथ ही ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, साथ ही जयराज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज भट्ट ने, और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद का।

अगली फरमाइश की है जो जीता वही सिकंदर फिल्म से। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल ने, राजदीप राजेश ने, राशि राजेश ने, श्रीमती शीतल राजेश ने। इसके साथ ही स्टार से रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने। और कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनूरा श्रीमाली ने। तो चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: अगली आवाज़ आप सुनेंगे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की फिल्म चरस से, और इसकी फरमाइश की है, सप्रेम नमस्ते भेजा है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या, करिश्मा कामले ने। इसके अलावा सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन, तानिया ने, और घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ, गुड नाइट।
2: अच्छा, गुड नाइट।

और अब आप सुनेंगे नूरी फिल्म से अगला गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में, जिसके लिए हमें पत्र भेजा है अभिनंदन के साथ कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय ने, इसके साथ ही सिंगपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, और नेपानगर से मोहन मुदालियार, आरुष आरक्षिता और राजेश ने। तो चलिए सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम में आखिरी गीत शामिल कर रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म से मुकेश की आवाज़ है। फरमाइशकर्ताओं के नाम हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक और पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। तो चलिए आनंद लेते हैं।

इस गीत के साथ अब लेते हैं आज के आपके फरमाइश कार्यक्रम से विदा। अगले अंक में फिर कुछ और आपकी फरमाइश पत्रों को शामिल करेंगे और सुनाएंगे आपके पसंद के गीत। आज के लिए धन्यवाद और आपके साथी नंदिनी रतले को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण में अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। आनंद लीजिए ख्याल गायन का पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में, राग है भीम पलासी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। कार्यक्रम में आपने सुना ख्याल गायन पंडित भीमसेन जोशी की आवाज़ में, राग था भीम पलासी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही पलों में आकाशवाणी दिल्ली से

0: भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएमके महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जाँच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today. paving the way for him.

मीडियम वेव न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन और DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर प्रसारण सेवा लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।